FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई 2026। इस वक्त सुबह के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफरिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी बिलासपुर से हम बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं समूह स्वर में इस देश वंदना के साथ।

सुधा मल्होत्रा की गाई इस भक्ति रचना का आनंद अभी आपने उठाया। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त प्रस्तुत किया जा रहा है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर के स्वर में रचना मीराबाई की।

0: पुरुषोत्तम दास जलोटा के स्वर में आपने ये भक्ति रचना सुनी और इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। हल्दी में रोग नियंत्रण, वाचन रूपेश कंवर का।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं हूँ अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रूपेश कुमार कंवर। खरीफ सीजन के संगे संग हमारे किसान भाई मन धान पान के साथ साथ बारी बकरी

के चेत घलो करत हवय। खरीफ सीजन में हमर कतेक किसान भाई मन मसालेदार पौधा के खेती करके दोहराल दोहरा आमदनी कमाथे। आज हमन खेती के बात में अपन कर गोड़ बात करबो हल्दी के खेती के। हमार अभी के बेरा में कतो किसान भाई मन हल्दी के खेती करे हवय। हल्दी में कई प्रकार के रोग व्याधि घलो पाए जाते। बेरा रहत अगर हमन रोग की चिन्हारी और कीड़ा की चिन्हारी कर लेहन तो हमन फसल में 80% तक ओला अपन बचाव कर सकत हन। हल्दी की खेती में संगवारी हो तीन प्रकार के प्रमुख रोग आते जरा हमन बेरा रहत चिन्हारी और संगे संग ओकर निदान कर लेहन तो हम फसल में दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। कंद सड़न प्रकंद सड़न एक लक्षण की बात करी किसान भाई हो पत्ता पिवरा पिवरा हो जाते और भुइया में गिर जाते और कांदा जो हाँ करिया हो जाते और सड़ जाते फिर धीरे धीरे करके जैसे हम डहर जाथन तो एक बदबू आयला चालू हो जाते। कारण ही रहते कि जे बेरा हमन हल्दी के खेती करथन वो बेरा अच्छे से मतलब भुइया के चुनाव कर लेना चाहिए जेमा पानी की निकासी और सिंचाई आसानी रूप से हो सके। बरसात की घानी ज्यादातर जल भराव होते एकर कारण कंद सड़न और प्रकंद सड़न ये रोग ज्यादा लगे के संभावना बने रहते। एक नियंत्रण की बात करी किसान भाई हो जोन भुइया में हल्दी खेती करे हवन ओमा पानी की निकासी के उपयुक्त हमला नाली बना देना चाहिए ताकि पानी ठहराव जन हो सके। एक संगे संग आप मतलब बताथन हमन आए दिन अपन रेडियो के माध्यम से जितके ज्यादा होए हम बाजार हाट ले बीजा लाथन तो प्रयास करी कि हम प्रमाणित बीजा ला ही अपन जो खेती किसानी के उपयोग करी जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र हो गए उद्यान विभाग हो गए या कृषि विभाग हो गए या कौन कहूँ प्रमाणित जो दुकान हवा है जहाँ से अच्छे से प्रमाणित किस्म के जोन बीजा हवा हल्दी के वो बीजा ला के हमन बुवाई कर सकत हन। एक साथ ही साथ किसान भाई हमन ये बात का उचेत करे पड़ते कि जौन बीजा लावा थन और सबसे पहली हमन ला बुवाई के पहली हमला उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होते। कंद ला डाइजिम 2 ग्राम मैकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में 30 मिनट तक हमला डुबा देना चाहिए। जैविक पद्धति की बात करी संगवाई हो टाइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज ले हमला उपचारित कर देना चाहिए। रोग दिखा तो मैकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर घोल मिला के अगर हम छिड़काव करथन तो एकर से भी हमन निदान पा सकथन। पत्ती धब्बा रोग किसान भाई हो एकरो माध्यम से कहीं न कहीं जो हमर हल्दी के खेती में सबसे ज्यादा नुकसान होके संभावना रहते। पत्ती गोल गोल और भूरा काला धब्बा हो जाते और धीरे धीरे करके पत्ता सुखा जाते और भुइया में गिर जाते। एला हमन बेरा रहता अगर चिन्हारी कर लेहन पत्ती धब्बा रोग से भी हमन निदान कर पाके हल्दी खेती में दोहरा से दोहरा आमदनी कमा सकत हन। नियंत्रण की गोड़ बात करी संगवारी हो पहली फुहार रोग दिखाते वो बेरा हमला मैकोजेब 2.5 ग्राम लीटर पानी में मिला के अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। दूसरी फुहारा ला 15 दिन बाद हमला कार्बो डीजिम 1 ग्राम लीटर पानी में मिला के अच्छे से हमला छिड़काव करना चाहिए। जैविक पद्धति की बात करी किसान भाई हो नीम के तेल ला 5 ml प्रति लीटर 10 दिन के अंतराल में हमला अच्छे से छिड़काव करना चाहिए। जड़ गांठ सूत्र कृमि लक्षण की बात करी समझाई हो पौधा हा छोटे हो जाते यानी कही था बौना पत्ता हा प्यूरा हो जाते जड़ में गांठ बन जाते जेकर कारण पौधा ज्यादा नहीं बढ़ाए। एक नियंत्रण की बात करें किसान भाइयों फसल चक्र अपनाना चाहिए जिसे कि धान है जोंदरी है एकर बाद हमला हल्दी के पौधा लगाना चाहिए। परिवर्तन खेती करत हन तो फायदा ये रहते संगवारी हो कि ओमा भुइया की उपजाऊ क्षमता घलो बढ़त रहते और कोनो प्रकार के रोग व्याधि ओमा लगे के संभावना बिल्कुल नहीं रहे। नीम के खली 2 ले 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर के पाछों हम छिड़काव करत हन तो एकर से भी हमन निदान पा सकत हैं। टाइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम 50 किलो गोबर खाद मिला के खेत में हमन अच्छे से छिड़काव कर सकत हैं। रोकथाम के अगर बात करी संगवारी हो तो सबसे पहले हमला अच्छा निकासी वाला खेत के ही चुनाव करना चाहिए जेमा कोनो प्रकार के पानी की जमावड़ा बिल्कुल नहीं हुए। जहाँ पानी रुकी वहाँ हमारे जो हल्दी की खेती में ज्यादा से ज्यादा हमला नुकसान होके संभावना थे। एक संगे संग जौन बेरा हम हल्दी की खेती करत हन अभी बेरा हवाई हल्दी की खेती करे के तो स्वस्थ बीज ला ही हमन उपयोग करी या तो प्रमाणित बीजा ला ही हमन लगाई तो में कोनो प्रकार के रोग व्याधि आए के संभावना बहुत ही कम रहती। कई बार ऐसे होते कि हमन कोनो प्रकार के खेती करथन लेकिन हमन का करथन कि बोता लगा देथन सीधा सिंचाई पद्धति के माध्यम से और एक जगह सबला लगा देते एकरो माध्यम से भी कहीं न कहीं जो रोग व्याधि आते वह ज्यादा ज्यादा फैलते। अगर हमन हल्दी खेती ला 3 गुड़ी 3 फीट की दूरी में अगर रखा थन तो सबसे उपयुक्त रहते और संगे संग में ज्यादा ज्यादा हमला फायदा हो के संभावना घलो रहते। जैविक खाद में अगर हम बात करी संगवारी हूँ रासायनिक खाद के छोड़ अगर हम जैविक खाद उपयोग करथन तो इमा हमन ज्यादा से ज्यादा पैदावार पा सकत हन जैसे कि गोबर खाद है नीम खाद नीम की खल्ली है वेस्ट हवा
एकर नियमित रूप से अगर हम छिड़काव करत हैं।

0: या खेती के पहली जोताई खनि अगर हमन डालत हन तो एमा भी हमन ज्यादा ज्यादा हमन फायदा पा सकत हन। एक साथ ही साथ ये बात के हमन विशेष चेत करे के आवश्यकता पड़ते कि अगर हमन हल्दी खेती करत हन तो रोजाना हमन ला खेत के निगरानी करना चाहिए कि कोनो प्रकार के रोग व्याधि थोड़े आए, पानी के ठहराव थोड़े हवा है। अगर कोनो प्रकार के रोग व्याधि आवत है तो तत्काल हमन ला उद्यान विभाग के अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के जन प्रमुख हवा विशेषज्ञ हैं उनकर करा सलाह लेके हमन एकर निदान पा सकत हन।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, हल्दी में रोग नियंत्रण, वाचन स्वर रूपेश कंवर का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, वाचन स्वर वाणी जयराम और रविंद्र साथे का।

पुत्र वेओ की कल्पना ने महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: वाणी जयराम और रविंद्र साठी के स्वर में आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आकाशवाणी बिलासपुर से हम बोल रहे हैं। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय उपनिषदों की शिक्षा, आलेख श्रीमती अंजलि मुखर्जी का।
1: उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। हमारा देश अपनी सुसंस्कृति के लिए उपनिषदों का आभारी है। उपनिषद के अनुसार संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो किंतु कर्म करते हुए जियो। हमें जो जीवन मिला है उसका कुछ अर्थ अवश्य है। उस जीवन को न तो हमें कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, न ही रोध होकर जीवन जीना चाहिए। जो मानव एकरस जीवन से डरता है और कुछ नवीनता चाहता है, शायद वो मृत्यु के भय से डरता है। मृत्यु भय का होना प्राण की एक दुर्बलता का लक्षण है। यहां महान सम्राट ययाति का जिक्र करना उचित होगा। प्राचीन भारत के एक महान सम्राट ययाति अत्यंत भोग विलास में लिप्त रहते थे। जब उन्होंने बुढ़ापे में प्रवेश किया तब अपनी वृद्धावस्था के प्रति अत्यंत चिंतित हो उठे। उनके 5 पुत्र थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से याचना की कि अपनी युवावस्था उन्हें दान कर दें और बदले में उनकी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। बड़े 4 पुत्रों ने उनके इस अजीब प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। सबसे छोटा पुत्र पितृभक्ति से द्रवित हो उठा और सहर्ष उसने अपना यौवन पिता को सौंप दिया और बदले में पिता के वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया। ययाति अब पुनः युवा हो गए। दूने उत्साह और उमंग से भरकर भोग विलास के जीवन में पूरी तरह डूब गए। इस स्थिति में वर्षों बीत गए। अचानक एक दिन ययाति ने देखा कि उनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ रही हैं, केश सफेद हो रहे हैं और कमर झुकती जा रही है। बुढ़ापे के पुनरागमन से और आसन्न मृत्यु की संभावना से सम्राट ययाति घबरा गए, क्योंकि उनका हृदय भोग विलास की लालसा से अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। धैर्यपूर्वक अपने संपूर्ण जीवन पर ययाति ने पुनः विचार किया। परिणाम स्वरूप अपनी मूर्खता पर वह अत्यंत शर्मिंदा भी हुआ। भागवत कथा के अनुसार ययाति ने अपने आप से कहा, भोग द्वारा काम कभी भी शांत नहीं होता, वरन काम की भावना अधिक प्रज्वलित हो जाती है, जैसे आग में घी पड़ गया हो। इसलिए मानव को रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध से दूर ही रहना चाहिए। इन्हें अपना शत्रु समझना चाहिए, तभी शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकेगा। काम, क्रोध, भोग, ईर्ष्या आदि का परित्याग इतना सहज नहीं है। इसके लिए मानव को पहल करनी पड़ती है। किसी भी घटना के घटित होने के लिए ज्ञान, क्रिया और इच्छा तीनों का समावेश ही उत्तरदायी होता है। बुद्धि तर्क शक्ति से भरपूर होती है, सोचने विचारने का कार्य भी वही करती है। मस्तिष्क आदेश देता है, मन इच्छा करता है, इंद्रियां तदनुरूप कार्य करती हैं, किंतु कर्म के परिणाम का विवेचन बुद्धि करती है। किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे स्वीकारना या त्यागना ये निर्णय बुद्धि करती है। यही बुद्धि जब अवचेतन मन के कुविचारों द्वारा चली जाती है तब परम ज्ञान भी विपरीत आचरण कर बैठते हैं और परम विद्वान दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये माया ही भ्रांति है जो बुद्धि को अपने कौतुक विलास का उपकरण बनाती है। मन और बुद्धि का तालमेल तभी तक ठीक रहता है जब तक भ्रांति अपना माया जाल न फैलाए। इस माया जाल से मुक्त रहने के लिए ज्ञान, क्रिया और इच्छा का परस्पर सहयोग आवश्यक है। ये भ्रांति ही है जो रस्सी को सांप और परछाई को भूत समझने का भ्रम उत्पन्न करती है, जिसने वृद्ध ययाति को यौवन प्राप्त करने के लिए दिग्भ्रमित किया। हमारी दृष्टि चूंकि अनंत काल के एक पल मात्र में सीमित रहती है और उस एक पल में हमें वो सब नजर नहीं आता जो हम चाहते हैं, इसलिए हम शिकायत करते हैं कि ईश्वर तूने ये दुनिया क्यों बनाई। अपने उस क्षण से निकलकर यदि हम चरम संपूर्णता

0: में प्रवेश करें तो पूर्ण विकास हमें अवश्य नजर आएगा। जो आदर्श हमें अपनी ओर बुला रहा है, जो लक्ष्य हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है, वो हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उसे पहचानना है, समस्त संसार के रूप को पहचानकर उसे पुनः अंगीकार करना ही हमारी प्रगति का द्योतक होगा। जो ईश्वर प्रदत्त है उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। हम अज्ञान में जीते हैं और निर्वाण हमें अज्ञान से बचाता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था उपनिषदों की शिक्षा, आलेख श्रीमती अंजलि मुखर्जी का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, आपको रूबरू करवाते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा से। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार 6:55 पर और 7 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार रायपुर से आप सुन सकेंगे सुबह 9:55 और 11:55 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 बजे अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित करेंगे हम आकाशवाणी दिल्ली से ही। रात 8 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश। रायपुर केंद्र से रिले करेंगे हम प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर सुबह 10 बजे और छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां सुन सकेंगे आप सुबह 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT लेकर आएंगे हम 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनवाएंगे आपको शाम 5 बजे।

सुबह 7:05 पर लेकर हाजिर होंगे सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत आज शाम 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे भुइयां के बोली। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कहानी डोरेलाल कैवर्त से, कविता पाठ वासंती वर्मा से और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। महिला सभा महिलाओं का ये पसंदीदा कार्यक्रम सुन सकेंगे आप शाम 5:35 पर। सामयिक चर्चा का आज का विषय होगा ओवरथिंकिंग से आत्मविश्वास तक का सफर। साथ ही क्रम परिसंवाद का विषय होगा जागरूक ग्राहक सुरक्षित परिवार, प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। कृषक श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:20 पर। बेरा के गोठ का आज का विषय होगा सामूहिक खेती के महत्व ल जानो। किसान वाणी रोजाना आप सुनते हैं शाम 7:30 पर। आज की बात का विषय होगा लाख लगाएं लखपति बने। साथ ही आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में के अंतर्गत ग्राम कुदरी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य ध्वनियांकन किया गया कार्यक्रम। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, नए तराने सुनेंगे आप 10:30 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 6:20 पर और इसका शेष भाग शाम 7:00 और रजनीगंधा कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे आप रात 8:15 पर। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप संस्कृत में समाचार और 7:00 हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा बास्केज

0: भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हो रहे हैं। वक्त है सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का।

कार्यक्रम आज सुबह में सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। स्वीकार करें प्रियंका बलानी का सस्नेह नमस्कार। श्रोताओं, रोशन सी सुबह में सूरज की किरणें जो रात के अंधकार को पराजित कर हम तक पहुंचती हैं, हमें संकेत देती हैं एक नए दिन की शुरुआत का। लेकिन रात के अंधकार को निर्मल चांदनी से रोशन करते चांद को भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि कई अंधेरी रातों को चांद की हल्की हल्की सी रोशनी से भी काफी सुकून मिल जाता है। चांद की शीतलता हमें आराम का, शांति का एहसास देती है। श्रोताओं, चांद को कभी नन्हे बच्चों के मामा का दर्जा दिया गया तो कभी कविताओं, गीतों और शेरो शायरी में इसे प्रियतम के मुखड़े, कभी महबूब की टूटी हुई चूड़ी के टुकड़े तो कभी शायर के दिल की उपमा दी जाती है। यहाँ तक कि दुनिया की बेशकीमती वस्तु या सबसे कठिनाई से प्राप्त होने वाले उपहार की बात हो तो चांद को तोड़ लाने के वादे किए जाते हैं, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ये सभी हमारी कल्पनाएं हैं। असल में तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है। श्रोताओं, यूं तो अमेरिकी खगोल यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई साल 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था, लेकिन तब से लेकर आज तक चंद्रमा पर पहुंचने और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करने में दुनिया के लगभग सभी देश जुटे हुए हैं। हमारे देश भारत ने इस क्षेत्र में अपना पहला सफल परीक्षण किया मिशन चंद्रयान के रूप में। श्रोताओं, हमारे देश का ये प्रथम अन्वेषण मिशन था जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। श्रोताओं, ये एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था जिसके प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर चंद्रमा की रासायनिक और खनिज संरचना की जानकारी प्राप्त करना और साथ ही उस पर जल के अणुओं की खोज भी करना। चंद्रयान प्रथम मिशन लगभग 10 महीने तक चला और इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक चक्कर लगाए। यूं तो इसे 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित किया गया था, लेकिन नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के कारण इसे पहले ही बंद करना पड़ा। लेकिन परिणाम संतोषजनक रहे, क्योंकि इस मिशन के समाप्त होने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दावा किया कि चांद पर पानी भारत की ही खोज है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चंद्रयान 1 पर मौजूद भारत के अपने मून इंपैक्ट प्रोब MIP ने लगाया। श्रोताओं, चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के करीब 15 दिन बाद भारत का MIP यान से अलग होकर चांद की सतह पर उतरा था और उसने चंद्रमा की सतह पर पानी के कणों की मौजूदगी के पुख्ता संकेत भी दिए। इसरो के अनुसार चांद पर पानी समुद्र, झरने, तालाब या बूंदों के रूप में नहीं है, बल्कि खनिज और चट्टानों की सतह पर मौजूद है। इस उपलब्धि के बाद चंद्रमा से जुड़े कई अनुसंधान कार्य किए गए। इसके बाद से आज तक भी देश के वैज्ञानिक लगातार चांद से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए परीक्षण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय का भी प्रक्षेपण हो चुका है और हम लगातार चांद को करीब से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। श्रोताओं, चांद दूर से जितना खूबसूरत दिखता है, पास से उतना ही विशालकाय है और अपने दिल में कई रहस्य छुपाए हुए हैं जिनको धीरे धीरे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं।

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम आज सुबह में अब वक्त है ट्रैफिक अपडेट्स का।
1: नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर की श्रृंखला में एक नई सुबह के साथ नए संदेशों के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। शहर के साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की सड़कों में हो रहे आवश्यक सुधार एवं विस्तार के परिणाम स्वरूप उपलब्ध उत्कृष्ट सड़कों में संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए सीमित वेग सुरक्षित जीवन को चरितार्थ करते हुए इस मूल मंत्र के अनुरूप चलें। मित्रों, यूं तो सड़क दुर्घटनाओं के अनेकों कारण है, किंतु कुछ ऐसे विशेष महत्वपूर्ण कारण प्रतिदिन देखने में आ रहे हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण वाहनों का तेज रफ्तार है। क्योंकि वाहन तेज रफ्तार में होता है, विषम परिस्थिति आते ही क्षण मात्र में वाहन में चालकों का नियंत्रण नहीं हो पाता और दुर्घटना हो जाती है। अतः धीरे चलें, सुरक्षित चलें। ठीक इसी प्रकार गलत दिशा में वाहन चालन भी दुर्घटना का प्रमुख कारण है। वस्तुतः ऐसे वाहन जो नियमानुसार सही दिशा में चल रहे हैं, यदि एकाएक सामने से अर्थात गलत दिशा से कोई वाहन आ जाए तो सही दिशा में चल रहे वाहन चालक को इसका आभास नहीं हो पाता और आपस में भिड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप होती है गंभीर सड़क दुर्घटना। मित्रों, तमाम प्रकार के वाहनों से भरी सड़कों में सुरक्षित वाहन चालन के लिए पूरे तन मन एवं विवेक के साथ चालक को सड़क में मौजूद होना चाहिए। साथियों, नशा व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है। नशा किया व्यक्ति अपनी यात्रा सकुशल जरूर प्रारंभ करता है, किंतु इसकी यात्रा सकुशल संपन्न होगी इसमें 100% संदेह है। प्रतिदिन होने वाली तमाम सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नशा ही है। अतः इस व्यसन से हमेशा बचकर चले, क्योंकि नशा कर वाहन चलाते पकड़े जाने पर माननीय न्यायालय के द्वारा 10,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। अतः नशा कर वाहन भूल कर न चलाए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी ट्रैफिक अपडेट। रोज की तरह आज भी हमने आपको अवगत कराया बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य नगर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। इसके जरिए आपको पता चलता है कि शहर में किस जगह भीड़ होगी, कोई कार्यक्रम, रैली या निर्माण कार्य चल रहा है तो ऐसे स्थानों से आवाजाही करते वक्त हम सावधानी बरतें। पिछले दिनों पूरे बिलासपुर शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी और अब भी हम पानी के भराव के कारण काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। श्रोताओं, जहां एक ओर गर्मी से राहत पाने और फसलों को लहलहाता देखने की उम्मीद से हम वर्षा का इंतजार करते हैं, वहीं दूसरी ओर अतिवृष्टि से हम काफी परेशान हो जाते हैं।

बारिश के इस मौसम में कई बार जल से भरे नदी तालाब और जल स्रोतों को देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है और हो भी रही है। नदियों बांधों के आसपास लोग सैर करने भी निकल पड़ते हैं और आज मोबाइल फोन के इस युग में वीडियो शूटिंग और सेल्फी लेना तो जैसे ट्रेंड सा बन गया है। कई बार घूमते फिरते या फोटो लेते समय जरा सी भी असावधानी हमें संकट में डाल देती है। श्रोताओं, इन दिनों बहते पानी की गति तेज है, तो गलती से भी पानी में तैरने ना उतरें, जल स्रोतों के आसपास जाने से बचें ताकि हम दुर्घटनाओं से बचे रह सकें। जगह जगह सड़कों और नदी नालों में भरे पानी में कई बार कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह भी हो सकते हैं, इसलिए पानी में जाने से हमें बचना चाहिए। बरसता हुआ ये पानी देखने में तो काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आज के युग में शहरीकरण और कंक्रीटीकरण की वजह से ये पानी जमीन के भीतर नहीं जा पाता और जल भराव और बाढ़ तक की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में हमें चाहिए कि इस मौसम का मजा तो लें, लेकिन सावधानी भी रखें। आवश्यकता न हो तो बारिश में बेवजह घर से बाहर ना निकलें, ना ही सैर पर जाएं। श्रोताओं, घर पर रहकर भी इस मौसम में हमें अपनी दिनचर्या और खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इस मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया और संक्रमण तेजी से फैलते हैं। इन दिनों हम ताजा और हल्का फुल्का भोजन करें जो कि आसानी से पचने योग्य हो, साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले भोजन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपनी डाइट में अदरक, लहसुन, हल्दी, नींबू, मौसमी फल जो विटामिन और फाइबर से युक्त हों, इन्हें भी हम शामिल करें। गर्म पेय जैसे तुलसी, अदरक के काढ़े और प्राकृतिक पेय पदार्थों का भी हम सेवन कर सकते हैं। श्रोताओं, जितना हो सके तला भुना भोजन ना करें। खट्टी और मसालेदार चीजें, कच्ची पत्तेदार सब्जियां, बासी भोजन और स्ट्रीट फूड खाने से परहेज करें। इन दिनों दूषित पानी से बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें चाहिए कि उबला हुआ पानी ही पिए। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर पकाएं या फिर खाएं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो बारिश के इस मौसम में भी स्वस्थ बने रहेंगे और रिमझिम बरखा का आनंद भी उठा सकेंगे।

घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। और तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

श्रोताओं, फिर किसी रोज कार्यक्रम आज सुबह में होगी आपसे मुलाकात। इसी वायदे के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं कार्यक्रम के समापन की।

आज सुबह। श्रोता आनंद उठा रही थी सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का। ये एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

हिंदी फिल्म गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज जो गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं आपको मोहित कर देंगे, आनंदित कर देंगे, क्योंकि आज का कार्यक्रम केंद्रित

है हिंदी फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ गीतकारों में से एक गीतकार द्वारा रचित मनमोहक गीतों पर। आज है जाने माने और बेहतरीन गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन, तो आज के सदाबहार नगमे हैं आनंद बख्शी की कलम से लिखे गए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उस गीत के साथ जिसके लिए गीतकार आनंद बख्शी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म का नाम अपनापन, गायक हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अपनापन इस फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा अगला गीत फिल्म बॉबी से। शैलेंद्र सिंह की आवाज और संगीत से इसे सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सदाबहार नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। आज का कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार आनंद बख्शी पर। एक और खूबसूरत नगमा आनंद बख्शी की कलम से रचा गया, आइए सुनते हैं फिल्म जूली से। संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का, स्वर किशोर कुमार का।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की युगल स्वर में बेताब फिल्म का गीत आपने सुना। संगीत आरडी बर्मन का था और गीतकार थे आनंद बख्शी। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं संगीत प्रेमियों के मनपसंद गीतकारों में से एक आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए गीत। कार्यक्रम के आखिर में आ रहा है ये दिलकश नगमा, रचा है आनंद बख्शी ने। और इस गीत की खास बात यह है कि इसमें आनंद बख्शी बतौर गायक भी हैं, साथ ही हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम चरस।

आनंद बख्शी, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म चरस के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे यही संपन्न होता है। आज का कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। अब आप सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के लिए आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन

संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की

0: संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
1: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
3: फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता

0: सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज़ जलडमरू भूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल

0: ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। LPG के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और PV सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially able persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. India Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honoring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of

छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कतिले। श्रोता साथी हो, आज के अंक में हमन आप मल्ल सुनवाथन हमर संस्कृति हमर साहित्यकार। अब एक क्रम में हमन ऐसे ऐसे साहित्यकार मल्ल आमंत्रित करथन जेमन अपन पूरा जीवन साहित्य सेवा में लगा दे हैं और नया नया पीढ़ी मल्ल भी लिखे खातिर प्रेरित करत हैं। ऐसे ही एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर संतराम देशमुख जी। आप जवाहर नगर दुर्ग के रहोया, बहुत लंबा समय से आप साहित्य सेवा से जुड़े हवा। आपके स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और संतराम जी,

0: पाले
1: हेलो।
0: तो आपके बारे में हमारे श्रोता साथी मल्ला बतावा, बचपन से लेके कैसे आप आगे बढ़त गया।
1: मैं बचपन से मोर घर में बसंत भैया बड़े भैया री से वो हाँ कविता लिखा है, हिंदी में लिखा है, छत्तीसगढ़ी में लिखा है। महू पढ़त लिखत रहूँ, पढ़त लिखत लिखत महू ऐसे सुनत रहूँ। घर में कवि गोष्ठी हो है और कविता कवि मन आत्म जात रहा है, तो उनकर प्रभाव मोर ऊपर पड़े। तो महू अपना शुरू करें लिखे बार वो मन लगा दें कि चल भाई महू लिखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन घर में तो ऐसे रहा बरजना रहे, पढ़े लिखे के सिवाय कुछ मत करना रहे। तो ये पाए के मोर जो उनसे चे थे वो बड़ा उस तरफ लग रहा है, ओतेक पढ़े ही लिखे ही में ओतेक धुने तो रहा है, लेकिन मैं कविता में ज़्यादा ध्यान देते रहूँ।
0: ये कतक उम्र रही से आपके उस
1: ये
0: समय?
1: मोर बहुत कम उम्र से, मैं समझ जाओ कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे हूँ, ज़्यादा नहीं रहूँ मैं, तो वही 9वीं 10वीं 11वीं में रहूँ मैं, तब शुरू करूँ मैं।
0: लेकिन एक
1: तो
0: माहौल आप मिलिस कि
1: एक माहौल मिला।
0: कुछ लिखे जा सकते हैं,
1: जी जी
0: शब्द से कैसे खेलना है
1: हाँ
0: वो भी
1: जी
0: आप सीख गया।
1: जी
0: तो पढ़ाई के साथ साथ ये
1: जी
0: जो लेखन कार्य आपके शुरू हुई, तो जो एक सहयोग मिलना चाहिए माँ पिताजी के, पहले तो ये रहे कि लड़का मन पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कोई नौकरी धंधा में लगे, ये रहे है ना, पढ़ाई ले ज़्यादा महत्व देते रहे इन्हें। और आपके बड़े भाई जिसे आप बताया कि वो कर लेखन में बड़ा रुचि रही से, तो आपके ये जो भैया हैं भाई हैं, कद का योगदान रही से आप आगे बढ़ाए में साहित्य के क्षेत्र में?
1: पूरा पूरा सहयोग ऋषि होकर तो हमेशा वो पढ़े लिखे की सलाह दे के साथ में वो पूरा बोले कि ठीक है लिखा था बहुत अच्छा है, लेकिन ये रहते हैं अब बाद में करबे, अभी थोड़े का करबे, अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये
0: हाँ
1: पूरा पढ़ लिख ले
0: जी
1: तो ये कर ले, तो मैं काफी से होकर बाद में शिक्षक बन गया, पढ़ते पढ़ा शिक्षक बन गया मैं।
0: अच्छा, ये कब की बात है?
1: ये सन 73 के बात है,
0: अच्छा
1: 73 जब मैं शिक्षक हुए में हैं तो
0: हाँ
1: मोला और बहुत रुचि हुई। तो
0: अच्छा
1: मैं कहा के हूँ डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी जो हमारे एक विद्वान है, तो बोला मैं पूछो मैं कि आपके प्रकाशन में कुछ किताब महने का, तो वो किताब मतलब भेजिस। और बोला मैं हाँ जियो मरोल पढ़े हूँ, तो एक कट पढ़े जियो मरोल, रात दिन हुई में लगे रहूँ। हमारे भाई जो कहा है काय लगे रहते हुए में काय कर कुछ दे, तो हमने कहा नहीं थे कुछ नहीं जाना, ये जो उन्हें ना ये किताब मैंने छत्तीसगढ़ी में और छत्तीसगढ़ में लिखना शुरू कर दूँ। और वहीं से मैं शुरू करूँ, जैसे बूढ़ा करम मिलीस, भोजली मिलीस मोला, तो वहाँ के रखिया पाग लिखे रही ने, गयराम जी साहू जी ने इन किताब मतलब रामेश्वर समरण भैया जी की किताब है ओला मैं भी पढ़े हूँ मैं, और बहुत अच्छा मोल ज्ञान मिली सोकर से प्रेरणा मिली मोला। और आज मैं जो लिखत हूँ ये 80 साल हो जाते हैं मोला, आज मैं लिखत हूँ इकरे प्रेरणा से मैं लिखत हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार पाठक हो गए, हमारे बड़े भैया वसंत देशमुख हो गए, इकर साहित्य लिखे का अध्ययन करें, कुरोज कुरोज के पढ़े मैं, अब बड़ पढ़े कुरोज कुरोज के। तब बोले मैं ये आज ये स्थिति में आज छत्तीसगढ़ी और ये सब मैं आगे पढ़े हूँ, आज लिखता हूँ गजल लिखता हूँ, हिंदी में गजल लिखता हूँ, निबंध लिखता हूँ, सब कुछ मैं लिखता हूँ बस। आज मैं ये स्थिति में आया हूँ और आज मैं आपका नाम ला कमाया हूँ।
0: जी, अध का नाम आप कमाए हवा।
1: जी
0: तो डॉक्टर विनय कुमार पाठक के आप पर चर्चा करें, जो प्रसिद्ध
1: हाँ
0: भाषाविद हैं,
1: हाँ
0: उनकर से आपके भेंट कैसे हुई?
1: भेंट मैं शिक्षक रहे हूँ तो
0: हाँ
1: दुर्ग आ रहे हूँ, दुर्ग आता कर दिलीप ठाकुर रहा है, तो उनका एक संकलन निकलत जिससे उनकर संकलन के साथ में मैं हूँ बोले सो। अब पहली सामान मेन मुलाकात तो होते से रहा और मिलते रहा, तो कथे संतराम तू मन कुछ अपन कविता चल बताओ, तो मैं 10 ठन जो रचना लिखे रहा हूँ छत्तीसगढ़ी में, पपची का पाकस मैं आपो बरसात आगे बारिश होते और जतेक गीत है ओला मैं लिख रहा हूँ, वो गीत मैं उन्हें सौंपते हूँ तो सौंपते, तो वो अपन प्रयास प्रकाशन से वो गीत मैं लिखी और खूब होकर अपन वो बड़े करी और बड़े करी तान मोरू बाड़े छाती है और अच्छा लिखा था मैं तो किसकी नहीं तुमला सक्षाना नहीं है और तुमला लिखना है और छत्तीसगढ़ी में लिखना है और जो विधा है छत्तीसगढ़ी में वो विधा से आगे बढ़ना है। और
0: जी
1: इस प्रकार से मैं उनका प्रेरणा लेकर के बसंत भी एक प्रेरणा लेके शर्मा जी एक प्रेरणा लेके मैं आगे बढ़े हूँ।
0: डॉक्टर विनय कुमार पाठक जो हैं
1: जी
0: प्रसिद्ध भाषाविद
1: जी
0: हैं, और जो लड़का मन जो नया नया लिखे के प्रयास करते हैं
1: जी
0: वो मन लभी रास्ता दिखाते हैं, प्रोत्साहित
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, है ना। आप लभी प्रोत्साहित करें
1: जी
0: और आज आप ये जगह पे
1: ये
0: हावा,
1: बजाओ जी
0: तो ये मौका में आप पाले पाठक सर ला कैसे सुन।

0: करिया।
1: मैं ये मौका में एक बार फिर सुरता रख सकता हूँ सर कि जब भी वो ऐसे दीपाक्षर शाही समिति के वो संरक्षक हैं और उन आते रहने उनका आना जाना होते रहते हमेशा घर में। मैं बिलासपुर चल देते रहे हूँ मोला चित्र कैसे जाना तरी से विमल कुमार पाठक भी यही नहीं तो इनकर संपर्क में आए से मैं अपन जोन है और विमल लिखते हैं
0: जी,
1: और बताओ मैं भैया
0: इतका प्रभावित हो
1: अक्का
0: गया।
1: प्रभावित हूँ तो मैं अपन तो काबर मोर बाई के नाम विमल ही से और विमल में लिख दो तो विमल मने हो गया पवित्र है तो महो पवित्र हो गया ये मैं सोचे और ये जो उन्हें
0: जी,
1: डॉक्टर विमल कुमार पाठक भैया के देने
0: कुछ गुरु दक्षिणा कह सका
1: गुरु दक्षिणा कह सकता हूँ। हाँ हाँ
0: था। अच्छा, आप जब कविता लिखे के शुरू करा,
1: जी
0: अब वो आपके जो उम्र में, उस समय बहुत जल्दी आपन बिहाव कर लेते रहा। अच्छा,
1: नहीं मोर बिहाव तो बहुत लेट से हुई मैं कई 25-26 साल में बिहाव हुआ है
0: तो आप जो कविता लिखा तो
1: जी
0: आपन बाईला सुनात रहा कविता
1: रोजे सुनाऊ कर बाद में शादी हो बाद में बिहाव
0: दादा?
1: रोजे सुनाऊ में
0: तो मना नहीं करे कि नहीं, अब
1: मनन
0: पहले सुनो।
1: वो सहयोग दे लिखे में ये दे में लिख दो ना ये
0: अच्छा
1: वो बड़ा सहयोगी रहे और आज जत का भी मैं ये सम्मान पाया
0: हाँ,
1: वो में ओकरे हाथ है और ओकरे कारण मैं आज
0: तो ये बतावा, ये जब उनकर चर्चा होते तो उनकर कोई ऐसा जो आग्रह रहे से कि ए विषय में आप लोग कविता लिखना है,
1: वो
0: तो
1: कभी कभी
0: सुरता है
1: सुरता है ना
0: तो सुना देवा ना हम श्रोता साथी मल्ला।
1: ठीक है मैं सो रहा हूँ सुना तो देखो
0: हाँ
1: पपची पाक का समय तोर ये मैं गाक सुना तो मोर
0: हाँ
1: कि इतनी
0: हाँ
1: है
0: हाँ जी
1: गात लेकिन वो तक स्वर तो नहीं है मोर
0: हाँ हाँ
1: पपची पाक का समय तोर हृदय माया बढ़ जाना पपची पाक का समय तो हृदय माँ अबर जाना मुंह लगाते मीठ लगे औ अंतस तक हबरा पपची पाक का समय तो हृदय माँ अबर सुना अब देखो अंतर का है उफनावत है मन के पीरा जसनरवा के पूरा उफनाव थे मन के पीरा जसनरवा के पूरा माया रंगला रंग दे संगी माया रंगला रंग दे संगी जन छोड़िए राय अधूरा तोर माया के रंग संगी जन छोड़िए राय अधूरा तोर माया के फूल संगी पल पल फूलत जा पपची पाकस मैं तोर हृदय माया बढ़ जना अलावत ही तोर बिना मोर मन अंगना के गोंदा अलावत ही तोर बिना मोर मन अंगना के गोंदा टूट टूट के बगरत हावे ये जिंदगी के घरोंदा अलावत ही तोर बिना मोर मन अंगना के गोंदा अब टूट टूट के बगरत हावे ये जिंदगी के घरोंदा तोर बिना जिंदगी अंधियारी अंजोर कहाँ ले पाए पपची पाकस मया तो हृदय माया बजना
0: डॉक्टर संत राम जी, ये अभी जो अपन रचना आप सुनाए हो, और आपके यहाँ भाई जब वो मायके जाए के वो तैयारी में रहीन हुई, ये गीत लो सुन के तो नहीं जाते रहीन हुई मायके फिर अपन?
1: उन जहाँ नामे च नहीं ले मैं के नाम नहीं ले
0: तो इतका बढ़िया बढ़िया गीत सुनई है, आप तो
1: हाँ
0: कहाँ ले मायके जाही
1: नहीं
0: वो।
1: जाए रिझा जाए इंचे मैं नहीं जाऊँ खा तो बोलो बोलो जबरदस्ती बोले पर ले जा भाई ते हैं 1-2 दिन मत आते कहाँ पर मैं कल जान छोड़ दे हैं
0: जी, अब आप शिक्षक रहते हुए,
1: जी
0: आप लेखन कार्य तो आपको, जब आप विद्यार्थी रहा, पढ़ाई करते रहा, तब से आप लिखना शुरू कर दे रहा,
1: जी
0: आपके बड़े भाई के भी आपने मार्गदर्शन मिलत रहे
1: मिलती
0: से,
1: सर
0: और आप डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के भी आप चर्चा करा था, ये सब मन के आप लोग एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलिस।
1: बहुत बड़े
0: तो
1: मार्गदर्शन
0: ये मन के
1: सर
0: जब मार्गदर्शन आप लोग मिलिस तो आप कैसे कैसे आगे बढ़त गया साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के अलग अलग विधा के क्षेत्र में?
1: विधा में सबसे पहली मैं तो कविता काव्य ले हूँ और काव्य ले करके फिर कर मैं गीत लिखना शुरू करूँ मैं गीत भी लिखे हूँ गीत लिख लिख करके लिखा मन लदाऊँ मैं और वो मन स्कूल में गाए लिखा मन है हारमोनियम में गाए तपला में गाए पर मैं नहीं गाते हूँ भाई ये लिखा मन है गाए और संगीत मास्टर उन्होंने गाया। और इससे कविता जब उन्होंने लिखो तो उन्होंने कवि सम्मेलन तो हमारे उदय कुमार पाठक जी मूल बल

0: समय और सुनवावे मंच में, पढ़ो जी कविता वो अच्छा ढंग से पढ़ो, लजाओ मत और अच्छा गहरी सुनाओ। तो हम उलट कविता सुनान और लेकिन मन अभी कक्षा में हम जहाँ तो अपन कविता मिला सुनात रहन
1: जी जी जी।
0: ऐसे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हम फिर किताब लिखना शुरू करें और आज हम अत किताब लिखे हैं जो न 27वां किताब होते हैं हम लिखे से।
1: अच्छा,
0: मैंने शुरू से लेकर के अभी तक के हिंदी में कहो चाहे छत्तीसगढ़ी में कहो, आज 27 किताब मेरे सामने है।
1: आप बताया कि आप कविता लिखा था, कवि गोष्ठी में भी आप जात रहा और आप बताया कि लजात भी रहा, तो लजा लजा के कैसे कविता मतलब पढ़त रहा आप?
0: अब लगा वो समय मन ला टाँट करे पड़े काबर विनय पाठक भैया बैठे रहे तो देखत रहे बने पढ़ ऐसे कि तो कभी रामेश्वर भैया रहा है तो कभी रामेश्वर ये कहा ये कैसे कर सकते बने पढ़ लो भाई ऐसे ही कहा तब मैं सोड़ बने बलकरा पढ़ूँ और बलकरा का पढ़ पढ़ बने निकल घलक जाए मुँह ले टाँट भाखा निकल जाए तब कविता सुनाओ तब मोर आत्मबल बढ़े। और ये मोर आत्मबल के जौन है भैया रामेश्वर जौन है आज उनका देने जिन आज में है नित मर सदा लचकू रहा काबर घर में इसे रहे वातावरण रहे काबर हम अपन बड़े भैया के सामने बोल नहीं सकन। और वो हमने एक पिताजी घर इसे बताते हैं शिक्षक रहे हम तो नानपन में आ गए हैं ममयारों गाँव में हम इसे पढ़े लिखे भैया के सामने हमारा सानिध्य मिले और हम लोग बहुत बड़े वातावरण मिले और आज जेकर परिणाम में आज हम कभी साहित्यकार बने।
1: तो आप कवि बने हैं साहित्यकार बने हैं और लचकुरहा भी है लजा था, तो टाट एक ठो कविता और सुना दे हमारे श्रोता साथी मल्ल।
0: एक ठो कविता मैं लिखे रहा हूँ सर जो मैं जिंदगी में मैं कर रहा हूँ जिंदगी के सबो भीखा

0: भी बदल गड़ गड़ के लिख डरों मैगी, जिंदगी के सबो भी कहा बन गए अमृत, जिम्मो भी बदल गड़ गड़ के लिख डरों मैगी, जिंदगी के सबो भी कला। प्यास खोजत तरिया भारी मरत प्यास, खोजत खोजत तरिया भारी मरत प्यास, हपटत गिरत रहो तबले नहीं पायो विश्वास, हपटत गिरत रहो तो नहीं पायो विश्वास, मोर मन है पीरसो जोरे हावे सुगर गीत, जिंदगी के सबो बीत बन गए अमृत, जिंदगी के सबो गीत बन गए अमृत।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन तो ऐसे कर रहा था कि आपसे कविता सुनते रही, लेकिन कुछ बातचीत भी करना है। पढ़ाई से आप लगातार जुड़े रहा जब तक आप शासकीय सेवा में रहा, वकर बाद चूंकि साहित्यकार कभी पढ़ाई से अलग नहीं हो सका था, और जितने बार आप हर चीज़ लग पढ़िया कुछ नया नया अभी भी सीखे बर मिलते है ना, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले आप गुरुजी रहा संत राम देशमुख, बाद में फिर आप बन गया डॉक्टर संत राम देशमुख, तो ये डॉक्टर बने के विचार आपके मन में है वो कैसे, ऐसे कर बारे में बतावा।
0: मैं देखियो चंदनी गोंदा दाऊ रामचंद देशमुख, पहली वो समय सन 71 में रहूँ, मैं कॉलेज पढ़ाते रहूँ पहली साल में, वो देखियो अतेक भीड़, अतेक भीड़ रहा तो महू मन के अतेक भीड़ के आदमी में रहा है, कोरी खिड़का आ गई, कीड़ा मन बुलबुलात रहा है ऐसे, वो
1: हजारों की
0: भीड़
1: संख्या में रहा,
0: हजारों को, वो का अनगिनती रहा है, वो
1: ये
0: यती ओती छोड़ नहीं रहा
1: उन्नीस सौ उन्यासी में महू देखो हमारे गांव में होरिश चंदनी गोंदा।
0: जी। मैं 71 के बाद आप लोग
1: हाँ
0: बताता हूँ,
1: जी।
0: पहली जो वो बताएंगे सुन में, और वो मैं सुने हुए एक से एक गीत सुने, ये छत्तीसगढ़ी के हिंदी एक
1: हाँ
0: उठनी प्रयोग से
1: जी जी
0: नहीं देखो तो मोरो मन लगी सही से कि यही भी किया जाए, और एक स्थिति में वहाँ दूसरा बात यह है कि ओकर जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम के जो है वो देखो मैं कि नया नया नाचा के जो है रिस स्वरूप रही से तो उन बदले रही से परिभाषा मन बदले रही से, ये मैं सब बदले रहा है। तीसरा मैं पढ़े रहा हूँ सुरसतिया और मोगरा, ओकर लेखक के ने मान मालूम नहीं मोला, ओकर जवाब चंदनी गोंदारी से आवाज जो जो है श्रीराज की जो 32 उमन है जो देखई ने उमन है वो बहुत ही मार्मिक रही है, और इसी के नारी के प्रति जो उनकर भावना जो से

0: बहुत मता रही से उनकर में मैं देखे हूँ, मैं नारी के प्रति उनका जरूरी है, नारी के प्रति किस तरीके से उभारे ये ऋषों में, और उनकर जौनी जौनी है बोला बहुत अच्छा ढंग से मन प्रस्तुत करे ने उनकर स्वाभिमान ल वापस ले सोह, और आज जौन है चरित्र जौन और पवित्र निर्मल बते गंगा जल के तरह। ये कारण मैं अपन के हूँ, और मैं कहूँ कि ऐसा बात है तो महू PhD कर हूँ, और PhD करके दाऊ जी जौन बताते कर रद्दा में चढ़ूँ और नवा नवा छत्तीसगढ़ी रद्दा करके गीत करके मैं आदमी के जन जन तक के फैलाऊँ, एक कारण मैं PhD हूँ।
1: आप PhD कर रहा दाऊ रामचंद्र देशमुख जी पे,
0: जी
1: आपके मुलाकात उनकर से हो रही है?
0: मुलाकात हमार होते रही से उनकर से, कहाँ पर हमारे बड़े भैया बसंत देशमुख रहा है सेक्टर 2 में रहा है, BSP में कर्मचारी रही से, काफी सारी से उनकर पास आना जाना करे, हमेशा अकेले सलाह ले, और कभी बीच बीच में महू संघर जाऊँ तब हमारे मुलाकात होते च रहा, कभी कभी गाँव जाए हमार तीहे भी वो हमारे से मुलाकात हो जाए, वो हम लोग बलवाए संतराम जी आओ बैठो सामने, कैसे पीछू रथ हो सामने बैठे करो, का का लिखत हो तेल बताओ, पहले लिखो और फिर ओकर बाद ओ अच्छा अच्छा लिखो जौन छत्तीसगढ़ी हमारे ये है छत्तीसगढ़ के नाम रोशन।
1: रामचंद्र देशमुख जी से आपके भेंट मुलाकात हुई?
0: हो कभी कभी
1: तो
0: हो जाए।
1: आप कभी चर्चा करा कि मैं आपके बारे में PhD करना चाहता हूँ?
0: नहीं ये चर्चा नहीं कर रहे हूँ, वो तो PhD मोला वो उस जब हो गए ना तब चलते तेकर बाद ही मैं सोचे मैं, और डॉक्टर पाठक क्लब में बताया कि भैया मैं PhD करते हूँ तो किस ठीक है कर लो, तो काम में करो यही करो PhD इंक्री ऊपर करो, ये भी नया विषय है
1: जी,
0: तो उनकर में सलाह के मैं PhD करे हूँ, और आज PhD हो गए ये डॉक्टर कुमार पाठक शर्मा भैया देन है।
1: जी आप जब आप PhD करे हो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी पे, तो ओकर पूरा व्यक्तित्व के बारे में आप लोग जाने के मौका मिली सोही
0: पूरा जाने के
1: है ना, तो उनकर रहन सहन से लेके जो उनकर जो चिंता रहे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला बचाना है बढ़ाना है, और अगर कुछ परिवर्तन करना है तो ओकर सकारात्मक परिवर्तन करना है, तो ऐसा कुछ आप उनकर अध्ययन के दौरान आप महसूस करें?
0: हम जब वगैरह जान तो रिहर्सल चलत रहा है, तुम्हें जो नया नया गीत रहा है नया नया जो नहीं रहा है लक्ष्मण मस्तूरिया गीत रहा है और सब जते गीत रहे बोले हम सुनन
1: जी
0: सुन सुन बड़ा गीत अच्छा लगे, जैसे कोतुराम दली जी गीत रहा है बड़ा सुनन हमार, और खुदुराम दलित जी गीत ओकर वो तो हमारे गांव में रही से, खुदुराम दलित जी हमारे गांव पैदाइशी है
1: अच्छा,
0: टीकरी के और जन्म स्थान जो है टीकरी है, अर्जुन दस लगे बालो जिला परिद्रु जिला मातरी से तो ऊंचे वो रात रही से तेकर हमारा और हम लोग पढ़ाए तक है गुरु जी है, तो ऐसे ऐसे रही सर, और उनका फिर कला जो है वो देखे ना वो अच्छा अच्छा कलाकार बुलाए और दिन भर वही में मस्त रहें,
1: मतलब कुल मिला के आप बहुत प्रभावित हुआ
0: बहुत ज्यादा
1: ये सब प्रयास ला देख के, है ना,
0: जी।
1: ऐसे करके आप आगे बढ़त गया और अभी भी आप सक्रिय हवा
0: अभी भी सक्रिय हूँ
1: लेखन में,
0: 80 साल हो जाते हैं
1: हाँ।
0: तब बोल कुछ न कुछ लिखते चलत हूँ मैं,
1: नहीं आप तो लिखा था ठीक है अपन खातिर जो साहित्य साधना में आप लगे हवा
0: जी,
1: और निरंतर ये चलत रहे आपके नए नए विषय में लिखत रहा, और आज जो परिस्थिति है जो सामाजिक वातावरण है उकर बारे में भी आप प्रयास करता लिखे के?
0: नहीं हम उकर बारे में पूरा प्रयास करते हैं, आगू जो संस्कृति से और अब के संस्कृति है तो उनकर नवा गढ़े खातिर हम लिखथन कि ये संस्कृति में नहीं चल करके इस संस्कृति में चलो, लेकिन आजकल के लड़के मन मान ही तक नहीं माने, आजकल के लड़के मन आज वातावरण अतिक बदल गए है का बतावे कुछ नहीं कुन भी नहीं करे,
1: और हम तो देखते हैं कि हर जिला में तहसील में समूह बने हुए हैं आप मन के, अलग अलग साहित्यिक समिति बने हुए हैं आप मन के भी है, कई जन जुड़े हवाओं में आप जैसे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं सब है ना, आप मन लिखता भी और नई पीढ़ी ला भी आप मन जोड़ता चर्चा होते सारा चीज होते, तो जब आप मन साहित्य समिति के गठन करता आप मन, तो जो नई पीढ़ी है वो मन ला कैसे प्रेरित करता कि नहीं तू मन भी लिखा अच्छा लिखा नया ला भी अपनाना है लेकिन कहाँ तक अपनाना है एकर भी एक तो सीमा होना चाहिए, तो ऐसी कोई चर्चा आप मन के होते?
0: देखो सर हम का ही समय एक लिखा दिवंगत हो गए
1: हाँ
0: दीपेश नाम रहे
1: हाँ,
0: वो अपन कक्षा में बड़ा अच्छा लिखे होनहार लेकर ही से ओकर जाए के बाद में हम बड़ मायूस हो गए, मायूस होने तो ये ओकर जो चिरौंजी बनाए खातिर ओकर अवदान ल हम दीपाक्षर साहित्य समिति बनाए।

0: और दीपाक्षर साहित्य समिति में जतका नाम आना वाले किए लिखरी ने सब हम साहित्यकार और मुला दे गए कि कविता ऐसे लिखे हो आज के संस्कृति में लिखो कविता किस ढंग से लिखना है ये पाइक हम बता दें और हमारे गुनी गुनी जो सत्यकर्मी मंत्र है वो मन वाला आज तक के प्रयास करते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार पाठक रहा है, डॉक्टर दादूलाल जोशी रहा है, कृष्ण कुमार दीप रहा है, अभी भी है अभी तो वो मन अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे से, दुर्याय नहीं है वो मन भी आज भी हमारा सहयोग देते और आज जो गाँव गंवई के जो है वो मन भी बुलाते और वो मन बुला करके नए नए चीज जो रस्ते के रास्ता बताते हैं आज वो मन कविता लिखाते हैं और बहुत तक के मंच में भी पहुंचे हैं
1: जी।
0: ये हमारा प्रयास रही से, ये दाऊजी का प्रयास है।
1: कविता के बात होते हैं एक विधा कविता है, एकर अलावा जैसे आपके कहानी लेखन है और उपन्यास लेखन है छत्तीसगढ़ी में, एकर तरफ भी कुछ प्रयास आप मन के
0: एक
1: होता?
0: प्रयास में है जब अपन गांव में मैं मारू गाँव रिश्ते रात रहे तो मैं नाटक मंडली से,
1: अच्छा
0: नाटक मंडली में भोकुआ जज लिखे मैं नाटक जिसमें मैं भोकुआ जज बनो और कंडिल हमन टार्च बना और जो ये रहा कोतवाल बने तो न टोपी लगा नहीं वो मन मकड़ पगड़ी बांधे रहा है और वही नाटक हम देखान जिमें बहुत अच्छा रहा है किसान और निजी से दोनों के और किसान और किसान मन क्या माल गुजार के दोनों को झगड़ा रही ने और उनमें किसी टाइप के वो भोकवा जज जो है वो फैसला दे बोला बताए उन्हें तो और वो कोतवाल बने चपरासी बने तो उन्होंने कहा एक हजार एक एक हजार श्री श्री 1008 भोकवा प्रसाद चंडी प्रसाद जज आवा थे तैयार रहो तो ये ला हमन गांव में खिले सर और इनमें से बसंत देशमुख भैया हमारे बड़े भैया से बहुत प्रभावित हुए और उनमें वो जमाना में जो जमाना हम कहते हैं उनमें 100 रुपया हमने इनाम दी वो बकर जाओ हम लोग बढ़ के
1: जी
0: इस प्रकार से रही नमन।
1: तो बातचीत थोड़ा सा विराम देके कुछ एक और कविता सुने के मन होते है।
0: ठीक है सर
1: तो सुना देवा एक कविता और।
0: ये कविता मैं सुनाता हूँ अपना, ये जब पानी गिरत है और 3 दिन की नटेर दिस अभी तक के नहीं
1: जी
0: और किसान मन की आज जो स्थिति है तो निश्चित से ऊपर तरफ देखा थे टुकुट टुकुट देखा थे कब गिरी कब गिरी पर वही समस्या देखे जो मैं एक कविता लिखे रहे हूँ बोला आप मतलब सुनाओ
1: जी सुनाओ।
0: आस के बंधवा टूट गे रे संगी, आस के बंधवा टूट गे रे संगी, बीच में डूंगा बुड़ गे रे संगी, आस के बंधवा

0: पियर रुख राई ले देख्यों मन मोरी यहाँ ले उबर गे संगी, मन मोरी यहाँ ले उबर गे संगी। आषाढ़ भई गे बाटे पड़ोसी सावन मिर्चा छींचे गाँव, आषाढ़ में भई गे बाटे पड़ोसी सावन मिर्चा छींचे गाँव माँ। भादो संग माया बढ़ायो, भादो संग माया बढ़ायो, नहीं चीन्ही सिर दे के दावला खुशी के सूरज बुड़गेरे संगी, खुशी के सूरज बुड़गेरे संगी, मन मोरे यहाँ ले उबर गेरे संगी, मन मोरे यहाँ ले उबर गेरे संगी।
1: बहुत बढ़िया रचना आपके। और समय तो होते थे अब आपसे विदा ले है के, लेकिन जाते जाते एक और मन में इच्छा होते थे कि आप मन इतना समय साहित्य साधना में लगाया हुआ और नया पीढ़ी मतलब भी आप मन जोड़ा था है ना, तो ये जो नई पीढ़ी है मन में कतका आप मन वो देखता, ललक कितना है, जुड़ाव कितना है मन के आगे बढ़े के, का देखता है स्थिति और कैसे आप मन उमल आगे बढ़ाए बर प्रेरित करता हो।
0: का होते देखो कि नवा जौन लिखी है तो हमारे साहित्य समिति में जुड़ जाते हैं और उन हम विधा से वो लोग बताथन, लेकिन उनकर में जो संकोचपना है जैसे करतन
1: जैसे आप ले जाते
0: जैसे हम लजात रहन, तो
1: रहा
0: इसमें उमल हम कथन कि देखो हम लजात रहन आवाज
1: हाँ
0: कैसे आ गई, तो मन कहते नहीं भाई ठीक है, तो वह मन ये कि मैं अपन पत्थर देखते हैं और आगे बढ़ जाते उमल आ, तो बल बढ़ता न मना हिम्मत ल बंधाता न हम और हिम्मत ल बंधा और मन आगे बढ़ाते आज मंच में आते।
1: तो मैं कहते रहे आप डॉक्टर संतराम जी की लजात लजात एक गीत सुना।

0: जात लजात सुना बन कर ही तो हमार गीत जो है ना वो बड़ा विचित्र टाइप के गीत रहते हैं। आजकल नवा नवा कविता सुन नए नए गजल सुनते
1: हाँ।
0: तो पी पी के आंसू में हाँ, पी पी के आंसू में हाँ, अपन पियास बुझाए हो, लहू डार माटी दिया माँ, हम डार माटी दिया माँ, आंधी तूफान जलाए हो, पीरा लाई से पियो में जैसे कुसियार के पानी, पीरा लाई से पियो में जैसे कुसियार के पानी, कलप कलप के जीना तो मोर जिंदगी के कहानी, खेल तमाशा बन गए जीना, पग पग हंसी पग पग रोना, खेल तमाशा

0: चिरा रही गे जिंदगी के दोना, चिरा रही गे जिंदगी के दोना।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया संत राम जी। और आज आप स्टूडियो में आया और अपन पूरा साहित्यिक यात्रा के बारे में विस्तार से आप चर्चा कर
0: जी
1: रहे हो,
0: जी
1: एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देथन।
0: बहुत धन्यवाद है आप।
1: श्रोता साथी हो, आज हमर संस्कृति, हमर साहित्यकार ये क्रम में आमंत्रित करे रहन जवाहर नगर दुर्ग के डॉक्टर संत राम देशमुख जिला। आप वरिष्ठ साहित्यकार हवा, एकरे संग छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ये अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: आकाशवाणी रायपुर से आपने सुना कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को अभी हम अनुप्रसारित करेंगे। अंतराल का

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था धमाल चार। इस फिल्म से संजू राठौर की आवाज सी रश्मि विराग और संजू राठौर ने इस गीत को लिखा, तनिष्क बागची और संजू राठौर का संगीत। और आइए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं भूल भुलैया तीन। इस फिल्म से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गीत है। आदित्य रिखारी ने इसे लिखा है और संगीत है लीजो

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पति पत्नी और वो, इस फिल्म वो दो। पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे बादशाह कृष मोंदल, किशोर मोंदल और इप्सिता की आवाजों में। इस गीत को लिखा है बादशाह और कुणाल वर्मा ने, बादशाह हितेन और देव सदाना का संगीत।

यारियां दो इस फिल्म का गीत अब सुनिए। यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर की आवाजों में इस गीत को लिखा खलीफ और यो यो सिंह ने, संगीत खलीफ और यो यो सिंह का।

ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर है चित्रलोक कार्यक्रम लेकर। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक गीत जुग जुग जियो। इस फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजें हैं और इस गीत को संगीत से सजाया है कविता सेठ और कनिष्क सेठ ने।

और लीजिए अब सुनिए तू झूठी मैं मक्कार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: आ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: थैंक गॉड फिल्म का गीत सुनिए, योहानी, जुबिन नौटियाल और सूर्य रघुनाथन की आवाजों में, रश्मि विराग की रचना, तनिष्क बागची और चमत्कार संगीत का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल थे।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ अपने बख्शी फैन।

0: के लिए।
1: जरूर।
0: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
0: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
0: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगता था। वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस ले

0: और उन्होंने उसे
1: हाँ
0: एक
1: जी,
0: मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस।
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्श साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया। मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी। लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्श साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तक मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग। और उन्होंने बख्श साहब ने उठा, या बख्श साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। तो बख्श साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे? तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्श साहब ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वही, यहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना। एक बार सुभाष घाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्श साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्श साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्श साहब ने सुभाष जी घाई साहब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्श साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्श साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्श साहब ने गाड़ी रोक दी। मतलब रुक रुक रुक, कुछ लिखना है मुझे। और उन्हें कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
0: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
1: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
0: ओहो,
1: तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं, जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले, और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी। तो वहीं पर बख्श साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपने उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 5x5 सीजर पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइने, बंसरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्श साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली है 2 हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्श साहब ने बोला, याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था? तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने? तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
0: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
1: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्श साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फुलगले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड। तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 2 बजे आते थे, 3 कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माय ब्रदर टू माय सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था उनकी लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो

0: नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने। तो मेरे डैडी ने कहा कि तेको पता है इस अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नॉट नो। तो इसर की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स ऑफ हिज करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल।
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है।
0: इसी बात मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
1: जी,
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्ब नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने बेताब में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे हैं, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरी वक्त मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे हो कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है
1: जी।
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है। काम में और शौक में फर्क होता है। वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता। अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा अब मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर?
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है हर गाना आपको एक जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ सकता
0: हूं। मुझे याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल चला गया था, यू नो विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था। तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा वड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? दूसरा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है। क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात है।
0: ऐसा ही गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है। और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
1: क्या बात।
0: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है तो किसी के जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहो
2: कहा
1: सुना
2: कुछ हुआ क्या

0: तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 9:55 होने को हैं। आकाशवाणी रायपुर से अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया और आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल 22 जुलाई से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। औषधि महानियंत्रक ने टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स इंडिया द्वारा विकसित क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन को अनुमति प्रदान की है। कंपनी के अनुसार ये वैक्सीन 4 से 60 वर्ष आयु के लोगों के लिए स्वीकृत और इसे डेंगू संक्रमण के पूर्व इतिहास की जांच के बिना लगाया जा सकता है। इसे यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अर्जेंटीना सहित 40 से अधिक देशों में मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गौ संरक्षण पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए संचालित किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट दर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों के 1,64,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता ये दर्शा

0: आती है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल 22 जुलाई से शुरू होगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के 11 नगरी निकायों में पिछले लगभग 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित सक्षम अधिकारी कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर उस पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित करें। ये आदेश न्यायाधीश विभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने अमित कुमार वर्मा सहित 11 कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड और उससे लगे बिहार के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री चक्रवाल का कार्यकाल 23 जुलाई को समाप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के 172 करोड़ रुपए के ओवरटाइम भुगतान घोटाले में गिरफ्तार पूर्व प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी की पुलिस रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद कल ईओडब्ल्यू ने उन्हें विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां आगे की पूछताछ के लिए अतिरिक्त रिमांड मंजूर की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया और आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल 22 जुलाई से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

चारों दिशाओं में फैली हरियाली भला किसे नहीं सुहाती। हरे भरे खेतों की लंबी कतारें अन्नदाताओं की मेहनत को बयां करती हैं। वो किसान ही हैं जो बारहों महीने अपने खेतों में पसीना बहाती हैं और पूरे देश को धन धान्य से भर देती हैं। अनाज का ऐसा कोई दाना नहीं जो किसान के हाथों का स्पर्श पाकर सोने सा न दमकता हो। सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों ही देश हित में खुद को समर्पित कर देने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रेरक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों के

को समर्पित कर देने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रेरक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों के असीम श्रम के ही कारण छत्तीसगढ़ की प्रसिद्धि धान की कटोरे के रूप में विश्व विख्यात है। यहाँ के धान की एक एक बाली में बसती है किसान के पसीने की भीनी भीनी सुगंध। इसी तरह देश के हर राज्य के किसान अपनी अपनी जमीनों पर उगाई जाने वाली अनाज की किस्मों को लेकर अपनी एक खास पहचान के साथ सामने आती हैं। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि हर नागरिक के दिल में अपने अन्नदाताओं के लिए इज्जत हो।

0: हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने शुरू की है किसान सम्मान निधि। इस योजना के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार पात्र किसानों को हर साल प्रदान करती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। छत्तीसगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि की आर्थिक सहायता 3 समान किश्तों में सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। ये योजना अब बन गई है किसानों के सम्मान की प्रतीक।
1: मैं राकेश कुमार शर्मा, उप संचालक कृषि जिला जांजगीर चांपा में कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में बताना चाहूंगा कि इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। हालांकि ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी मानी गई है। इस योजना के तहत जो पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए 3 आसान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से शासन देती है। ये एक केंद्रीय योजना है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और ये 6,000 रुपए सालाना देने का जो मकसद है वो किसानों को बीज उर्वरक एवं अन्य कृषि जरूरतों के लिए सीधे नगद उनके खाते में शासन डालती है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि छोटे और जो सीमांत किसान है उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष सीधे वित्तीय सहायता 3 आसान किस्तों में प्रदान किया जाए ताकि वो कृषि आदानों जैसे बीज उर्वरक की खरीदी और अपने घरेलू जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी आय में वृद्धि हो। यदि वो किसान भाई से पंजीयन करना चाहते हैं तो वो अपने आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व जैसे खतौनी खसरा या भूमि पासबुक कॉपी या B1 और उसका एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी है। उसके पास जमीन होना चाहिए, साथ ही जो उसका बैंक खाता है वो डीबीटी के लिए उसके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि में यदि किसान पंजीयन कराना चाहे तो उसकी प्रमुख मापदंड में पहला तो ये है कि किसान भू स्वामी होना चाहिए, अर्थात किसान के नाम पर 1 अप्रैल 2019 से पहले की कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। भूमि का स्वामी या तो किसान एकल हो सकता है या संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है और इसमें एक परिवार में जिसमें परिवार की परिभाषा पति पत्नी और नाबालिग बच्चे आते हैं उनमें किसी एक को ही योजना के अंतर्गत पात्र मानकर उनके खाते में डीबीटी किया जाता है। इसके साथ साथ किसान का EKYC होना चाहिए। EKYC के लिए पीएम किसान पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर के माध्यम से बायोमेट्रिक या OTP आधारित EKYC कराना बहुत अनिवार्य है। किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। कहाँ से किसान भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मुख्य रूप से पात्रता के मापदंड है। तो साथ साथ अपात्र कुछ किसान अपात्र भी होते हैं जिनमें संस्थागत भूमि धारक अर्थात यदि किसी किसान के नाम से मंदिर ट्रस्ट या किसी संस्था की जमीन है तो वो इस योजना के अंतर्गत अपात्र होंगे। साथ ही संवैधानिक पद संभालने वाले किसान जैसे कि पूर्व या वर्तमान मंत्री जी, सांसद, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सदस्य, नगर निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर या लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तो इस योजना में

अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारी कर्मचारी जिसमें चतुर्थ श्रेणी समूह को छोड़ दिया है तो शेष अन्य जो है अपात्र की श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा ऐसे सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जो 10,000 या 10,000 से अधिक जिन्हें पेंशन मिल रहा है वो भी अपात्र है। ऐसे सभी करदाता जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है वो भी अपात्र की श्रेणी में है। साथ ही पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट वगैरह ये इस श्रेणी में अपात्र है, वो इस योजना के अंतर्गत पंजीयन नहीं करा सकते हैं। बताना चाहूँ कि इस योजना के तहत जैसे मैंने पहले बताया कि 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए की राशि आती है, तो जो पहली किस्त है वो अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में इन 4 महीनों के अंदर आती है। दूसरी जो किस्त है 1 साल में वो अगस्त से लेकर नवम्बर के बीच में, जो तीसरी किस्त है वो दिसम्बर से मार्च के बीच में इसमें आती है। इन 3 पीरियड में 2,000 की राशि जो है वो किसानों खाते में आती है। कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तारीख को राशि डाल दी गई है तो आज ही सभी किसानों खाते में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसा मैं बताया कि अप्रैल से लेकर जुलाई में उस वर्ष की पहली किस्त आती है तो किसी किसान को अप्रैल में मिलता है, किसी किसान को उसके कुछ दिनों बाद, यानी कंटिन्यू अप्रैल से जुलाई तक में इन 4 महीनों के अंदर एक बार उस किसान के खाते में योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए की राशि डीबीटी की आती है। इसी प्रकार से अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच में की जाती है।

0: छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को जिलेवार किसान सम्मान निधि का भुगतान किया जा रहा है। अभी हाल ही में 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त जारी की गई है। किसान सम्मान निधि अन्नदाताओं को छोटे खर्चों और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। किसान सम्मान निधि के लिए पात्र कृषकों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं श्री पंचराम दास।
1: हमारे बिलासपुर जिले में 1,50,356 किसानों को पंजीकृत हैं, जिसमें से भी 1,02,260 किसानों को मतलब हमारी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिल रही है। इसके पात्र वाले किसान ये हैं जो मतलब 2019 के पहले जिनका मतलब भूस्वामी है, उन किसानों को इसके लिए पात्र माना गया है। और 2019 के बाद जिनके नाम खाते में मतलब भूस्वामी बने हैं, जैसे खरीदी के माध्यम से या और किसी माध्यम से भूस्वामी बने हैं, वो अभी इसी आपातता की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा, जैसे मान लीजिए इनमें अगर वो किसान जो इनकम टैक्स पे ही हैं, कर्मचारी हैं, 10,000 रुपए तक उनको पेंशन प्राप्त हो रहा है, और जो संवैधानिक पदों में है, ट्रस्ट की भूमि है, सामुदायिक भूमि है, कुल जैसे ना स्कूल या कोई मंदिर मस्जिद आदि के संबंध में होती भूमि है, ये किसान है, मतलब इस प्रकार के मतलब 17-18 कैटेगरी है जो अपात्रता की श्रेणी में है। और उन पात्र किसानों को पंजीयन होने के बाद, पंजीयन AKYC लैंड सीजिंग आधार सीजिंग आदि सब होने के बाद 4 महीने में एक किस्त प्राप्त होती है 2,000 रुपए का। इस प्रकार से साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपए उन किसानों को प्रदान किया जाता है जो पात्र किसानों को PAKYC लैंड सीजिंग आधार सीजिंग आदि है। कुल मिलाकर 6,000 रुपए साल में उन किसानों को प्राप्त होती है और सीधे भारत सरकार द्वारा उनके खाते में DBT के माध्यम से डाली जाती है। स्वामी एक किसान है कैटेगरी जैसे मतलब पात्र जो किसान है, उन किसानों का ये फसलों से मतलब नहीं है, किसान है उनके नाम में जमीन है, जो भी फसल लगाता हो खेती की जमीन होना चाहिए, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, या खेती की जमीन है, खेती की जमीन है तो खेती करेगा, ये किसान इसमें पात्र होंगे, वो स्वामी होना जरूरी है। किसान के खाते में अगर पंजीयन करवा लिया है, पंजीयन के बाद पूरे फॉर्मेलिटीज करवा लिए हैं वो, जैसे आधार सीडिंग हो गया, लैंड सीडिंग हो गया, EKYC हो गया, अगर यदि कभी कभी क्या होता है किसान किस्त आते आते उन्हें रुक जाता है बीच में, किसानों को मिलता था और वो बीच में रुक गया, तो पहले क्या था मतलब आधार सीडिंग, लैंड सीडिंग और ये बैंक अकाउंट आधार पे

पेमेंट होता है, पहले दिन का उनसे आधार बेस पेमेंट नहीं हो रहा था, उस समय उन किसानों को डायरेक्ट मिल रहा था, लेकिन अब आज मतलब भारत सरकार द्वारा ये कर दिया गया है, राशन कार्ड और आधार के आधार पर मतलब उनको राशि भुगतान किया जाए, जिनका नहीं है तो उनको रुक जाता है, जब वो क्लियर करा लेंगे तो उसके बाद उनको भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये भी है जो सस्पेक्टेड मतलब पहले शुरुआत में पति पत्नी दोनों को मिलता था, जैसे मतलब एक परिवार से, अब एक परिवार दोनों को मिलता था, लेकिन अब शासन ने मतलब कर दिया राशन कार्ड के आधार पर एक परिवार को एक ही मिलेगा, एक आदमी को, पति को या पत्नी को, और दोनों को मिल रहा था, दोनों में से अगर शासन मतलब चेक करवा सर्च करने के बाद ये हो गया है कि मतलब एक को ही मिलेगा, एक पात्र रहेंगे एक परिवार से एक आदमी को, पति पत्नी या बच्चे में से कोई भी हो, तो उनका रुक गया पैसा। अब जब तक समायोजन नहीं हो जाता है उनको, जैसे मान लीजिए किसी को 20 किस्त दोनों को मिल गया पति पत्नी को, अब 20 किस्त में 40 किस्त तक उनको मतलब उनको बंद हो जाएगा वो पीएम किसान किसान, वो समायोजन होगा 40 किस्त जब पूरा हो जाए 41 में किस्त किसी को भी पत्नी या पत्नी को जो भी जिसको रखेंगे उनमें से उनको 41 किस्त के बाद फिर शुरू हो जाएगा। इस कारण से जैसे IFSC कोड या बैंक का या किसी कारण से रुक जाता है, अगर क्लियर करा लेंगे तो उसकी पूरी राशि जो पहले उनका रुका हुआ है वो बाद में भारत सरकार पुनः भेजेगा उनको। इसको ये कर सकते हैं कि आधार, जैसे पहली बात तो ये है उनके पास आधार बेस्ड पेमेंट होता है तो आधार लेकर के वहाँ से च्वाइस सेंटर होते हैं, च्वाइस सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं, मतलब क्यों नहीं आ रहा मेरा पैसा, क्यों रुका हुआ है, कितने किस्त आए, कितना क्या स्थिति में है ना। और दूसरी बात ये कि अपना संबंधित अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं, विकास खंड स्तर में होते हैं, वहाँ जाकर चेक करा सकते हैं कि मतलब क्यों नहीं आ रहा है और क्या कमी है, जो फॉर्मेलिटी बताएंगे कि ये आपकी कमी की वजह से नहीं आ रहा तो फुलफिल करने के बाद वो भारत सरकार को चला जाता है ऑनलाइन। उसके बाद जब भी भारत सरकार मतलब उनको भौतिक सत्यापन करता है उसके बाद क्लियर होने के बाद जब राशि उनके खाते में डायरेक्ट डाली जाती है।

0: छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसानों का संबल भी है। खाद बीज से लेकर दिगर जरूरतों के लिए भी किसान सम्मान निधि कृषकों को सशक्त आधार प्रदान कर रही है। किसान खुश हैं इस सम्मान को पाकर, इसलिए तो वे बारंबार आभार व्यक्त कर रहे हैं सरकार का।
1: मैं गजानंद ध्रुव, ग्राम शंकरदहा, पोस्ट तहसील जिला धमतरी का निवासी हूँ। मुझे पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 का किस्त प्राप्त होता है, जिसको 3 किस्तों में दिया जाता है बैंक के माध्यम से। मुझे 23वां किस्त प्राप्त हो चुका है और 24वां किस्त आने का इंतजार है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

0: मान निधि भी कृषकों की समृद्धि की एक ऐसी ही योजना है।
1: जय जोहार संगवारी मल्ला, मैं गजेंद्र कुमार साहू जो कि 15-16 साल से किसानी कर रहा हूं और प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत मेरे को 23वां किस्त मिल चुका है।

लोकतंत्र में लोक कल्याणकारी सरकारें हमेशा ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नागरिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं। इनका भरपूर लाभ नागरिकों को मिलता है और उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आता है। किसान

0: किसान दिन रात अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करते हैं। वे मिट्टी के साथ मिट्टी होकर सबके अन्नदाता कहलाते हैं। अन्न उपजाने वाले किसान ही सच्चे धरती पुत्र हैं, क्योंकि वे अपनी धरती माँ को रोज संवारते हैं और देश को अनाज के भंडारों से भर देते हैं। सरकार ही नहीं, हर नागरिक भी किसानों के श्रम को प्रणाम करते हैं। यही वजह है कि किसान सम्मान निधि अब किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है।
1: मैं रामप्रसाद पटेल बोलत हूँ, मालीघोरी ब्लॉक डंडी लोहारा, जिला पारोदले। और मोला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के तहत भाई 6000 रुपए के आर्थिक सहायता मिलते, और ये राशि है मोला 2000 के रूप में 3 किस्त में सीधे बैंक में मिलते भैया, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक के 23 किस्त मोल मिल चुके हैं और 24वां किस्त के इंतजार है। सरकार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बढ़ावा दे खातिर, हमारे प्रोत्साहन खातिर।

0: एक दौर था जब कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अनाज का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और प्रबल इच्छा शक्ति से जन्म हुआ हरित क्रांति का। इससे हुआ ये कि देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। उन्नत कृषि की बदौलत कृषि उत्पादन बढ़ा और उसी अनुपात में कृषि लागत में भी इजाफा हुआ। धीरे धीरे खाद बीज और दूसरे खर्चे बढ़ते गए। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने किसानों को अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। किसान सम्मान निधि इसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण योजना है।
1: मेरा नाम विक्रम भदौरिया है, मैं जिला बस्तर में कृषि विकास अधिकारी के पद पे हूँ। इसमें हम लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताना था। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, ये केंद्र शासन द्वारा 2019 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये था, सभी पात्र किसान परिवार को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना है, जिससे वो कृषि आदान जैसे बीज, कीटनाशक, खाद इनकी खरीदी की जा सके उनके द्वारा, साथ ही उनके जो घरेलू जरूरतों को भी पूरा किया जाए। इस योजना के प्रावधानुसार हर पात्र किसान को प्रतिवर्ष हर 4 महीने में 2000 की समान किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष 6000 रुपए उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं।

करने का प्रावधान है। बस्तर जिले में अभी तक कुल 84,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ प्रदाय किया गया है और अभी तक 23 किस्तें इस योजना के अंतर्गत किसानों को, पात्र किसानों को प्रदाय की जा चुकी हैं। जिले में योजना प्रारंभ होने से लेकर अभी तक कुल 249.17 करोड़ का भुगतान सभी पात्र किसानों को उनके सीधे बैंक खातों में किया गया है। सभी जितने किसान बंधु हैं, ऐसे किसान बंधु जो पात्र परिवार हैं पीएम किसान सम्मान निधि में वो पंजीकृत है और अगर उन्हें किसी कारणवश 23वीं किस्त प्राप्त नहीं हुई है तो इसके लिए सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि अपने निकटतम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या जो ग्रामीण आपके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी होते हैं विकास खंड स्तर पे अथवा आप उप संचालक कृषि जगदलपुर में भी आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं जिससे आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस योजना में किसान परिवार को एक इकाई के रूप में माना गया है। किसान परिवार की जो परिभाषा है इसमें पति पत्नी और उसकी नाबालिग संतान को इस योजना के अंतर्गत एक किसान परिवार के रूप में चिन्हांकित किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के जीवन में खुशहाली का संचार कर रही है। प्रदेश के 26 लाख से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त हो रहा है। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

0: किसान सम्मान निधि, दरअसल किसानों का सम्मान भी है और किसानों का कल्याण भी। ये निधि किसानों के लिए एक बड़ी राहत का सबब है, जिससे उन्हें खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
1: नमस्कार सर, मैं बालोद जिला के पारराज के रवैया आ रहा हूँ, और जिन किसान सम्मान निधि के बात है, वो किसान सम्मान निधि हम जैसे गरीब जनता, हम जैसे छोटे किसान मन पर बहुत ज्यादा असरदार, बहुत ज्यादा फायदा वाले हरे, काबर की ये जो किसान सम्मान निधि यानी सरकार की एक योजना है कि किसान मन सम्मान दिए जाए 6,000 रुपया। मोला लगभग 4 साल होगी किसान सम्मान निधि के फायदा मिला थे। मोला जानकारी मिली थे पटवारी के माध्यम से, पटवारी है बताई कि किसान मल्ला सरकार के द्वारा एक पैसा मिले जाते हैं 6,000 रुपया, और उकर माध्यम से किसान मल्ला सम्मान करे जाते। तो मोला जैसे ही पटवारी के माध्यम से जानकारी मिली, तो मैं पटवारी कर आग्रह करे, निवेदन करे कि पटवारी महोदय आपे जिन है किसान सम्मान निधि के जिन फार्म होते ओला आप भर देते हो, आपको माध्यम से भर देते हो। किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपया जो पैसा है वो मोला लगातार मिला था, और किसान सम्मान निधि के पैसा जो 4 साल से मोला मिला था वो 6,000 रुपया मिलते, और 6,000 रुपया में लगभग 3 किस्त में आते, मुड़कन 2,000 रुपया करके 3 किस्त में आते। कभी कभी ऐसे परिस्थिति रहती कि घर, क्योंकि हम छोटे किसान हरन, बहुत ज्यादा खेत नहीं है, बहुत ज्यादा आय के स्रोत नहीं है, जिसके कारण से हम लोग बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते पैसा के, और ये जो 6,000 जो मिलते हैं वो 2,000 2,000 करके ऐसे ऐसे समय में मिलते जिनमें हम लोग बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते, तो हम लोग भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते। कभी कभी ऐसे जरूरत थे, हमारे परिवार है, हाँ लड़का है, बाल बच्चा है, तो उकर मंदर भी कभी जरूरत पड़ते, जैसे अभी ये स्कूल के समय है, स्कूल के समय में शुरुआती समय में बहुत ज्यादा खर्चा होते लड़का मतलब पढ़ाई कराए पर, और बहुत सारा जरूरत होते, राशन पानी की जरूरत होते, तो ऐसे समय में अगर किसान हमला अगर पैसा मिलते 2,000 रुपया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा के वो साबित होते, काबर की वो 2,000 रुपया जो है 2,000 रुपया के माध्यम से कभी राशन पानी हम खरीद लेते हैं, कभी ऐसे होते कि कभी लड़का मन के पढ़ाई लिखाई बढ़ जन कापी पुस्तक है, वो कापी पुस्तक

0: अलावा जिन लड़का मन के कपड़ा लगता है वह लेके काम आ जाते हैं। कुल मिला के किसान मन के सम्मान करे के जिन प्रयास है सरकार के, सरकार ला मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ।
1: किसान सम्मान निधि से कृषकों के जीवन में आर्थिक सुधार हुआ है, सुरक्षा की भावना बढ़ी है और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार है। इस तरह एक लोक कल्याणकारी सरकार की छत्रछाया में किसान भाई लगातार बढ़ रहे हैं उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी रायपुर से प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त 10:30 हो रहे हैं। पेशे खिदमत है कार्यक्रम नए तराने। श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने का आगाज राहत फतेह अली खान और नुसरत फतेह अली खान की दिलकश आवाजों के साथ, मनोज मुंतशिर की रचना, संगीत है तनिष्क बागची का और गीत लिया है हमने फिल्म बादशाहों से।

कार्यक्रम नए तराने का पहला गीत फिल्म बादशाहों से आपने सुना, नुसरत फतेह अली खान और राहत फतेह अली खान की आवाजों में। अगला गीत इंतजार कर रहा है आपके रेडियो सेट तक पहुंचने का, लिया गया है फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। आतिफ असलम की आवाज है, शब्दकार मनोज मुंतशिर, संगीतकार रोचक कोहली।

0: आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर की श्रृंखला में एक नई सुबह के साथ, नए संदेशों के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे, आपका स्वागत है। शहर के साथ ही संपूर्ण बिलासपुर जिले की सड़कों में हो रहे आवश्यक सुधार एवं विस्तार के परिणाम स्वरूप उपलब्ध उत्कृष्ट सड़कों में संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए सीमित वेग सुरक्षित जीवन को चरितार्थ करते हुए इस मूल मंत्र के अनुरूप चले। मित्रों, यूं तो सड़क दुर्घटनाओं के अनेकों कारण है, किंतु कुछ ऐसे विशेष महत्वपूर्ण कारण प्रतिदिन देखने में आ रहे हैं जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। इन्हीं कारणों में से एक कारण वाहनों का तेज रफ्तार है। क्योंकि वाहन तेज रफ्तार में होता है, विषम परिस्थिति आते ही क्षण मात्र में वाहन में चालकों का नियंत्रण नहीं हो पाता और दुर्घटना हो जाती है। अतः धीरे चलें, सुरक्षित चलें। ठीक इसी प्रकार गलत दिशा में वाहन चालन भी दुर्घटना का प्रमुख कारण है। वस्तुतः ऐसे वाहन जो नियमानुसार सही दिशा में चल रहे हैं, यदि एकाएक सामने से अर्थात गलत दिशा से कोई वाहन आ जाए तो सही दिशा में चल रहे वाहन चालक को इसका आभास नहीं हो पाता और आपस में भिड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप होती है गंभीर सड़क दुर्घटना। मित्रों, तमाम प्रकार के वाहनों से भरी सड़कों में सुरक्षित वाहन चालन के लिए पूरे तन मन एवं विवेक के साथ चालक को सड़क में मौजूद होना चाहिए। साथियों, नशा व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है। नशा किया व्यक्ति अपनी यात्रा सकुशल जरूर प्रारंभ करता है, किंतु इसकी यात्रा सकुशल संपन्न होगी इसमें 100% संदेह है। प्रतिदिन होने वाली तमाम सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण नशा ही है। अतः इस व्यसन से हमेशा बचकर चले, क्योंकि नशा कर वाहन चलाते पकड़े जाने पर माननीय न्यायालय के द्वारा 10,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। अतः नशा कर वाहन भूल कर न चलाए, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: सूचना सुनिए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट https://cgiti.admissions.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं, जो

अभ्यर्थी पूर्व में पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं, वे अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हुए निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यक होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

श्रोता इस वक्त उठा रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर से। अगला गीत लिया गया है फिल्म यारियां से, गायक गजेंद्र वर्मा, गीत और संगीत मिथुन का।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी 2 में। गीत के बोल और संगीत था मिथुन का। कार्यक्रम नए तराने का लुत्फ हमारे शो

सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त श्रोता आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम नए तराने का। कार्यक्रम का आखिरी नगमा लीजिए, सुनिए बागी फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज। कुमार का लिखा गीत है, मीत ब्रोज का संगीत।

मोनाली ठाकुर की गाया फिल्म बागी के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। 11 बजने को है, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य, जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।

0: निमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
1: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना। ये बहुत प्राचीन तरीका था
0: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं? कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की, और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर?
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
1: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए
1: जी। अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष

0: मेले की और कहां आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
1: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
0: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
1: जी।
0: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
1: जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
0: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
0: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
1: जी।
0: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
1: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था। इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
0: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरीगांव में जमा होते हैं तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे
1: जी। फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरीगांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
0: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
1: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जॉन बील मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
1: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।

0: आज वल्लरी बहुत उत्साहित है। क्यों? आइए जानते हैं।
1: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
2: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो।
1: भैया, खुश होने की बात तो है ही। पता है, पापा का ईमेल आया है।
2: अच्छा, क्या लिखा है?
1: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है। कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
3: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहां जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
0: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
2: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
3: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई

0: महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
1: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
0: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
1: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
2: नमस्ते पापा।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटा आप लोग?
2: ठीक है।
1: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
2: बड़ा मजा आया।
1: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो जो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
0: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण, जिधर देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चावतान जी घर पर हैं क्या?
3: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
2: नमस्ते अंकल।
3: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी, है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
3: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
3: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा वर्मा।
1: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
4: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था, बड़ी सुंदर जगह है।
3: थैंक यू।
5: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
3: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
3: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
3: अच्छा तो पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
3: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखखेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
4: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया ही हूँ, सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
3: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
5: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल, ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
3: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ, और ये पकौड़े ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े, और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी, और ये जो है ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
4: ये तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
3: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
4: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
1: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
5: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
4: तो हम भी चले?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ।

0: चलो चलो चलो।
1: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
2: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
1: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
2: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
1: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
3: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
3: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
3: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
4: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
3: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
4: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
5: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
6: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड, इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड, सो वी विल सिंग द हैप्पी सॉन्ग अगेन बट विद अ डिफरेंस।

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan, sung by Neha and Children, recorded by Butty Langlingdo, produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुम लता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
2: नमस्कार.
4: उमंग उमंग उमंग उमंग.
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT. आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर. आइए श्रोताओं.

0: रुख करते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की ओर।
1: वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: आती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
3: बेचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
4: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
4: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
6: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
5: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
4: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
5: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
7: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुने चंदन दास की गायी गजल। कलाम है निदा फाजली का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

अभी रिले किए जा रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:55 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कल दुर्ग में रैली निकाली और मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों के 1,64,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल 22 जुलाई से शुरू होगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के 11 नगरीय निकायों में पिछले लगभग 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित सक्षम अधिकारी कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर उस पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित करें। दुर्ग में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कल रात राज्य के शिक्षा मंत्री के निवास के पास धरना दिया। इससे पहले इन शिक्षकों ने रैली भी निकाली। संविलियन की मांग कर रहे ये शिक्षक पिछले करीब 20 दिनों से हड़ताल पर हैं। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और आकाशीय

बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी झारखंड और उससे लगे बिहार के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बेमेतरा जिले के ग्राम निनवा के पटवारी हल्का क्रमांक 40 की पटवारी अंबा उपाध्याय को राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमित फेरबदल के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग एनआई और सिग्नलिंग कार्य के कारण 22 से 27 जुलाई तक रायपुर बिलासपुर और हावड़ा रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। और गौरेला में जिला रोजगार केंद्र द्वारा कल 22 जुलाई को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर टिकर कला में सुबह 10 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कल दुर्ग में रैली निकाली। और मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक उत्तर छत्तीसगढ़ के अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले किए गए। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।
1: जार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे

होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विवरण की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी

0: न्यायालय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में एसएस प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के नाम।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
4: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल। फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: 20 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, और आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा दें। वैसे जो हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर सक्रिय हैं, उन्होंने ये इबारत पढ़ ली और टिप्पणियां भी लगातार साझा कर रहे हैं। इबारत यूं है कि बचपन में जब पापा जल्दी आते तो एक गुड़िया साथ लाते थे, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई हो। फिर दुनिया बड़ी हुई, समय और मौसम बदला, साथ मिला सजना का, नसीब खुशियों से भर गया। पिया का इंतजार करना भी सीख लिया मन ने, कभी घटा बनकर यादें बरसी, कभी गुल और बुलबुल की तरह मोहब्बत ने गीत सुनाए। दिल ने किया सवाल, छोड़कर प्यार का दामन भला कहां जाए, तो एहसास आज भी साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया इन्हें खूबसूरत लम्हों से आबाद रहती है। होठ गुनगुनाते हैं, जाने क्यों लोग करते हैं मोहब्बत, ओ मेरी शाहे खुबा, और भी बहुत सारे गाने। और बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और शब्द तो बहुत जल्द पकड़ लिया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज तो आपने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। भाई, इसे लीक करना नहीं कहेंगे, इसे तो हम ये कहेंगे कि आप की त्वरित बुद्धि ने बहुत जल्द पकड़ लिया कि आज के इस इबारत में कौन से शब्द हैं और कौन से गाने होंगे। तो जरा ये देखिए, सुनिए और बूझिए कि ये गाना भी आपने चुना था या नहीं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त। इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात हो तो जरा बताइएगा हमें। जरा गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम बूझिए।

घटा, सावन, सजना, कौन कौन से गाने हैं इन शब्दों पर याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरूह सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियां आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे जरूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक खास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी है। और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने हृदय रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी

की चली है। आज उनकी याद का दिन है। विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम पूछना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना, तो हमें याद आया काली घटा छाई प्रेम रुत आई। और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गाना हमें याद आया है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है इस बात के लिए, जब हम अब हम लाइन से वो टिप्पणियां पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे आग्रह ये है कि और भी जो इसमें शब्द हैं उन शब्दों से जुड़े हुए गाने भी आप लिखें और उन गानों से जुड़े हुए भी टिप्पणियां आप साझा करें। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा बचपन तो छोटे से ग्रामीण परिवेश में ही गुजरा है, जहां कभी कभार रेडियो सीमित समय के लिए सुनने को मिलता था। मनोरंजन के नाम पर भजन मंडलियों और गीत, सावन के झूले, बहनों का गरबा और नदी में नहाने जैसे कार्यों के करते पढ़ाई के लिए कब हरदा पहुंच गए कुछ याद ही नहीं। हाँ, याद है पिताजी का झूले पर बैठकर अक्सर गुनगुनाया जाने वाला गीत, रुमझुम बरसे बादरवा, रुनझुन बरसे बादरवा, मस्त घटाए छाए, और पिया घर आजा, फिल्म रतन जोराबाई अंबाले वाली की आवाज में।

आज के प्रोग्राम की सूची में ये गीत निश्चित ही सम्मिलित होगा, ऐसा अनुमान है। भाई अनुमान हो सकता है, कई बार सच होता है, कई बार गलत भी होता है, तो आप इंतजार कीजिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। हाँ, लेकिन ये जो झूले वाली बात याद आई है, तो जरा हमारे बाकी श्रोता भी बताएं कि क्या आप भी झूले पर बैठकर पींगे मारे हैं। वो झूले वाली बात याद कीजिए, सावन वाली बातें याद कीजिए। गानों के साथ तो हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं मन के उड़न खटोले से। तो आप जरा याद कीजिए वो गाने और साझा कीजिए झूले वाली बात, सावन वाली बात। अब एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में न जाने कितने मूल्यवान उपहार बिखरे पड़े हैं, मगर पापा की लाई हुई वो प्लास्टिक की गुड़िया से ज्यादा अच्छा और कोई उपहार है। गुड़िया की शादी, गुड्डे से और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती, अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी गुड़िया के लिए लड़ाई करना, तब बीच बचाव में मम्मी को आना पड़ता। क्या बात है भाई। वे कहती कि शादी हुई है तो गुड़िया अब गुड्डे की हुई ना, फिर न जाने कब बचपन बीत गया और फिर मिला एक साथी जिसके साथ चलते जीवन की सच्चाई से सामना हुआ। यादें भी न जाने कितनी अजीब होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक किसी गीत के सहारे, किसी पुराने मौसम के साथ दिल में उतर आती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अब हमारा साथी है, हमारा हम सफर है। तो अपने हम सफर से जुड़ी हुई बात भी बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी साझा कीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ दिन में कितनी बार तकरार होती है और कितनी बार प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये भी साझा कीजिए। भाई ये तो प्रोग्राम ही ऐसा है कि एक परिवार की तरह हम एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं। फिलहाल अब जो वो गाना आ रहा है जिसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की है और बहुत सारे श्रोताओं ने इससे जुड़ी हुई याद साझा की है, टिप्पणी साझा की है।

गुड़िया के अलावा आपके पापा कौन सा तोहफा लाया करते थे शाम को जब घर लौटते थे तो? कभी जब आपके पापा खाली हाथ आते थे तो कैसा लगता था, जरा वो भी बताइएगा। क्या गुड़िया के अलावा कभी टॉफी चॉकलेट भी लाए?

तकदीर फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्की और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूं, लेकिन मेरी धर्म पत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो जरा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है, जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए। और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियां गाना गाती थी, पिया मेहंदी मगाए द मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्म दिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियां लिख भेजी हैं। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ओ मेरे शाहे खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीली गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है।

जो भावनाओं से जुड़ी हुई पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे। और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से, और मांग पर भुनी मूंगफलियां दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है, जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं और अब मोबाइल है। अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे। बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया, और आज बेटे नाती पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आँखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था, याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी, गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

महबूब की मेहंदी, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं भाई? आप अपने अनुभव भी तो बताइए कि आपने अनुभव किया ऐसा कुछ कि आपने कभी ये गुनगुनाया हो गाना किसी और के लिए, या किसी ने आपके लिए ये गाना गुनगुनाया हो। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और लीना चंदावरकर। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि धन्यवाद, आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था। किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि कौन सा गाना पसंद है, तो ये गाना भी आपकी पसंद में शामिल था। और बहुत सारे गानों का जिक्र किया है हमारे श्रोताओं ने, और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आनंद बख्शी जैसा गीतकार कोई हो नहीं सकता, उनके गीतों में जो सहजता है। तमाम श्रोताओं की बात इन वाक्यों में मैं आप तक पहुंचा रही हूं। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि आनंद बख्शी साहब का एकदम सदाबहार, दिल को सुकून देने वाला ये गाना था। अब हमने जो झूले की बात पूछी थी, हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि कुछ पारिवारिक परंपरा होती थी, बच्चों के लिए मोटे कपड़ों का झूला, छत की कड़ी से

बांधकर उसमें छोटे बच्चों को सुलाते थे। लकड़ी का पालना वर्जित था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दो बेटियां हैं, दोनों का विवाह हो चुका है। मैंने करीब 10 वर्ष तक उन्हें चॉकलेट नहीं खाने दिया और इस बात को मेरी बड़ी बिटिया ने एक वाकया बताया कि उसकी एक सहेली के दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जो हमने पूछा था कि झूले पर कौन सा लोकगीत गुनगुनाते थे, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मिर्जापुर कैल हो, गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, सोने की थाली में जेवना परोसल, और दो तीन लाइन और लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की वो प्यारी यादें, पापा का प्यार, धीरे धीरे जवानी के दहलीज में बढ़ते कदम, हम सफर का साथ, खट्टे मीठे अनुभव, सब कुछ जीना सिखा दिया। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक पिता के द्वारा लाई गई गुड़िया सचमुच हर बिटिया के लिए एक अमूल्य उपहार होता है। ये वात्सल्य रस की प्रतीकात्मक और कोमल अभिव्यक्ति है जिसमें पिता का निश्चल स्नेह, हृदय से जुड़ी भावनाएं रहती है। यहाँ गुड़िया का भौतिक अस्तित्व ममता की मूर्त की भावना को दर्शाता है। सचमुच एक गाने ने कैसे आप सबको द्रवीभूत कर दिया है। और कौन ऐसा शख्स है जो ये गाना जो हमने सुनवाया था, पापा जल्दी आ जाना गुड़ियों के बाजार से, गुड़िया चाहे ना ले ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, सचमुच एक मर्म है इस गाने में। और अभी तो हमने महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना सुनवाया, इससे जुड़ी हुई कोई खास बात आपके जहन में है तो वो भी बताते चलिए। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है गुल और बुलबुल वाला गाना कब आएगा, ये आ गया, लेकिन आपको पहेली का जवाब देना है कि कौन है इसमें हीरो, कौन है हीरोइन। त्वरित जवाब दीजिए क्योंकि आपको पता होगा शायद हीरो हीरोइन का नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं आप।

क्या ये गाना सुनते हुए आपको कोई कहानी भी याद आती है? कहानी की शक्ल में ये गाना लगता है ना।

शशि कपूर और नंदा इस फिल्म में हीरो हीरोइन थे, ये हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया, त्वरित जवाब आया और लंबी तादाद में अब तक जवाब आ रहा है। हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। शशि कपूर और नंदा, एक श्रोता ने लिखा है, बहुत ही मासूमियत भरा सुपरस्टार हिट गीत है मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ में। और एक श्रोता ने लिखा है कि अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में शशि कपूर का और नंदा का। कश्मीर की वादियों में फिल्माया गया ये गाना सुनने में खूबसूरत है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत था। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि जहां तक मुझे याद है हमारे नाना जी ने कोई कहानी नहीं सुनाई, नानी और दादी जरूर सुनाती थी, देश के वीर जवानों की कहानी सुनाया करती थी। कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि अपने क्रांतिकारियों के बारे में कहानी सुनाना जैसे हम भूल ही गए हैं, बच्चों को जरूर सुनाइए ऐसी कहानियां। कहानियां सुनने से एक तो उनकी कल्पना शक्ति में विस्तार होता है, वरना तो वो मोबाइल में जो कहानियां देख लेते हैं उसमें उनकी सोचने की क्षमता कमजोर होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव की सच्ची घटना है, दो लोग गुल और बुलबुल की तरह प्यार करते थे, जब उन्हें घर वालों ने एक न होने दिया तो वो दोनों साथ में जान दे दिए। उफ, ये तो दर्दनाक बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि सच में ये गीत कहानी जैसा लगता है, जैसे कोई अपना पराया सा साथी कुछ बता रहा हो और हम उनसे हर बात बड़े ही भोलेपन से पूछ रहे हो। ये आनंद बख्शी की गीतकारी की कमाल है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम ऐप पर सुन रहे हैं गाने तो आधे मिनट देर से पहुंचते हैं, लेकिन हम जवाब त्वरित देते हैं। आ गया आपका जवाब भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मपत्नी के साथ अगर नोकझोंक ना हो तो जीवन में मजा ही ना आए, मैं तो जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक छेड़ देता हूँ तो वो लेक्चर शुरू कर देती है और मन ही मन में हंसकर खुश होता रहता हूँ। भाई ये तो बड़ी शरारत है, अगर आपकी श्रीमती जी सुन रही हूँ तो एक तरह से अच्छी बात है, अगर उन्हें

गुस्सा आता हो तो गुस्सा उनका ठंडा भी हो जाता होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि गौरवशाली बचपन के गुड्डे गुड़िये की गाथा गान कर जवानी के दहलीज के दहकते दहन को दर्शाती है आज की ये इबारत। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस जमाने में गाने बनाने वालों ने बेहतरीन गाने बना दिए और गीतकार आनंद बख्शी के लिए इन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब बहुत रोते थे तो हम दोनों पति पत्नी उसको चादर पर सुलाकर उसके दोनों कोने पकड़ लेते थे और उसे झूला झुलाकर सुलाया करते थे। भाई झूले की बात बहुत हो गई है और बचपन के तोहफों की बात हो गई, पापा के घर आने की बात हो गई है, अब जरा ये बात हो जाए कि प्यार मोहब्बत जब आपने किसी से किया और आपकी पत्नी या आपके पति ने क्या बातें कही, ये गाना सुनिए। और कभी आपने भी इस तरह की बात कही एक दूसरे से, क्योंकि जिंदगी में प्यार बहुत

प्यार का इजहार बहुत जरूरी है, तो क्या आप अपनी पत्नी से या अपने पति से इजहार करते हैं प्यार का? उम्र के किसी भी पड़ाव में प्यार का इजहार किया जा सकता है। फिल्म का नाम जरा बताइएगा।

फिल्म थी वो कौन थी? सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, ये हमारा सवाल था। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मनोज कुमार और हेलेन अभिनेत्री, और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि कमाल है ये गाना, हमने भी सोचा था, मेरी पसंद का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक है, नाना नानी दादा दादी, तो इस तरह दुनिया में नहीं रहे मगर

हाँ उनकी कहानियां जरूर याद आती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 38 साल हो गए ये कहते और दोहराते हुए, अब तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं पापा डिजिटल युग में नया गीत अपनाइए। उनको समझाइए कि हम अपने युग का गीत गा रहे हैं, आप अपने युग का गीत गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाइए जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी मेरे पास ही बैठी रेडियो पर विविध भारती सुन रही है और आपकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही है। क्या बात है भाई, हमारा कहना और बोलना सफल हो जाता है जब हमारी बात से कोई मुस्कुराए और हमारे बजाए गए गानों से किसी बात से उदास हो या प्रेरणा ले, तो हमारा प्रोग्राम करना सफल हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत ऐसी होनी चाहिए कि पिरोए गए शब्दों का आकलन सहजता से हो जाए, उस पर लिखे गए गाने खूबसूरत हैं, आज के सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारा ये दूसरा गाना पसंद का, किसी ने लिखा है चौथा गाना, किसी ने लिखा है तीसरा गाना। क्या बात है भाई, हमें भी अच्छा लग रहा है जानकर कि हमारी और आपकी पसंद मिल रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा, शुद्ध और साफ उच्चारण आवाज में सुनने को मिलेगी आपकी बातें। क्या बात है भाई, आगे लिखा है कि गुड़िया बुलबुल गुल दुनिया घटा वगैरह शब्द पर गाने होंगे और बहुत सारे इमोजी इन्होंने लगाए हैं, फूल पत्ती दिल और हाथ। तो आप बताइए कि क्या आप जब अपनी बात कहते हैं आज के जमाने में अपनों से, तो क्या इमोजी से काम चलाते हैं या अपने दिल की बात शब्दों से कहते हैं। अब सुनिए ये गाना आ रहा है कुछ श्रोताओं के अनुरोध पर, बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का भी जिक्र किया है, हमारी आज की इबारत में ये शब्द है। तो सुनिए ये गाना और बताइए जरा गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म रतन, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है, जोराबाई अंबाले वाली।

रतन फिल्म का गाना जोराबाई अंबाले वाले की आवाज में, रचना थी डीएन मधुक की, संगीतकार नौशादा। और ये हमारा सवाल था, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही जवाब, कुछ श्रोताओं ने गलत भी लिखा है, लेकिन इतने जवाब नहीं आए जितने कि अन्य गानों के लिए आए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो प्यार के इजहार का सबका अलग सा अंदाज है, पर होता बड़ा ही प्यारा है, रूठना मनाना, कभी कभी बात न करना। हमारे साथी तो रूठ कर खाना नहीं खाते थे, बड़ा ही मुश्किल होता था उन्हें मनाना। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या पूछ लिया, जिंदगी अंतिम पड़ाव में पति जी से बड़ा प्यार और इजहार सुनने को मिला, लगता है सारी कमी पूरी हो गई। जब प्यार से कहते हैं तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने सोचा तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, अभी मैं 74 वर्ष की हूं। क्या बात है भाई, आपने तो हमारे जज्बात को छू लिया। और अच्छा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे से आप इजहार करते हैं और ये बात आपने यहां पर लिखी। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज बहुत सारे गाने हमारे और आपके मिले, हमें भी अच्छा लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि शब्दों के साथ साथ थोड़ी सी इमोजी भी हम भेज दिया करते हैं, बस अपने जज्बात का इजहार जरूरी है। अब जरा घड़ी की ओर देखिए, घड़ी की सुइयां तो आगे निकल गई हैं। चलिए अब कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओ नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी फूल पर। फूल प्रकृति की सबसे सुंदर और मनमोहक रचनाओं में से एक है। रंग बिरंगे फूल धरती की सुंदरता को बढ़ाते हैं और अपनी सुगंधित स्पर्श से वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। फूलों को देखकर मन में प्रसन्नता, शांति और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए फूलों को प्रकृति का मुस्कुराता हुआ उपहार भी कहा जाता है। फूलों का जीवन भले ही छोटा होता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। वे हमें सिखाते हैं कि कम समय में भी अपने गुणों और सुंदरता से संसार को खुशियां दी जा सकती है। फूल बिना किसी भेदभाव के सभी को अपनी खुशबू और सुंदरता प्रदान करते हैं।

हमारे जीवन में फूलों का विशेष स्थान है। पूजा पाठ, त्योहारों, विवाह समारोहों और शुभ अवसरों पर फूल का उपयोग किया जाता है। हर फूल अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, जो पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। फूल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फूलों से मधुमक्खियां और तितलियां आकर्षित होती है, जो परागण की प्रक्रिया में सहायता करती है। इससे पेड़ पौधों का जीवन चक्र चलता रहता है और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। फूलों से हमें जीवन में कई तरह की सीख मिलती है। जिस प्रकार फूल कांटों के बीच रहकर भी अपनी खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी कठिन परिस्थितियों में अच्छाई और प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। फूल हमें विनम्रता, मुस्कान और दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने की प्रेरणा देते हैं।

सूखे हुए फूल केवल मुरझाई हुई पंखुड़ियां नहीं होते, वे अपने भीतर बीते हुए पलों की अनगिनत कहानियां संजोए रखते हैं। किसी किताब के पन्नों में दबा हुआ फूल किसी पुराने उपहार की तरह हमें उन खूबसूरत यादों की दुनिया में ले जाता है, जहां भावनाएं हमेशा ताजा रहती है। जब कोई हमें प्रेम, स्नेह या सम्मान के रूप में फूल देता है, तो वह केवल फूल नहीं, बल्कि अपने मन का एक कोमल भाव हमारे पास छोड़ जाता है। समय के साथ फूल की खुशबू भले ही कम हो जाए, उसका रंग फीका पड़ जाए, लेकिन उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। कभी किसी पहली मुलाकात की निशानी, कभी किसी खास अवसर की स्मृति, तो कभी किसी अपने के स्नेह का प्रतीक बनकर सूखे हुए फूल जीवन के अनमोल पलों को संभाल कर रखते हैं और खत में भी भेज दिए जाते हैं।

0: आज की त्रिवेणी यहीं पर संपन्न होती है। सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: కనకలతా. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया. उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया. संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित. सिक्किम के नामथे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी. प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी. और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं.
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया. और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है. और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें.
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं.
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे. उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा.
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया. बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया.
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई.
0: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है.
3: हर एक अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो.
0: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया.
4: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है. इस 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा.
0: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है. दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई. पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए. पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया.

0: के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटवन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा

0: चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 175 करोड़ रुपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने का

लोफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आज के सदाबहार नगमे प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी को। सुनिए अगला गीत उन्हीं का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे।

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना,

0: तुम लोग क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे।
1: 21 जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: कटी पतंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत था। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों

0: का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है मंदाकिनी जी, तो आपको भी मंदाकिनी जी मेरा प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं।
2: सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी प्यार भरा नमस्कार, हमारे सभी सखियों और हमारे सखाओं को और साथ में मंजरी आपको भी
1: जी।
2: और मिलना जुलना तो होता ही रहता है, देखिए जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही मुलाकातों में भी कभी कभी बदलाव आता है, कभी हम मिल पाते हैं कभी नहीं भी मिल पाते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो दिल से मिलते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे मौसम बदलता है तो हम लोग उसमें खुश होते हैं, तो मिलकर भी बहुत खुश होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मंदाकिनी जी। तो देखिए
2: कैसे अभी मौसम बदल रहा है ना, जगह जगह बरसात होना शुरू हो गई है और गहरी बरसात भी हो रही है। जब हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं सुनते हैं तो पता चल रहा है कि बहुत सारी जगह बरसात हुई है, तो ये जो मौसम बदलता है ठीक वैसे ही प्यार का मौसम भी होता है।
1: बिल्कुल मौसम होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक विषय अपने विषय बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: अरे बताओ।
1: तो आज हल्की फुल्की बातें में हम बात करने वाले उफ घर में सामानों की उठा धराई, ये इसमें कितने बिजी हो जाती थी हमारी सभी महिलाएं, तो सखियां भाभियां मौसी चाची वगैरह, तो इस पर बात करेंगे। अपने अनुभव भी लिखकर भेजिए। और सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर स्वाति लोढ़ा लाइफ लेमोनेड और ULTA की स्कूल की संस्थापक है, इनके बारे में हम बातें करेंगे।
2: ठीक है।
1: और मुहावरों की दुनिया में खिसानी बिल्ली खम्बा नोचे,
2: इस पर हमारी बिल्ली खम्बा नोचे। अच्छा
1: अच्छा, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी लोग अपने अपने विचार लिखकर भेजिए।
2: लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ कि हमारे जो सखी और सखा हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, इसका आपको वर्णन नहीं करना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। मुहावरे का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, आपको बताना है ऐसा कोई प्रसंग जो आपकी जिंदगी में घटा हो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप खिसियानी बिल्ली बनकर खंबा नोच रही होंगे, है ना, या आपके सामने खड़ा कोई इंसान है आपके जीवन में कोई भी ऐसा हो जब आपको लगता है देखा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे।
1: बिल्कुल,
2: तो वो प्रसंग आप लिखिए तो ज्यादा मजेदार ये जो है सेगमेंट बन सकता है।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे हमारे साथी सोचेंगे और लिखेंगे। और यादों से सुकून लेकिन बदलाव को समझे, इस पर भी अपनी अपनी यादें आप साझा कीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हम लोग क्या चर्चा करते हैं ये तो आपको सुनकर पता चलेगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक बढ़िया से गीत सुन लेते हैं जो मौसम से ही मिलता जुलता गीत है।
2: चलिए सुनाइए।

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरह से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं, और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर, अगर मोहल्ला की बात करें, गांव हैं गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
0: बिल्कुल।

0: और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था। या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख, ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए कि वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना आदि, बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ये कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना। जैसे ऋतुएं
0: जी
1: बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई सुविधाएं आ गई हैं। रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी की यादों को सजो कर रखे, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहाँ हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिएं और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी सी
1: बिल्कुल
0: बात
1: वही
0: लिखी है
1: वो ना, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है और
0: जी।
1: उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना।
0: बिल्कुल
1: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी जी, और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे। तो लेते हैं एक अंतराल।
1: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में। तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे, और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने जोड़ दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता। यादों को दिल में संजो कर रखें, लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिए और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती है कि यादों से सुकून कहाँ पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं। यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बारह खड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है, जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है। जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं। ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा,
0: जी,
1: है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है। कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए, दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता। फिर उसको जब छोड़ते हैं, नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: गीत बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया अभी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं है।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, PhD शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक, निदेशक और JNU में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रही हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने, स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी, और कविता से

0: गद्य में, गद्य में जो है कदम भी रखा और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में, सूर्यदत्त राष्ट्रीय पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी,
0: जी
1: आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती है, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि वे सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी। बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से तह की हुई साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की चश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी, और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था। जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोज लेती और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखे और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल। और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना।

0: घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़ चिप्स कचरी जाने क्या क्या बढ़िया है इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल साल उसकी उठाधाई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और सब काम एक अभियान जैसे होते थे, और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा
0: बिल्कुल
1: कोई भी नहीं। सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे, तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम
0: सही
1: करते हैं।
0: बात, सही
1: तो
0: बात।
1: घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था, और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी, और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे, और खटिया, पलंग, तक्के सिराने पर भी वो रखे होते थे।
0: आराम से
1: हाँ
0: रहकर मिल जाते थे आराम से, है
1: हाँ
0: ना
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था, या
0: जी।
1: दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता
0: बिल्कुल,
1: था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे, और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूंथ दी हो,
1: बिल्कुल
0: एकदम
1: सही कह रही हो मंजरी।
0: जी
1: लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां
0: जी
1: बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहाँ, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहाँ है सामान, कहाँ है मेरे मोजे, कहाँ है मेरा
0: जी
1: मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय
0: बिल्कुल
1: में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल। और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माँओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है, तो खाने में भी समय देना है उन्हें, तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई
1: हाँ
0: धराई का हो
1: जो
0: गया है
1: बिल्कुल नौकरी पेशा जो महिला है ना,
0: जी।
1: उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी, जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर के
0: बिल्कुल
1: हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा
0: जी,
1: पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ
0: यानी
1: है
0: कहने का
1: ना।
0: मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती
1: लगी
0: थी, और
1: रहती
0: कोई
1: थी
0: शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए, और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए
1: हाँ तो
0: जरूर।
1: मंजरी, इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है, और
0: बिल्कुल
1: घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल। और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जोठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है,
1: हाँ।
0: मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहां रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए, और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यही रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम। अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी।

0: कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं, गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा, अभी यहाँ से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: ये भी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं, और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने के बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वही बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
1: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती और शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इस स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहाँ व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो। ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिख रहा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपना गुस्सा या खींच किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खींच बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए, ऐसी ही कहावत गुजराती कि लाज माने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है। जी
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावरे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो कि बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने कुपचिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छींका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं। गी। गी।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: Thank you.

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया।
1: जुबां पे दर्द भरी
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर, प्याला तेरे नाम का।
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी
1: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते, अरे ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन

0: सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे
1: जी
0: रेडियो पर,
1: जी
0: वो उस दिन पूरा हुआ।
1: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
0: यस। और एक और कनेक्शन है कि
1: अच्छा
0: उनकी जो जीवनी है
1: जी
0: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया,
1: जी
0: वो भी
1: ये मेरा
0: कनेक्शन बन गया,
1: सौभाग्य है,
0: तीसरा
1: बिल्कुल।
0: कनेक्शन बन गया।
1: जी जी बिल्कुल। तो

0: और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया।
1: जी
0: तो 1947 में वो इंडिया आए।
1: सरहद के इस पार आ गए।
0: हाँ, जो उनके 17 साल थे वो, उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
1: जी
0: मेरे देश में।
1: बिल्कुल
0: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
1: क्या प्यारी
0: अगर
1: बात है।
0: मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है।
1: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है। उसमें
0: हाँ
1: उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
0: हाँ पवन चले पुरवाई,
1: हाँ
0: क्योंकि जिसे कि हमारे खुले गांव में
1: हाँ
0: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन,
1: बिल्कुल
0: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत कर

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबड़ में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा

0: उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
1: पिंडी की मिट्टी। मेरा
0: तो
1: सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है। एक किताब
0: हाँ
1: है बख्शी साहब की कविताओं की, जिसमें वो
0: हाँ मैं
1: संग्रहित है।
0: जादू हूँ चल जाऊंगा
1: जी,
0: उसमें लिखी, मेंशन की हुई है। हाँ
1: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटी है। जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
0: हाँ क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। हाँ
1: और ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
0: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
1: पंजाब प्रांत।
0: पूरा प्रांत अनडिवाइडेड पंजाब का जो जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3 4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी, तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस कि
1: सब
0: इधर ये
1: पहचानते थे।
0: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये,
1: क्या कहलाती है, मोहियाल
0: मोहयाल मोहयाल। हाँ पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहयाल्स।
1: जी।
0: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में हैं, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन।
1: जी जी
0: हाँ
1: जी
0: वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजरों का काम होता था।
1: खराब माना जाता था।
0: हाँ तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2 3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो
1: वाह।
0: जिस दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ये ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको।
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12 13 साल की उम्र से ही नज़्में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे, क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी।
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा बंबई किधर है?
1: समंदर के
0: इतने
1: पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं,
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह समझ
0: हाँ
1: में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी आर्मी एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू वर द नेवल कैडेट। और उनकी भर्ती हुई दो शिफ्ट थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिफ्ट में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ 1942, तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बंबई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट,
1: ये जो बगावत थी नेवी की,
0: बगावत।
1: ये
0: हाँ
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत,
1: इतिहास में
0: बल्कि
1: दर्ज है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे,
1: जी
0: क्योंकि देखिए आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, वो कू बन जाता है, लेकिन भी अ
1: हाँ
0: कू,
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज व्हेन दे रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा।
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था। और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे
0: तो
1: अरे अरे
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ
0: ज्वाइन करना, वो जो देश

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वही हुआ था ना,
0: बिल्कुल।
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना। भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो

0: देश के लिए गोल था, वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ। वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी।
0: बहुत कम थी।
1: जी
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच्चे पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं।
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो
1: बिल्कुल।
0: मैं तुम्हें रेस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैड टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते तो पूरी जिंदगी बदल जाती।
0: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
1: जी
0: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है।
1: जी
0: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
1: जी
0: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
1: जी
0: मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
1: और छोड़ दिया, सबसे
0: छोड़ दिया।
1: इंपॉर्टेंट
0: हाँ,
1: बात।
0: यू आर रेस्टिकेटेड विद डिसऑनर।
1: अब जब
0: फॉर
1: घर आए तो क्या हाल हुआ?
0: घर आए तो फिर नेचुरली एकदम, फिर तो इमीजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का। तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया, गुरुकुल, जम्मू के
1: जी
0: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे, छोटा मोटा काम करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी। तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो। और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का अब ये सपना था कि हम बम्बई जाएंगे, कुछ काम करेंगे। बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
1: और बाकी
0: बाकी
1: दो
0: दूसरों का
1: बंदे
0: कुछ था, उनका कुछ सपना था। तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
1: अरे बाप रे।
0: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया। और उस जैसे पैसे मिले, वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे, और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहां जाएगी, यहां से वहां जाएगी, वहां से वहां जाएगी, वहां से बंबई पहुंच जाएगी, और
1: हाँ।
0: हम घर में नहीं बताएंगे। अभी वो चले गए, पहुंच गए, अपना सामान वामान बेच के, सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन। 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
1: अरे अरे अरे,
0: घर चले गए वापस, घर चले गए वापस। तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
1: फिर
0: स्कूल
1: पिटाई
0: जाने के लिए
1: हुई।
0: सब शो जबरदस्त पिटाई हुई।
1: अरे
0: तो
1: अरे,
0: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया, गांव में
1: यहां गलत संगत हो
0: गलत
1: गई।
0: संगत होगी इसकी,
1: हाँ
0: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी, और साथ में
1: स्ट्रिक्ट लोग हैं वहां
0: डिसिप्लिन,
1: पर।
0: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा। तो भेजा।

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, हाँ, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना,
1: करें।
0: ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी, लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे, कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तब किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है, अपना हमारी जो कल्चर है, उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है नहीं हमारे इसमें, तो उसको

0: अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी, तो
1: अच्छा
0: वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली कि यार साला इधर मलाई और दूध
1: दूध
0: मिलेगा।
1: मिलेगा।
0: हाँ, फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विथ मलाई ऑन टॉप। और
1: हाँ
0: वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे
1: बिल्कुल।
0: ग्लास।
1: और वो पंजाबी व्यक्ति
0: हाँ,
1: दूध का, दूध और
0: दूध का
1: पनीर
0: शौक। हाँ,
1: मलाई।
0: गांव में पैदा हुए हैं
1: जी
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे। वो रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार धूप भी मिल रहा है।
1: हाँ
0: तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी ना किसी के पीछे छुप जाते थे।
1: ताकि रिंग में ना आना
0: हाँ, वो रेंज में नहीं आया,
1: पड़े।
0: आंखों आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3 4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए,
1: हाँ।
0: लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर। इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में। वो सर 4 5 महीने हो गए। 4 5 महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ से
0: अभी तक
1: पिटा
0: मेरे हाथ
1: नहीं।
0: नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने।
1: अरे बाप
0: अरे
1: रे। हाँ
0: जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे
0: सुबह उठे, सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना,
1: जी।
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर टू सिटी के बच्चे, वो उतने प्रोटेक्टेड नहीं थे वो। तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से और घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। और तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया,
1: हाँ
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है। और क्योंकि वो दरोगा जी थे, वो
1: हाँ
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से। तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन
1: जेवर।
0: गहने वहने, हाँ खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ऑफ पंजाब जेल। तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। दे वर 2 3 फैमिलीज, दे वर वेरी प्रिविलेज पीपल। और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं कि बीच में के रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि सी लाखों कहानियां जो लोगों का लूटा
1: ट्रेन में
0: गया,
1: आए,
0: रेप हो
1: दंगों का
0: गया,
1: शिकार
0: मर्डर हो
1: हुए।
0: गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वालों को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2 3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
1: इतना यकीन था।
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी देके आ गए। तो यहाँ कुछ 4 5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली। तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन। तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है हमारे कल्चर में, तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ। तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, कि सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है। तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में, रातों रात वहां से जब निकले। अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ।
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत मायने
0: तस्वीर ही
1: रखती
0: उनकी
1: थी।
0: मेमोरी थी कि ये,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ। जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है कि उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है। कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम कर

0: के कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती है तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोला।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूँ उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं लिख
1: याद
0: सकता ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, डैडी के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस, बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है, इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का एक वर्स मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली।
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे। और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे
1: वो उनकी जिंदगी की कहानी है।

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में। तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ
0: जी।
1: लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं तो वो फिर वापस आ गए थे।
0: जी, पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप,
0: सरकार ने भेजा,
1: सरकार ने, फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया, दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव्स वही हैं, पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा

0: इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में। तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं। तो उन्होंने ही ज्वाइंट इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन
1: जी
0: एंड
1: जी
0: टेलीफोन ऑपरेटर।
1: ओके
0: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
1: जी जी
0: और टाइप राइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम। सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ द एनिमी इज रिकॉर्डिंग आवर
1: तो वो नहीं
0: कन्वर्सेशन,
1: जान
0: उनको
1: पाए
0: पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
1: बंदा कौन है, उसकी
0: बंदा
1: लोकेशन क्या
0: हाँ
1: है।
0: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था,
1: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
0: वाकई में आजाद थे वो,
1: क्या बात
0: आजाद
1: है।
0: दिल के।
1: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से
0: जबलपुर
1: पहले,
0: में पोस्टिंग हुई थी इनकी,
1: हाँ
0: ही
1: नहीं
0: ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर।
1: ट्रेनिंग वहां हुई,
0: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई। तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका
1: हाँ
0: गांव है।
1: बिल्कुल। वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपौर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
0: लेकिन
1: लगता है कि
0: कमाल
1: वो
0: की बात
1: एक
0: है, ही वॉज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
1: तो वो
0: मतलब
1: टच
0: वो
1: नहीं करते थे।
0: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा, हाथ में लगा, शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। ही वॉज लाइक दैट
1: नहीं, लेकिन वो जो
0: उनको,
1: नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें
0: हाँ
1: तो क्या
0: सब
1: सर्किट,
0: कुछ। लेकिन
1: बहुत
0: एक
1: सुंदर राइटिंग
0: होता
1: में
0: ना
1: सब
0: कि
1: कुछ
0: एक
1: है।
0: फोबिया होता है, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था। एक चुपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया। वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ 2-3 साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
1: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
0: घर में भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलते अरे भैया जाना है खेलने के लिए जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, या गोटी खेलने जाना है,
1: हाँ
0: या गिति गिति खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे हैं, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा, गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली, तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं, या मेरा, या माई ब्रदर, या और माई सिस्टर, और माई मदर, कोई होना चाहिए, अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट का उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5, और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है, भले वो माँ अच्छी हो, दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है।
1: तो एक अकेलापन आ जाता।
0: अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट,
1: जी जी जी
0: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
1: यस,
0: अकेलापन मे नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड, यू आर हर्टिंग योर सेल्फ।
1: कि मेरा तो कोई नहीं है।
0: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
1: हाँ
0: मेरी
1: मुझे
0: माँ ने
1: छोड़
0: मुझे
1: दिया।
0: छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो को लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई, मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी। इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की,
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रू ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं है, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था, ये सर नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये डर बाद में आया। कब आया? जब शोहरत आई, शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1956 में,
1: स्ट्रगल।
0: ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरे पे बैठते थे जहां वो बैठ के गाने लिखते थे, वहां एक दो घंटा गाना लिखा, दो तीन जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के। वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो।
1: अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने। वो इंसान खो गया क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंटर स्टेशन यार, माय फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शी साहब को देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते
0: हैं, क्यों जाते थे?
1: हाँ।
0: तो बोले कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा।
1: ये बहुत बारीक,
0: तो वो स्पिरिचुअल ताकत वापस आएगी।
1: जी, बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वाज अ वेरी सीरियस एटमॉस्फेयर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट इज व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया। कैसे? उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटर पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: सिनेमा में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास, मेरे पास रेडीनेस, वो संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की।
1: जी, आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे बड़े खाने के दिन?
0: प्लेस, फिक्शन, नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लेते, लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी, और एक्टिंग भी कर लेते थे। ये वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 28 29 टाइम्स। क्यों देखा था? ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म

0: उनके गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था,
0: ये उनका रियाज था। वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा है यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट पहली बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहाँ के लिए नहीं बनाऊ, मैं वहां के लिए बनाऊ।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी कैसे, बंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया सेविंग्स बम्बई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए।
1: बम्बई तो शहर ही निराला है।
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स नहीं उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बम्बई आए
0: हाँ,
1: और 3 महीने में वापस चले गए,
0: वापस
1: और
0: चले गए
1: वापस आर्मी में।
0: हार के। और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो देव वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना छोड़ा मुंडा वापस आ गया है, चलो यार इसको रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमिजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और
0: क्योंकि शादी के
1: शादी
0: लिए
1: भी
0: जो भी
1: लखनऊ
0: थी।
1: में हुई,
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई,
1: ये लड़की कैसे
0: और
1: मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का। तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ, तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो। हाँ,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो दोनों में अरेंज मैरिज होती थी ना।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक भुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री,
1: अच्छा।
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में,
1: जी
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था, नंद,
1: हाँ, आनंद से नंद।
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त थे वो।
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस, ग्रेजुएशन इन
1: सिलाई कढ़ाई
0: सिलाई।
1: बहुत अच्छा करती है।
0: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
1: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी
0: हाँ,
1: खासियत
0: बहुत
1: थी।
0: बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए, लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
1: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब
0: नहीं
1: देखने गए?
0: नहीं कुछ देखने होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप, देखने देखने
1: सीधे शादी तय।
0: सीधा शादी तय। बोलो उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
1: हाँ, ये देखिए, ये कमाल की
0: हाँ,
1: बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल
0: बख्शी
1: के
0: साहब ने
1: गाना
0: गाना भी लिखा
1: लिखा,
0: है यार,
1: लड़की साइकिल
0: साइकिल
1: वाली।
0: वाली, बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
1: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 58 है। ये खोड़, केसर, छतौली, इंजानी, बरपटिया, पुतकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 9 है। ये मकनपुर, नवाडी, पोड़िपा, पेंडारी, सिंघरा, भरदा, गौरा, मदन नगर, गणेशपुर, टुकुडाण, सिलफिली

0: जनक नगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये इंद्रावतीपुर, सिमरवा, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, चिनिया, महावीरगंज, कनक टकिया, शिवपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, महेशपुर, जगन्नाथपुर, बासाझाल, आमापानी, कुड़केल, घोघरा, मानपुर, बरिमा, कंडराजा, कुदारीडी, डांड केसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, दुलदुला और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये खारी झरिया, ठेठे टांगर, कुंजारा, पंडरी पानी, साजा पानी, गट्टी बुड़ा, करडेगा, हल्दी मुंडा, खड़ा माचा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 98 है। ये सिंघी छाप, बोजिया, इंचपारा, बायसी, गेरसा, नागदरहा, पोटिया, आमगांव, आमापाली, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 10 है। ये मदनपुर, केरा कछार, पसर खेत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के केंदई, एतमानगर और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, बनिया, चोटिया, लालपुर, सिमरहा, बोकरा मुड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बुलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर, फुरफुंदी, झाल पानी, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कुकरार, ताराझर, कुरवा पानी, खोला पारा, छिंदौला, लूठा पारा, फरसरा, बोडापाला, जारन डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोठ।

सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुइया के बोली। इसमें आज हम सुनेंगे डोरेलाल कैवर्त से कहानी पाठ और वासंती वर्मा से कविता पाठ। प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: ए जय जोहार संगवारी हो, रुक रुक के सही मौसम ह अपन रंग ला पकड़त हे और रिमझिम बारिश ह होवत हे। भुइयां ह हरियाय लगिस त चोला घलो सुख पावत हे। ई मौसम मा पानी के महत्तम ला समझ के इला बचाए के जतन करना, उदिम करना हम सब ला जरूरी हे, चाहे फिर वो किसान हो या कि शहर के रहवैया। संगवारी हो, भुइयां के भीतर पानी नहीं जाही त कहां ले बोर चलही और कहां ले खेती होही और कहां ले पिए के साफ सुघर पानी मिलही। जुलाई के महीना में हमन प्रकृति और पर्यावरण के बात करथन, पर्यावरण माह मनाथन, रूख राई ला लगाथन और ओला जतने के उदिम घलो करथन। तब भुइयां के बोली कार्यक्रम में घलो आज यही बात, पानी बचाए के ही संदेश के साथ अपन कहानी सुनावत हवे जाने माने कथाकार कोरबा ले पधारे श्री डोरेलाल कैवर्त जी मन।
1: बिन पानी नी है जिनगानी, ई कहना सोला आना सिरतोन आए। पानी के बिना जिंदगी जिए की कल्पना घलो

0: जाही त कहां ले बोर चलही और कहां ले खेती होही और कहां ले पिए के साफ सुघर पानी मिलही। जुलाई के महीना में हमन प्रकृति और पर्यावरण के बात करथन, पर्यावरण माह मनाथन, रूख राई ला लगाथन और ओला जतने के उदिम घलो करथन। तब भुइया के बोली कार्यक्रम में घलोक आज यही बात, पानी बचाए के ही संदेश के साथ अपन कहानी सुनावत हवे जाने माने कथाकार कोरबा ले पधारे श्री डोरेलाल कैवर्त जी मन।
1: बिन पानी नी है जिनगानी, ये कहना सोला आना सिरतोन आए। पानी के बिना जिंदगी जिए की कल्पना घलो नहीं करे जा सके। हमन सबो जानत हवन भुइया पानी आगी आगास और हवा, ये पांच जिनिस के मिंजरा ले मनखे देह के सृजन होय हावय। विज्ञान के मुताबिक मनखे के देह मा 10 से 12 आना तक पानी रहते, ते पाए के पांचो जिनिस के जरूरत पड़ते। एको ठन के कमती आए ले जिंदगी जिए बर मुश्किल हो जाते। जैसे सांस ले बर हवा के जरूरत पड़ते, बिन हवा के जिंदगी नहीं जिए जा सके। ठीक वैसनेच पानी के बिना जिंदगी बिरथा आए, एमा कोनो भरम के बात नहीं है। हमर छत्तीसगढ़ राज मा नल जल योजना शुरू नहीं हो रही तेकर पहली के बात आए। एक बछर बारिश कम हो रही, सावन और भादो के महीना भराए वर्षा के होते, तभो ले पानी कम सलहा गिरीस। अगास को तिले निहारत कोनो गणेश चौथ में पानी गिरी कहें, कोनो पितर पाख में पितर मन पानी गिरा ही कहें और कोनो दुर्गा दशहरा में पानी गिरबेज कर ही कहें। अगास कोती निहारे में करिया बादर छाए जरूर रहे, फिर बादर बिन बरसे आंखी ओलम हो जावे। बादर के गरजई घुमरई ल देख के ऐसे लागे कि पानी गिरबेज कर ही। कहे गे हावे जेन गरज थे ते निबर से हाना सही छोगिस। बादर मा सोखा बोर्रा घलो उवत दिखाए, फिर कोनो काम के नहीं रहे। पानी ला सोख देवाए ऐसन लागे। कतको झन आल्हा पढ़े मा पानी गिरथे कहीं, गांव मा महतर कका जबर आल्हाइक रहीस। ओहर सुघर आल्हा पढ़ाए, बने उतार चढ़ाव के मुताबिक कभू कड़क कभू सेवर राग मा आल्हा पढ़े। पानी गिराए बर उदिम घलो करीन, फिर कका के आल्हा पढ़े मा पानी नहीं गिरीस, सबो उदिम बिरथा होगीस। ऐसन करत पूरा चम्मास के महीना बुलग गए, फिर पानी ठगवा कस ठग दीस। गांव मा तरिया डबरी पैठू और कुआं पानी के जरिया रहीस। उहां सड़क के पानी भरोसा खेती किसानी के बूता काम होए। पानी के थोरौचा गिरे के कारण ओ बछर लटपट बीजा के पूर्ति धान होइस। गणेश चौथ ले पानी गिरे बर छोड़े रहीस, तरिया मन घलो ओतका ज्यादा नी भराए रहीस, ते पाए के कुआं घलो मा पानी नी भराए रहीस। गांव मा पानी के स्रोत तरिच तरी कोती भीतरी आवत जावत रहीस, ते पाए के कुआं जल्दी सुखा जावत रहीस। गांव के बोरिंग ला टेढ़ा टेढ़ा थक जावाए, फिर 3-4 गघरी पानी निकलाए ओहो बोरिंग थक जावाए। गांव के तीर मा एक ठन घेसरा नरवा उत्ती ले बुड़ती कोती बुहावत, फिर ओहो नरवा पानी के थोरौचा गिरे मा एको दिन पूरा नी आए रहीस। कुआं के सुखाए ले उही नरवा मा गांव के मनखे मन खचवा खन के पानी पिए भर बउराए। पानी के बिना गांव मा करलाई हो रहीस। बैसाख जेठ महीना लकलकावत जबर घाम, धरती के अंतस घलो फाट गे रहीस। तलाव डबरी तो सूखा पड़ गे रहीस। खेत खार के रूख राई सूरज के कटही साट ला ठाढ़े ठाढ़ सहत रहे। घाम के खातिर भुइया मा भूमरा चट ले जरे, ऐसे लागत रहे कि भुइया के कुदरा मा मुर्रा घलो फूट जाही। मझनिया के झोलहा घाम कनपट ल मारे कस जनावत रहे। बेर बुड़ती के पाछू थोड़ी अंधियार हुए, तभे गाल मा घी समारे जैसन लागे। बैसाख जेठ महीना के घाम मा तरिया के पानी सुखाए रहे, तो कोकड़ा चिरई मन दाव पाए रहे। कोकड़ा मन इहिच मौका मिले हावे कहिके तरिच तरी खुश रहे। उमन ल तिहार बरोबर लागत रहे, टप टप अवन मछरी ल रोजेज खावे। कुंवरा स्वागी कांदी ल गरुआ भैंसा मन चर के चिकनाए और मोटाए रही थे। ठीक वैसनेज कोकड़ा मन घलो चिक्कन और मोटाए रहे। पानी के बिना चिरई चुरगुन और जानवर मन के टोटा सूखा पर जावत रहीस। गांव के उत्ती कोती

दू कोस दूरिया मा पहाड़ के तीर एक ठन कुल्हिया मुड़ा बांध बंधाए रहीस। पाछू बछर कस ऐसो बांध म उतका ज्यादा पानी नहीं भराए रहीस। फिर तीर तखार के मन ल गुजारा करे के पूर्ति भराए जरूर रहीस। उही कुल्हिया मुड़ा बांध ले टेंकर म पानी भर भर के गांव लाना है। गांव भर ल एक दू टेंकर पानी काय पूर्तिस। हाथी के मुंह में सुहारी कस जना हुए। सबो जन भड़वा बर्तन बाल्टी डिचकी मरकी और डब्बा ल पानी भरे लाइन में लगाए टेंकर के अगोरा में बैठे रहे। गांव में पानी के जबर किल्लत रहे। टेंकर आवे ताले पानी झोंकाए पर झपट पड़े जैसे पिल्होरी गाय ल देख के ओकर बछरू ह कूद पर थे। अपन अपन बर्तन ल धर के पानी झोंकाए बर कूद पड़े। कभू कभू देखे में जनावे कि पानी झोंकाए बर एक दूसर संग झगड़ा घलो हो जावे। पानी के टेंकर में लिखाए रहीस जल ही जीवन है इसे व्यर्थ न गवाए। फिर पानी के टेंकर में खाले कोती छोटकुन छेद रहीस जेमा ले पानी थोर थोर गिरत रहे। टेंकर ड्राइवर के व्यवहार उतका ज्यादा अच्छा नहीं रहीस। कोनो ला सुघर बात नहीं करे। ओहर गुस्सेला स्वभाव के रहीस। ओकर चेहरा ले कोनो किस्म के दया भाव नहीं झलकत रहीस। कभू अपन टेंकर ल जेन जगह म बर्तन के लाइन लगे रहे तेन जगह नहीं खड़ा करे। ओहर कोनो दूसर जगह म टेंकर ल खड़ा कर देवे। बर्तन के लाइन में टेंकर ल लाए बर कहें तभो ले ओहर नहीं लाना है। जेन जगह टेंकर खड़े करे हों उही जगह आके पानी भर लेवा कहे। मनखे ल समय और परिस्थिति ल देखत काम करना चाहिए। मरता काय नहीं करता। सबो जन पानी झोंकाए बर टेंकर करा जाबेज करें। उही गांव में एक जन डोकरी दाई रहे जेकर मुहरन थुलथुल और चंदा बरोबर चकचक ले ओगर चेहरा दिखे। मूड़ी के चुंदी कांसी फूल असन सादा रहे। ओकर कन्या धनुष जैसन नियोगे रहीस। ओहर लौठी टिकट टिकट रेंगे। डोकरी दाई घलो अपन माटी के मरकी धर के पानी झोंकाए भर आए रहीस। टेंकर के खाले कोती छोटकुन छेद ले पानी गिरत रहीस और भुइया में बगरत जावत रहीस। भीड़ ल देख के डोकरी दाई सोचिस और अपन मरकी ल उही जगह में रख दीस जेन जगह में टेंकर के पानी गिरत रहीस। ये सोच के कि पानी बेकार के चूहत है और भुइया में बगरत हावय मरकी में पानी भर जाही कही के डोकरी दाई खुश नजर आवत रहीस। टेंकर के छोटकुन छेद ले पानी मरकी में धीरे धीरे भरावत जावत रहीस। मरकी आधा ले ज्यादा भर गे रहीस। थोड़ी समय के पाछू वो टेंकर ड्राइवर आईस। ओकर नजर जैसे टेंकर के खाले में माढ़े मरकी कोती परिस। ओहर अपन स्वभाव के मुताबिक चिल्लावत बोलिस काकर मरकी आए कौन ये जगह में रखे हवय। टेंकर ड्राइवर के आवाज डोकरी दाई के कान में सुनाई परिस। तैसने डोकरी दाई अपन लौठी ल टेकत टेकत ओ जगह आईस। मोर मरकी आए बेटा डोकरी दाई कहीस। सबो जन लाइन में लगे हवय तेन ल नहीं देखत हवस का डांटत ड्राइवर फिरेज कहीस। पानी है गिरत हवय अब भुइया में बगरत हवय सोच के अपन मरकी ल रख पा रहे हो बेटा डोकरी दाई डरावत कहीस। ओ निर्दयी ड्राइवर उन्नीस न गुनीस एक ठन लकड़ी के डंडा ला धर के जोर से मरकी ल मारिस। मरकी फूट गीस और देखते देखा तुमा भराए पानी भुइया में बगर गीस। ओ जगह में जतका मनखे लाइन में लगे रहीन सबो के मानसिकता ओ ड्राइवर पक्ष कोती दिखत रहीस और कोनो मन बढ़िया होइस कहके हासत घलो रहीन। ए डोकरी दाई ला देखा तो कहके कान में एक दूसर संग फुसफुसावत रहीन। डोकरी दाई के आँखी ले दोनों कोर ले आंसू टपके लागिस। पानी चूहत रहीस तेन जगह मरकी ले रख दिस त का होइस। सातवीं कक्षा पढ़िया लड़का डोकरी दाई कती बोलिस नहीं देखत हाओ का टेंकर में बड़का आखर ले अमोल बाणी लिखाए हावे जल ही जीवन है बूंद बूंद को बचाइए। पढ़िया लड़का टेंकर में लिखाए कोती इशारा करिस। लिखाए आखर ल पालन करे म पानी नुकसान होय बर बांच जाही थोड़ी गुनाओ लड़का फेरेज कहिस। डोकरी दाई भगवान ल सुमरत फिर लाइन में लग गए। अपन मन में गुनत गुनत कहिस कि अपन मरकी ल ओ जगह में रख के पानी बचाए के उदिम करके गलती कर पा रहे का। आओ सबो जन जोर मिल पानी के एक एक बूंद ल बचाए के उदिम करबो और सबो के जिंदगी ल सुघराबो।

0: आवा कार्यक्रम में आगे सुनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपन लेखनी के सुगंध ला बगरावत अपन काव्य रचना ले आज के कार्यक्रम में प्रकृति और पर्यावरण के बात ला बतावत हैं श्रीमती बासंती वर्मा।
1: मोर पहली रचना है अभी खेती किसानी असाल लग गए तो चला थे ओकर शीर्षक है खेद नगरिया नांगल ला।

तीरथ है पानी बांध ले मुड़मा पागला आगु आगु खेतल जो बोदार तय नाव बिजहा।

उवत सुरुज हे पूर्व मलाली, उवत सुरुज हे पूर्व मलाली, आही फेर सोनहा बिहान, खेद नंगरिया नांगला, दिन आगे खेती किसानी, खेद नंगरिया नांगला। अब मैं दूसरा रत्नामा, ये जो धरती माता है, कैसे धरती माता से गुहार का थे पेड़ है, ओकर पेड़ छन काटा करके ओकर बर आप मतलब सुनात हो पेड़ के गुहार।

मंजे मन फल फूर खाएं। मैं बेटी तोरे राज दुलारी झूल झूल के बाढ़े घाम जाड़ का चौमासा मा तोला ने भुलायो। मैं बेटी तोरे बेटा वो मन हावे कत का अंतर उकर हाथ मा टांगा टांगी मोर।

रक्षा करिहत सरगनि सेनि मिलही। रोवै पेड़ कहे भुइया ला कैसे बाँचो दाई, ए धरती के मनसे मन काटत है मोर ठाही। अब मैं आप मन के बीच में तीसरा रचना सुनात हूँ। यह भी कौहा के पेड़ है। कौहा के पेड़ है किसान से कैसे गोठियात है तेकर ऊपर है।

0: छत्तीसगढ़ के हमर नाम, भुइया के बेटा तय किसान, नांगर ला थोर कंथिर काले, मैं हूँ कौहा के पेन, मुरछैहा माते सुरताले, मुरछैहा माते सुरताले। जय जोहार।
1: श्रीमती बासंती वर्मा जी के काव्य पाठ के संग आज के भुइया के बोली कार्यक्रम यही सिरात है। अगले कार्यक्रम में फिर आप लंग भेंट होही। तब तक बर सुप्रिया ला अनुमति देव। जय जोहार।

0: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम भुइयां के बोली। इसमें हमने सुनी डोरेलाल कैवर्त से कहानी पाठ और वासंती वर्मा से कविता पाठ। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग।

0: शौकी कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई 2026 को स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता या कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92 और 3100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई और 24 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून दिल की आरती
3: सुरीली संदली।
1: श्रोताओं, आईटीआई में रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु पुनः पंजीयन हेतु एक सूचना सुनिए। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नेवरा बिलासपुर में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोटा में एक वर्षीय व्यवसाय कोपा एवं स्टेनोग्राफर हिंदी तथा द्विवर्षीय व्यवसाय फिटर एवं इलेक्ट्रीशियन की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17 जुलाई 2026 से 24 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in पर पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पूर्व से पंजीकृत हैं और अगले चरण में भाग लेना चाहते हैं वे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर कंसेंट प्रदान करते हैं और निर्धारित शुल्क जमा करें तथा आवश्यकता होने पर चॉइस फिलिंग में संशोधन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी संबंधित संस्था से अथवा उक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, वेबसाइट एक बार पुनः सुनिएगा cgiti.admissions.nic.in यानी कि cgiti.admissions.nic.in। सूचना समाप्त हुई।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: श्रोताओं, आज शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसानवाणी में हम सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में, जिसमें आज हम सुनेंगे ग्राम कुदरी विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम। संपादन और रिकॉर्डिंग होगी पंचू भैया की और संयोजन और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन।
4: कुछ यादें अतीत की।
5: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
4: कुछ बातें वर्तमान की।
6: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
4: कुछ सपने भविष्य के।
7: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
4: कुछ किस्से अनकहे।
8: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
4: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
9: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, हम महिलाएं जीवन में कई भूमिकाएं निभाती हैं, बेटी, बहन, पत्नी, बहू, माँ, दोस्त बनकर। और सखियों, इन भूमिकाओं में हम कई जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। सखियों, हम महिलाएं परिवार की केंद्र बिंदु होती हैं, जहां हमें अपना तो ख्याल स्वयं ही रखना होता है, साथ ही घर के बुजुर्गों का ख्याल, बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा, उनके भविष्य की जिम्मेदारियां, अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों की जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही हम अपने सपनों को फिर पूरा करने, उनको उड़ान देने का भी प्रयास करती हैं, पर कभी इन जिम्मेदारियों के बीच में हमारा मन, हमारी सोच उलझ सी जाती है।

0: तो हम बातों को, कार्यों को, जिम्मेदारियों को बार बार सोचने लगते हैं। कभी कोई छोटी सी बात आपके मन में बार बार घूमती रहती है, कोई गलती, किसी की कही हुई बात, भविष्य की चिंता, कोई घटना बार बार परेशान करती है और आप बस एक ही बात को बार बार और आवश्यकता से अधिक सोचते रहते हैं। तो सखियो, यह स्थिति ओवर थिंकिंग कहलाती है। सखियो, ओवर थिंकिंग का अर्थ है किसी एक बात, समस्या या घटना के बारे में आवश्यकता से अधिक और बार बार सोचना। इसमें व्यक्ति समाधान से ज्यादा अपनी चिंताओं, डर और कल्पनाओं में उलझा रहता है। शुरुआत में तो यह सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और मानसिक शांति छिन जाती है। सखियो, ओवर थिंकिंग का असर सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहता, हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। नींद प्रभावित होती है, चिंता और तनाव बढ़ता है, निर्णय लेने में मुश्किल होती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। सखियो, ओवर थिंकिंग धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं की ओर भी ले जा सकती है। तो सखियो, याद रखिए कि हर सोच सच नहीं होती, कई बार हमारा डर केवल हमारे मन की कल्पना होती है। तो सखियो, ओवर थिंकिंग के बटन पर स्टॉप जरूर लगाएं, अपने मन को कंट्रोल में करें, खुद पर विश्वास करना सीखे, वर्तमान में रहे, बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता ना करें, अपने कार्यों पर विश्वास कर आगे बढ़ते रहें, अपने मन में चल रही बातों को अपने दोस्तों, अपने माता पिता, बहनों को जरूर बताएं, कुछ वक्त अपने लिए जरूर निकालें जिसमें योग, प्रार्थना, वॉकिंग और मनपसंद कार्य जरूर करें, चाहे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जो भी आपको पसंद हो, और प्रकृति के बीच समय जरूर बिताएं। और सखियो, अगर आपको आगे कुछ करना चाहते हैं, आप सिर्फ सोच रही हैं भविष्य के लिए, तो कदम आगे बढ़ाएं, सिर्फ सोचे नहीं उसे करने की शुरुआत करें, अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानिए और खुश रहिए। सखियो, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह हमारे छोटे छोटे सकारात्मक कदमों से धीरे धीरे मजबूत होता है। सखियो, सोचना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना नुकसानदायक है। सखियो, ओवर थिंकिंग हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाती है, लेकिन आत्मविश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। तो अपने मन पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और हर दिन एक नया कदम आगे बढ़ाएं सकारात्मक सोच के साथ, और जीवन के प्रत्येक पलों का आनंद लें नई ऊर्जा और नए अनुभव के साथ। अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे, लगता था ऐसे ही चलेगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
0: सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम परिसंवाद की ओर। सखियो, आज के समय में शॉपिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कभी हम बाजार जाकर खरीदारी करते हैं तो कभी मोबाइल पर एक क्लिक में सामान घर मंगा लेते हैं। आकर्षक ऑफर, भारी छूट और आज ही खरीदे जैसे संदेश हमें तुरंत खरीदारी के लिए प्रेरित भी करते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हर खरीदारी समझदारी भरी खरीदारी होती है? चाहे शॉपिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, थोड़ी सी लापरवाही हमें आर्थिक नुकसान, खराब सामान या धोखाधड़ी का शिकार बना सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि जागरूक ग्राहक बने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और सखियों, आज के क्रम परिसंवाद का विषय भी है जागरूक ग्राहक और सुरक्षित परिवार। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी विभाग से श्रीमती रेवा कुलश्रेष्ठ जी, और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर की कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर निशी यादव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
4: नमस्कार।
0: तो सखियो, आइए जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी खरीदारी सुरक्षित, समझदारी भरी और लाभदायक बन सके। तो सबसे पहले हम रेवा जी आपसे जानना चाहेंगे, किस प्रकार हम एक जागरूक ग्राहक बन सकते हैं?
4: एक जागरूक व्यक्ति या ग्राहक अपने परिवार के लिए एक

0: सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उसके सुरक्षित और प्रमाणित खाद्य पदार्थों का चयन करने से बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। सखियों, आज आपके हाथ में घर की रसोई भी है और समाज का मार्केट भी है, तो आपको अपने बचत के पैसों का उपयोग भ्रामक विज्ञापनों की ओर ना खर्च करके, आपको लेबलिंग को पढ़ करके आपको क्रय करना है। बाजार से जितने से ज्यादा प्राकृतिक चीजों को ही प्राथमिकता देनी है। कई बार हम होड़ में आकर कॉपीकैट करके ऑल ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक जैसी चीजों का चयन करते हैं, लेकिन हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चेक करना चाहिए। जो सामान खरीदते हैं उन सामानों में इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखना चाहिए। प्रभा जी, एक सुरक्षित और खुशहाल परिवार की शुरुआत एक जागरूक ग्राहक से होती है। जब हम सोच समझकर खरीदारी करते हैं, बिल लेते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जांचते हैं, तो हम न केवल अपने परिवार का स्वास्थ्य और पैसा बचाते हैं, बल्कि अपने अधिकारों की भी सुरक्षा करते हैं।
1: जी रेवा जी, बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझदारी से और सोच विचार कर ही ले। हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सामान खरीदते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए, वैसे प्रभा जी, आज का जो आधुनिक उपभोक्ता है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वो भ्रामक विज्ञापनों और खाद्य अपमिश्रण या अनुचित व्यापार पद्धतियों में फंस जाता है। तो हमको इस तरह के खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक रहें और सीजनल रहें। घर में लाए हुए सभी फलों और सब्जियों को भी प्राकृतिक या रासायनिक रंगों से आकर्षित बनाया जाता है, जैसे कि उनमें रासायनिक केमिकल मेलाकाइट ग्रीन से कलर कर दिया जाता है तो वो आपको लुभान्वित लगता है, लेकिन आप उसे घर में ला करके अच्छे से बेकिंग सोडा या उसके माध्यम से धो लें और फिर आपका वो कलर हट जाता है। कई बार आप जब मार्केट से अपने लिए केक या बेकरी के आइटम खरीदते हैं तो आपको उसमें इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक करनी चाहिए और उसमें इंग्रेडिएंट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो देर से पचते हैं वो आपके गट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर और पाम ऑयल जैसी चीजों को आपको कम उपयोग करना चाहिए। जब आप मार्केट से कई सामान खरीदते हैं तब आपको नेट वेट, प्राइस, MRP और आपको उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी और उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को चेक करना चाहिए। क्या वह प्रोडक्ट FSSAI द्वारा प्रमाणित किया गया है? क्या वह प्रोडक्ट प्लस F साइन के साथ है, जिसका अर्थ होता है कि ये फोर्टिफाइड किया हुआ है? क्या यह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एजेंसी या इंपोर्ट एजेंसी के द्वारा पास किया गया है? तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1: जैसे कि आपने भी बताया कि पैकेट पर निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि और MRP देखना आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है आप हमें बताएं।
0: देखिए, अगर आप डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी जब आप चेक करते हैं तो आपको ये समझ आता है कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी और उसका डायरेक्शन ऑफ यूज कैसा रहेगा। आपको उस समय सीमा के अंदर ही उसका सदुपयोग करना रहेगा ताकि आपको उचित लाभ मिल सके। MRP किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ये अर्थ होता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में कंपनी के द्वारा कितनी लागत होती है। कई बार कुछ व्यापारी MRP से ऊपर भी चार्ज लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति में जागरूक उपभोक्ता बन करके इसका विरोध करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और रिवा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि परिवार के बजट और स्वास्थ्य की सुरक्षा में एक जागरूक ग्राहक की क्या भूमिका होती है।
0: जी प्रभा जी, तो जब हम परिवार की बात करते हैं तो हमारे पास हमारी पूरी आय का 30% ही खर्च पे रहता है और कुछ प्रतिशत निवेश पे जाता है और कुछ प्रतिशत भविष्य के योजनाओं पर। तो जो भी हमारे पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए बचत राशि रहती है उसका सदुपयोग हमें सिर्फ और सिर्फ मानक वाले वस्तुओं को पे ही क्रय करना चाहिए और आप अपने परिवार का मील प्लानिंग करके, सुनियोजन करके ही आप अपने घर पे खाना बनाए और ज्यादा से ज्यादा आप ताजा फलों, ताजा सब्जियों और ताजा बने हुए खाने का सदुपयोग करें। जागरूक ग्राहक हमेशा कीमतों की तुलना करके सही वस्तु खरीदता है, अनावश्यक खर्चों से बचता है और परिवार के बजट को भी संतुलित रखता है। खरीदारी के समय बिल लेना, जिससे किसी समस्या पर शिकायत कर सकता है, ऑफर और छूट का समझदारी से लाभ उठाता है और बिना गुणवत्ता से समझौता किए। इसमें वह खरीदारी करते समय FSSAI द्वारा मानक स्थापित कंपनियों के ही उत्पाद को खरीदता है। FSSAI ने ईट राइट इंडिया आंदोलन की भी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की

0: आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: आज के समय में सबसे बड़ी गलती ग्राहक क्या करते हैं?
0: आज के आधुनिक समय में ग्राहकों के पास दो समस्याएं हैं। एक समस्या यह है कि ग्राहकों के पास समय कम है, जिसमें उसे शॉपिंग करनी रहती है और अपने मील की प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरी समस्या ये है कि बाजार में बहुत सारी टू मेनी चॉइसेस जो कि ग्राहक को कई बार कंफ्यूज कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को समय की प्लानिंग करते हुए अपने खाद्य पदार्थों एवं अपने वस्त्रों का चयन करना चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस में भी उसे गुणवत्ता वाली चॉइस जो कि प्रमाणित की जाती हैं सभी एजेंसी से, जैसे कि FSSAI, ISI या एगमार्क, उनका ही चयन करना चाहिए। जब भी वह क्रय करे तो उसे बिल उसी समय ले लेना चाहिए और उसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आकर उपभोक्ता अक्सर अनुपयोगी और हानिकारक उत्पाद खरीद लेते हैं। भ्रामक दावों के प्रति सजगता ही परिवार की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा की गारंटी है।
1: जी बिल्कुल। और हम ये भी जानना चाहेंगे रेवा जी आपसे कि खाद्य पदार्थों को खरीदते समय किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: खाद्य पदार्थों को खरीदते समय सबसे पहली चीज होती है उसकी शुद्धता, उसके बाद आता है उसका नेट वेट यानी कि वजन या मात्रा, और फिर उसके बाद आता है उसका दाम। शुद्धता में कोई कॉम्प्रोमाइज या नहीं होना चाहिए, 100% क्वालिटी होनी चाहिए और नेट वेट नेट वॉल्यूम में भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे ग्राहक के साथ धोखा होता है और किसी भी तरह का अपमिश्रण या किसी भी तरह का उचित दाम से ज्यादा MRP से ज्यादा का भी उसके व्यय नहीं होना चाहिए।
1: जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो जाए तो शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज की जा सकती है?
0: जी प्रभा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर मजबूत विधायी कदम उठाए हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पुराने 1986 के कानून को बदल दिया है, जिसमें डिजिटल समावेश किया है और कई प्रावधान भी जोड़े हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर स्वतः संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। इस प्राधिकरण में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है और यदि किसी दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा से उपभोक्ता को नुकसान होता है तो निर्माता या सेवा प्रदाता को मुआवजा देना होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH 1915 और ई दाखिल पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों का सरलीकरण किया गया है ताकि एक आम नागरिक भी बिना किसी वकील के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई दाखिल औपचारिक अर्ध न्यायिक कार्रवाई के लिए मामले सीधे ई जागृति प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए जा सकते हैं।
1: तो हम निशी जी आपसे जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे आम तरह की धोखाधड़ी कौन सी होती
2: है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम सब इस चीज में बहुत कन्वीनियंटली फाइंड आउट कर रहे हैं कि जब हम घर बैठे बैठे अपना ऑनलाइन शॉपिंग करके जो भी प्रोडक्ट हमको चाहिए वो वेराइटीज चेक करके हम मंगवा ले रहे हैं और वो हम मंगवा भी लेते हैं और हमको पसंद ना आए तो हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं या रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रॉपर चीजें जो हमको उसमें देखनी है वो ये है कि आप जिस लिंक से भी क्लिक करके सामान मंगवा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड जो हो रहा है आजकल वो हो रहा है फिशिंग लिंक का। फिशिंग लिंक मीन्स कि जो भी आपका लिंक है आपको प्रॉपर चेक करना है कि उसमें HTTP से शुरू होना चाहिए और जो भी आपका वेबसाइट है वो ट्रस्टेड वेबसाइट होना चाहिए, आपका जो ब्रांडेड होना चाहिए कॉम उसकी स्पेलिंग्स आप प्रॉपर चेक करेंगे, UPI, CVV या फिर जो स्कैनर जो आप करेंगे वो प्रॉपर आपके क्रेडिट कार्ड से होना चाहिए या आपके UPI से होना चाहिए। जैसे हम कभी भी रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं, ऑनलाइन हमको वाईफाई अवेलेबल है तो हमको कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या कोई भी ऑनलाइन ट्रांसफर कभी भी वो ऑनलाइन वाईफाई पे नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक हो जाता है। तो ये सब आम जानकारियां हैं, आम जो चीजें हैं जिससे धोखाधड़ी हो सकता है।
1: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं खरीदारी करते हैं उस समय हमें किन किन बातों का अधिक ध्यान रखना चाहिए?
2: सबसे पहला तो जैसे मैंने बताया कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही जाओ। सेकेंड, आप URL प्रॉपरली चेक करो, HTTPS से ही शुरू होना चाहिए, S ही आपको सिक्योरिटी दे रहा है और आई थिंक हर महिलाएं और हर पुरुष ये देख सकते हैं कि HTTPS / जो होता है S हमको प्रॉपर देखना है कि वो एस है कि नहीं। दूसरी चीज, जो भी स्पेलिंग्स हैं amazon.com, amazon में ओ की जगह जीरो तो नहीं कर दिया है, जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं उसका प्रॉपर एड्रेस देख के फिर आप उसकी तरफ जाइए। जब भी हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे हम कोई वॉशिंग

0: मशीन मान लीजिए लेना चाहते हैं, एक अच्छा प्राइस है उसका, मान लीजिए 15,000 का है, तो आप उसको सिर्फ एक वेबसाइट से देखकर नहीं लीजिए, आप उसी सेम ब्रांड का जो भी आपको पसंद आ रहा है उसको सब तरीके से आप कंफर्म हो जाइए, उनकी रेटिंग्स देखिए, वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो देखिए, कस्टमर की जो भी फीडबैक्स हैं वो देखिए, उसके बाद ही उसका प्रॉपर ऑर्डर कीजिए। और एक ये जो मैंने बताया आपको कि जो आपका जनरलाइज्ड वाईफाई है वहां पे आप कोई भी बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन बिल्कुल मत कीजिए, वहां से ही आपके पूरा डिटेल्स जो है हैक हो जाता है। ऑनलाइन जो ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, स्कैम आता है कि इतने में इतना डिस्काउंट है आप लिंक कर दीजिए, इस तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, वो सब आपका फ्रॉड है या धोखाधड़ी है जिसके थ्रू वो आपका पूरा डिटेल्स लेना चाहते हैं, जिससे वो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली भी कर सकते हैं।
1: जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी हम पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, भुगतान भी उसका ऑनलाइन ही करते हैं, तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए आप बताएं।
0: जी प्रभा जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, पहला चीज आपको ये देखना है कि आपका टू वे ऑथेंटिकेशन हो। टू वे ऑथेंटिकेशन मतलब एक टाइम पे आपने अपना जो पासवर्ड डाला है वो डालेंगे और दूसरा जो ऐप का पासवर्ड डाला है वो डालेंगे। कभी भी वो वन वे ऑथेंटिकेशन से आप मत कीजिए, खरीदिए नहीं या फिर बैंक से अकाउंट से पैसा ट्रांसफर मत कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप ये कर रहे हैं तो HTTPS का तो ध्यान देंगे ही, और जो है आपका बैंक डिटेल्स है, UPI ID है, वो आप प्रॉपरली अपने ही सिस्टम या अपने ही मोबाइल पे ही दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो किसी भी, अगर आपका जान पहचान का कोई है या जान पहचान का नहीं है, वहां अपनी UPI ID डाल दी या फिर अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाल दिया, तो ये सब नॉर्मल गलतियां हैं जो जल्दबाजी में हमसे हो जाता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन करते समय या फिर जल्दी से हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है उस समय। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमको जल्दी जल्दी वो सामान चाहिए तो हमारे पे नेट नहीं है तो हम शॉपकीपर का ही मोबाइल मांग लेते हैं, मोबाइल मांग के उसी के अंदर हम अपना बैंक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, CVV डाल देते हैं, OTP डाल देते हैं, वो सारा कुछ आपका हैक हो जाता है। तो हमको इन सब चीजों से बचना है कि एक तो आप टू वे ऑथेंटिकेशन तो कम्प्लीटली चेक कीजिए कि ऐप का भी प्रॉपर पासवर्ड होता है और आपका भी एक प्रॉपर पासवर्ड है, और दूसरी चीज मंथली और वीकली आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, सेम पासवर्ड को आपको पूरे साल भर ऐसे नहीं रखना है। ये सब सीवियर जानकारियां हैं जो आपको कोई भी चीज खरीदने पहले चाहिए।
1: जी, सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। अगर कोई गलती से हम किसी के साथ OTP या UPI पिन हम साझा कर लेते हैं तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए?
0: अगर गलती से हमने कभी अपना OTP साझा कर लिया या फिर अपना बैंक इन्फॉर्मेशन कर दिया, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है तो आप उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए तुरंत। दूसरा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर आप कॉल कीजिए या आपका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ है वो आप डाल दीजिए। जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट या प्रॉपर प्रूफ आप जरूर रखिए। ये सब चीजें आप जब भी आप उस पे रिपोर्ट करेंगे तो आपको ये चाहिए हो। हाँ, इतना आपको करने से यू विल बी सिक्योर।
1: जी, मतलब सबसे पहले हमें अपना अकाउंट जो है उसे
0: अकाउंट को हमको ब्लॉक कर देना है। दूसरा, अगर ये एक और चीज कर सकते हैं, आपसे भी आपने बैंक है आपका, उस बैंक पे तुरंत कॉल करके अपना अकाउंट ब्लॉक करा दीजिए।
1: जी,
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम कोई URL पे जाते हैं, कोई लिंक पे जाते हैं, तो प्रॉपर उसका वेबसाइट जो है ना वो डिस्प्ले होता है नीचे। अगर आप देखेंगे, हम क्या करते हैं कि जैसे URL देखे फटाक से क्लिक कर दिए, ये आपको नहीं करना है। आप उसमें माउस को लेके जाइए, आपको प्रॉपर ब्राउजर देखेगा, उस प्रॉपर ब्राउजर को आप पहले गूगल सर्च कीजिए कि वो क्या है, उसके बाद ही उसको लीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टेप ही आपके जो भी आपने मेहनत से कमाया है पैसा वो आपको बचा सकता है।
1: निशी जी और रेवा जी, अपना बहुमूल्य वक्त निकाल कर आप यहाँ पर आए और हमारी सखियों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हम कैसे एक जागरूक ग्राहक बनकर, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे वो ऑफलाइन शॉपिंग हो, उसके विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं कि ये जानकारी बिल्कुल हमारी श्रोताओं को पसंद आएगी और वो भी एक जागरूक ग्राहक बनेंगी। और आप जाते जाते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? रेवा जी,
2: अपनी सभी सखियों को ये बताना चाहती हूँ कि उन्हें सजग रहने की जरूरत है। अपने बचत को, अपने परिवार के बजट को ध्यान में रख करके ही क्रय करें। सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या आपके दिखावे में ना जा करके अपने परिवार के जरूरतों के हिसाब से ही क्रय करें।
1: निशी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी चलते चलते हमारे श्रोताओं को?
0: अपने सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन जागरूक वे में कीजिए। इसे मैं एक स्लोगन के वे में बताना चाहूंगी कि स्टे अलर्ट, स्टे सिक्योर, थिंक बिफोर यू क्लिक, वेरीफाई बिफोर यू बाय, साइबर सेफ्टी बिगिंस विद यू। मींस आपको एकदम अलर्ट वे में शॉपिंग करनी है। कभी भी आप कोई क्लिक कर रहे हैं तो आप उसको देख के कीजिए कि आप जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या नहीं। अगर आप दो तीन चीजें जो मैंने बताई हैं उसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से कॉन्फिडेंटली शॉपिंग कर सकते हैं। सकते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं वो आप

0: के घर में आराम से आ सकता है विदाउट एनी फ्रॉड।
1: जी रेवा जी और निशी जी, आप यहाँ पर आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारी सखियों के साथ साझा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम परिसंवाद में डॉक्टर निशी यादव और रेवा कुलश्रेष्ठ को। विषय था जागरूक नागरिक सुरक्षित परिवार। सखियों अब चलते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर। सखियों हम कई यात्राएं करते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ खूब मजा करते हैं और वहाँ की खूबसूरती प्रकृति का वर्णन सब कुछ साझा करते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के व्यक्तियों के साथ। और सखियों अपनी एक यात्रा हमसे साझा कर रही हैं हमारी सखी श्रद्धा तिवारी जी।
4: नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम श्रद्धा तिवारी है। तो मैं आप सभी से कुछ दिन पहले की अपनी कश्मीर यात्रा का अनुभव साझा करना चाहूंगी। यात्रा तो सभी करते हैं लेकिन कश्मीर का नाम सुनकर ही मन में एक सुंदर और हरी भरी वादियों का ही ख्याल आता है। कश्मीर की यात्रा एक ऐसा जादुई अनुभव था जो किसी सपने के सज्जे से लगता है। इसी सही मायनों में धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ की हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें हर यात्री का मन मोह लेती हैं। और मुझे तो ये तो एक दिन पहले वाला सरप्राइज मिला था। यूं ही बात करते हुए पति का फोन आया कि कल कश्मीर जाना है, तो मन में खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि अचानक कैसे प्लान बन गया, इतनी जल्दी कैसे पैकिंग करूंगी। लेकिन सब हो गया और हम निकल गए रायपुर के लिए। रायपुर से हमारी दिल्ली तक की फ्लाइट थी, फिर दिल्ली से श्रीनगर की। लगभग 2 बजे हम श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में कदम रखते ही वहाँ की वादियों और ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। 2 दिन श्रीनगर में हम रुके, डल झील, मुगल गार्डन और शिकारा की सवारी करे। बहुत ही अच्छा और अद्भुत रहा हमारा अनुभव। रात में हाउस बोट में भी एक दिन रुकने का था हमारा, जो कि अविस्मरणीय अनुभव था। वहाँ का तो हम अपने बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा हमारा अनुभव था। दूसरे दिन भी हमारा श्रीनगर में ही घूमने का था। दूध पथरी अगर गए घूमने, उसके बाद सोनमर्ग गए, वहां पे हमें को बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां मिली, वहां पे बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग पहलगाम के लिए गए, पहलगाम में 2-3 जगह है वहां घूमे। फिर आखिरी दिन हमारा पहलगाम में बेताब वैली में घूमे हम लोग, वहां पे भी बहुत ही अच्छा लगा, जहाँ बेताब फिल्म की पूरी शूटिंग हुई थी। अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, अब इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो तो वहां जाते हैं तभी लोगों को पता चलता है, पूरी वादियों में ही जादू है। उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा हमारी लास्ट था, वैष्णो देवी की यात्रा के साथ ही हमारी ट्रेवल था वो खत्म हुआ, फिर वापस हम लोग आ गए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक बार जरूर जाइए सभी लोग, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हम लोगों का। थैंक यू
3: सखियों, अभी अपनी यात्रा का अनुभव हमसे साझा कर रही थी श्रद्धा तिवारी जी। सखियों अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है हमारी सखी शशि सिखा और सरगम गुप्ता ने मंगला बिलासपुर से। और इसी गीत को सुनना चाहा है श्रीमती रानी सुनीता नित्या नियति और रूसिका कुशवाहा ने कतियापारा बिलासपुर से। सखियों अब आप भी अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mahilasabha@gmail.com। तो सखियो आप भी ईमेल करके अपने पसंद का गीत जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं बहनों के पसंद का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी के, और इस फिल्म का नाम है आया सावन झूमती।

सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। कार्यक्रम चिट्ठी मिली में हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 49 और पिन नंबर है 495006। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं हमारी ईमेल आईडी पर पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर। सखियों, अब इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

कार्यक्रम महिला सभा भी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही के संपादित अंश। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करे गीत सुने। शाम 7:20 पर होगी ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में हम सुनेंगे सामूहिक खेती के महत्व वाला जाना विषय पर चर्चा। शाम 7:30 पर कार्यक्रम किसान वाणी में हम सुनेंगे लाख लगाएं लखपति बने विषय पर आज की बात। साथ ही सुनिएगा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में, जिसमें आज हम सुनेंगे ग्राम कुदरी विकास खंड बलौदा जांजगीर चांपा के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम। संपादन करेंगे पंचु भैया और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। साथ ही जानकारी होगी मंडी और मौसम की। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की। रात्रि 9:15 से लेकर 10 बजे

तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

लीडरशिप कार्यक्रम नवविहान सुनेगा प्रातः 6:45 पर। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस प्रायोजित कार्यक्रम को हम सुनेंगे प्रातः 7:15 पर।

0: सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी गीतों का कार्यक्रम अमराई, जिसमें हम सुनेंगे जीडी मानिकपुरी, गया सिंहराज, निका साहू और साथियों के गाए गीतों को। कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद का आनंद लीजिएगा सुबह 10 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी को सुनिएगा सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे सुनिएगा हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35 पर सुनिएगा युवा जगत, जिसमें आज की बात होगी अपने सेहत की देखभाल और युवा स्वास्थ्य पर, और होगा क्रम कला साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन, लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद पर। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोठ में सुनिएगा मसाला वाले फसल की खेती में बहुतेत फायदा विषय पर चर्चा, साथ ही सुनिएगा सफल कृषक से भेंट और जानकारी होगी मंडी और मौसम की। रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा, और रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही के संपादित अंश। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं
1: छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा भविष्य में होवैया परीक्षा मन में पेपर लीक रोके बर जम्मो संबंधित पक्ष ला मिल के प्रयास करे के आह्वान करे हे। भारत हा डेंगू के पहली वैक्सीन ला दीन मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली रायपुर में प्रदेश व्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान के करीन शुभारंभ। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करत भारी ले अति भारी वर्षा होए के देहे चेतावनी। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा देश में भविष्य में होवैया परीक्षा मन में पेपर लीक रोके बर जम्मो संबंधित पक्ष ला मिल के प्रयास करे के आह्वान करे हे। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बताइन है कि श्री मोदी हा परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगन मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे के और देश के युवा मन के हित की रक्षा करे बर सरकार के संकल्प ला दोहराइन। प्रधानमंत्री ने कही कि हालच में हुए नीट पेपर लीक मामला में शामिल जम्मो लोगन मन ला गिरफ्तार कर ले गए है और 13 जिन आरोपी अभी जेल में है। प्रधानमंत्री ने कही कि आगू पेपर लीक नहीं हो ऊपर कड़ा कदम उठाए गए है। उमन कही कि पेपर लीक ना ही राज्य के ना ही केंद्र के संगे संग ना ही दलगत राजनीति के विषय हरे। भारत हा डेंगू के पहली वैक्सीन ला मंजूरी दे दे है। औषधि महानियंत्रक हा टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया डहर ले विकसित क्यूडेंका वैक्सीन के विपणन ला मंजूरी दे दे है। कंपनी के मुताबिक ये वैक्सीन 4 से 60 उम्र वर्ग के लोगन मन पर मंजूर करे गए है और एला डेंगू संक्रमण के पहली मरीज मन के जाँच के जानकारी के बाद लगाए जा सकेगी। एला यूरोपीय संघ ब्रिटेन ब्राजील इंडोनेशिया और अर्जेंटीना समेत 40 ले ज्यादा देश मन में मंजूरी मिल गई है। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मन के बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे समेत पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मन मौजूद रहे।

0: मुख्यमंत्री श्री देसाय ह काल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में राखे गए गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह के मौका में प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान के शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री ह गौ विज्ञान परीक्षा में बढ़िया प्रदर्शन करैया विद्यार्थी मन ला सम्मानित करके पुरस्कार घरों दिन। ओमन खुशी जतावत कही ने कि ये बच्छर प्रदेश के स्कूल और महाविद्यालय मन के 1,64,000 ले ज्यादा विद्यार्थी मन परीक्षा में भाग ली। मुख्य सचिव विकासशील मंत्रालय में गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के डैशबोर्ड के समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के कमजोर बिंदु मला चिन्हारी करके ओला तुरते सुधार करे के निर्देश दिन। ये बैठक में राज्य के डीजीपी अरुण देव गौतम घलो मौजूद रहे। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत प्रदेश के निजी स्कूल में प्रवेश पर तीसरा और आखिरी चरण काली 22 जुलाई ले शुरू होगी। 22 जुलाई ले 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीआई पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन आवेदन और जरूरी संशोधन कर सकी। 10 अगस्त ले 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम ले चुने गए लयिका मन के सूची जारी करे जाही और 17 अगस्त ले 25 अगस्त तक लॉटरी ले चुने गए लयिका मन के निजी स्कूल में भर्ती करे जाही। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय और इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की मदद ले 1 अगस्त ले 30 सितंबर तक सीएजी आईसीएसआर रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित करी जाही। ये प्रतियोगिता के उद्देश्य ऑडिट के नतीजा और सार्वजनिक वित्त ले जुड़े मुद्दा ऊपर आधारित नीति पर उपयोगी और मौलिक रिसर्च ला बढ़ावा देना है। ये प्रतियोगिता पर प्रतिभागी ऑनलाइन आवेदन कर सकत है। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागी मल्ला राज्य और राष्ट्रीय स्तर में इनाम दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़ बाचे समाचार कोती। प्रदेश के आने आने जिला में पाछू दू तीन दिन ले होत वर्षा के सेती कतको नदिया नरवा उफान में हवे। रायगढ़ में सरलग होत वर्षा के सेती केलो डैम के 4 गेट खोल दे गए है। उन्हें शहर के पैठू डबरी चंद्रनगर के नामदेव गली और वार्ड नंबर 18 के कई ठिन घर में पानी घुसर गए है। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के बिलारी कचंदा नाला के पानी पाछू 15 दिन में तीसर बखत पुलिया ले ऊपर बोहावत है। एखर सेती पुलिया के ऊपर अवई जवई बंद कर दे गए है। आज मंझनियाबाद राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ठिन जिला मनमा तेज वर्षा होए के खबर मिले है। यही बीच मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करत कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ने बताया है कि प्रदेश में यह स्थिति अवैया 4 दिन तक बने रही। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है राज्य के 11 नगरी निकाय मन में पाछू करीबन 10 बच्छर ले काम करत कंप्यूटर ऑपरेटर मन के सेवा खत्म और कई महीना ले तनखा नहीं मिले के मामला में राहत देवत केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण ला 6 हफ्ता के भीतर फैसला लेके निर्देश दे है। कोर्ट है कर्मचारी मला नवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करे के मंजूरी देवत कही ने की सक्षम अधिकारी मेरिट के आधार में ओमा विचार करके तर्क संगत आदेश पारित करें। ये आदेश न्यायाधीश बीबू दत्त गुरु के एकल पीठ अमित कुमार वर्मा समेत 11 कंप्यूटर ऑपरेटर डाले दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित करी। प्रदेश ले हज यात्रा में जवैया लोगन मन अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग बताई है कि हज पर आवेदन करे के आखिरी तारीख पहली 20 जुलाई रही से। उमन बताई है कि हाजी मन के चयन पर हज कमेटी ऑफ इंडिया डहर ले 30 जुलाई के कुर्राह के आयोजन करे जाही। कुर्राह में चुने गए हज आवेदक मन डहर ले हज यात्रा के पहली किस्त की राशि 10 अगस्त तक जमा कराई जाही। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा के अगुवाई में काली रायपुर में संचालक मंडल के 38वां बैठका हुई। बैठका में पर्यटन क्षेत्र के विकास, वर्तमान योजना के प्रगति, नवा पर्यटन पहल और अवैया गतिविधि

0: जी के बारे में गोट बात करेगी। बैठका में ये बात ऊपर घलो सहमति बनी से कि प्रदेश के प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक और जनजाति पर्यटन संपदा ला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रभावी ढंग ले पेश करे बर मिलजुल के काम करे जाही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हदबंद स्टेशन के बीच तीसर लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमिश्निंग मर NI के काम करे जाही। एकर सेती 23 और 24 जुलाई के रायपुर बिलासपुर कोरबा और गेवरा रोड के बीच चलैया मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द रही। उन्हें 23 जुलाई के झारसुखड़ा गोंदिया ले चलैया झारसुखड़ा गोंदिया झारसुखड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन तक चलही। बिलासपुर जिला में आज हो एक सड़क हादसा में 2 जिन लोगों की मौत हो गई। उन्हें 5 जिन आने लोगन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली खबर के मुताबिक जिला के हिर्री थाना क्षेत्र में मुड़पार के तीर एक ठीन ट्रैक्टर अंते तंते होके पलट गिस। यह हादसा में ट्राली में बैठे 19 जिन माले 2 जिन के मौकच में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 5 जिन लोगन मल्ला इलाज बर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अपन मांग ला लेके प्रदर्शन करत प्रदेश के अतिथि शिक्षक मनहा कालीरतिया दुर्ग स्थित राज्य के शिक्षा मंत्री के घर के आगू धरना दिन। एकर पहली ये शिक्षक मनहा रैली निकालिन संविलियन के मांग करत। ये शिक्षक मनहा पाछू करीबन 20 दिन ले हड़ताल में हवे। अब थोड़की समाचार सार मा मुख्यमंत्री विष्णु देसाय के अगुवाई में काली 22 जुलाई के बिहने 11:30 बजे ले मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बलौदाबाजार भाटापारा जिला के 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा शुरू करे गए है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा आज नवा कृषि उपज मंडी परिसर में राखे के कार्यक्रम में ये सुविधा के शुभारंभ करी। और बेमेतरा जिला के नीनवा गांव के पटवारी अंबा उपाध्याय राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने के आरोप में निलंबित करे गए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य में होवैया परीक्षा मन में पेपर लीक रोके बर जम्मू संबंधित पक्ष मिल के प्रयास करे के आह्वान करे है। भारत डेंगू के पहली वैक्सीन लदीन मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय काली रायपुर में प्रदेश व्यापी मेरा परिवार गौवर्ती परिवार अभियान के करीन शुभारंभ। और मौसम विभाग अवैया 24 घंटा के दौरान बिलासपुर रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करत भारी ले अति वर्षा होए के देहे चेतावनी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन है सिरावत है। जय जोहार।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर सरिता प्रिंस एकांश गम्हाणकर सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह और अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल और बिट्टा बजाज अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान आयशा सबिहा अनस और रेहान छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल राजदीप राशि और शीतल पोटियाला दुर्ग से संजय साहू सुजाता शशांक सीमा साहू लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू डुमराव से वलीउल्ला अंसारी महेंद्र मोदी विक्रांत और इफ्जाल ताज कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित हैप्पी राय नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर निर्मला विशाल नावकर सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू रोहांसी से मुकेश साहू नंदिनी मनीष मयंक और जानकी साहू गांवना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता चिरमेरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश प्रसाद और कालिंदरी लहरे मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु सागर बालूजा सरगांव से राजेश वर्मा हिरोमन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता यवतमाल से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशनी प्रियांशी मनवर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी गीतिका और भानु पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किसुतासु अर्णवानंद और सत्यमानंद कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजेश जाधव प्रशांत संचित वायाड़ प्रथमेश देशमुख प्रणाली सर्वत देशमुख दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना चैतन्य मेघा मस्कीन गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश दीपक पूजा खटक लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल रुक्मणी साहिल भारती बघेल जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती।

हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तान्या नारंग, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजलपुर विहेजल राजेश रेशमा साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से निजमुल हुदा, एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख और शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश, पांडु रंग कुंभार, रायगढ़ से हमारे साथी हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश निवान, सौरव शायना और मैंडी शर्मा, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और आयान। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और इन साथियों के गाए गीत को। फिल्म का नाम है मिशन कश्मीर। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना मिशन कश्मीर फिल्म का गीत उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है फिल्म मुझे कुछ कहना है से। सोनू निगम की आवाज़ है, समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं, वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार दूदी, महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत, फरहत, रिफत, नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, वीरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमाराज, पवन, संजय, दीपक और कमल, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजिता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पहांदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर मुझे कुछ कहना है फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ही मिलकर गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं नानघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका निष्का तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, इनके साथ है चेतन, सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली से आसमा परवीन, आमना परवीन, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बासी और इनके साथ है अबान, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश कमलेश, गनुराल रजक, मुरली छत्रिय, सावंतपुर से ऋषि सेन, नितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबनाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जलंधर से संदीप जटोलिया, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, बेंगलुरु जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, जलंधर से मीना कौर, मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा साहू, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और इनके साथ है राजेंद्र कटारे। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं समीर का लिखा हुआ गीत, संगीत जतिन ललित का है, फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या और आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौड़वाल की।

0: प्यार किया तो डरना क्या फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?

0: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल से शुरू होगा। प्रदेश से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग अब 24 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं। आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी दी और कहा कि पेपर लीक केवल सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं है, दलगत राजनीति का विषय नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित गौ सेवा संगम और गौ विज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रदेशव्यापी मेरा परिवार गौव्रती परिवार अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गौ विज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों के 1,64,000 से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की सहभागिता यह दर्शाती है कि नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों और प्रकृति संरक्षण के प्रति सजग हो रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल 22 जुलाई से शुरू होगा। 22 जुलाई से 5 अगस्त तक पात्र पालक आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। 10 अगस्त से 14 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी की जाएगी और 17 अगस्त से 25 अगस्त तक लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के 11 नगरीय निकायों में पिछले लगभग 10 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति और कई महीनों से लंबित वेतन के मामले में राहत देते हुए केंद्र सरकार और राज्य शहरी विकास अभिकरण को 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों को नया विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देते हुए कहा कि संबंधित सक्षम अधिकारी कानून के अनुरूप मेरिट के आधार पर उस पर विचार कर तर्कसंगत आदेश पारित करें। यह आदेश न्यायाधीश विभुदत्त गुरु की एकल पीठ ने अमित कुमार वर्मा सहित 11 कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मौजूद थे। प्रदेश से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 20 जुलाई थी। उन्होंने बताया कि हाजियों के चयन के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 30 जुलाई को कुर्राह का आयोजन किया जाएगा। कुर्राह में चयनित होने वाले हज आवेदकों द्वारा हज यात्रा की पहली किश्त की राशि 10 अगस्त तक जमा कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए रायपुर के बैरन बाजार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के दूरभाष नंबर 077

0: 1-4-2-6-6-6-4-6 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण कई नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। रायगढ़ में कल रात से हो रही बारिश के कारण केलो डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शहर के पैठू डबरी, चंद्रनगर की नामदेव गली और वार्ड नंबर 18 के कई घरों में भी घुटनों तक पानी भर गया है। जिला कलेक्टर ने स्वयं जलभराव क्षेत्र का दौरा किया और बचाव दल को आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में बिलारी कचंदा नाले का पानी बीते 15 दिनों में तीसरी बार पुल के ऊपर से बह रहा है। इसके कारण पुल पर आवागमन बंद कर दिया गया है। मौके पर DDRF की टीम तैनात है। आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में यह स्थिति अगले 4 दिनों तक बनी रहेगी।
1: पूरा प्रदेश में विस्तार रूप से वर्षा होने की चांसेस है। मुख्य रूप से बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में भारी वर्षा और अति भारी वर्षा होने के चांस है, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और रायपुर सहित आसपास सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ये भारी वर्षा का चेतावनी जो है आगामी 4 दिन तक होने के चांस है, लेकिन विस्तार रूप से वर्षा का इंटेंसिटी जो है आगामी 4 दिन में थोड़ा हल्का सा कमी होने की संभावना है।
0: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSR के सहयोग से 1 अगस्त से 30 सितंबर तक CAG ICSR रिसर्च आर्टिकल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऑडिट के नतीजों और सार्वजनिक वित्त से जुड़े मुद्दों पर आधारित अकादमिक रूप से ठोस नीति के लिए उपयोगी और मौलिक रिसर्च को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले की 5 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सुविधा शुरू की गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और किसानों की उपस्थिति में ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि ड्रोन की मदद से खाद और दवाओं का छिड़काव करने से समय के साथ मजदूरी की भी बचत की जा सकती है। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती करने की अपील की। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने कल रात दुर्ग स्थित राज्य के शिक्षा मंत्री के निवास के पास धरना दिया। इससे पहले इन शिक्षकों ने रैली निकाली। संविलियन की मांग कर रहे ये शिक्षक पिछले करीब 20 दिन से हड़ताल पर हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के भाटापारा हथबंद स्टेशन के बीच तीसरी लाइन सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए NI का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 23 और 24 जुलाई को रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और गेवरा रोड के बीच चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेंगी। वहीं 23 जुलाई को झारसुगुड़ा और गोंदिया से चलने वाली झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन तक चलेगी। इस बीच रेलवे के नॉन इंटरलॉकिंग NI और सिग्नलिंग कार्य के कारण 22 से 27 जुलाई तक रायपुर, बिलासपुर और हावड़ा रूट की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी जबकि कई का रूट बदला गया है। बिलासपुर जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में मुड़पार के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रॉली में सवार 19 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कल 22 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। बिलासपुर जिले के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक अंतरिम व्यवस्था के तहत डॉक्टर अजय कौशिक को जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। मुंगेली जिले के दाबो स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में अगले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। परीक्षा की तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के आलपरस गुमचूर गांव के बीच सुरक्षा बलों ने जंगल

पहाड़ी क्षेत्र से विस्फोटक सहित बीजीएल सेल, कॉडेक्स वायर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। दुर्ग जिले के उतई थाना पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। और गौरेला में जिला रोजगार केंद्र द्वारा कल 22 जुलाई को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर टिकर कला में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए तीसरा और अंतिम चरण कल से शुरू होगा। प्रदेश से हज यात्रा पर जाने के इच्छुक लोग अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई को स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आरएम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे 10:30 से 11 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता और कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के बीमारियों से बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई और 24 जुलाई को शाम 7:30 से 8:00 के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:00 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष और अंतिम भाग। इस अंतिम भाग का पहला गीत सुनना चाहते हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, माया कुमार। निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डिकेश वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परीख, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बागबहरा भदरसी से पनालाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन। फजिल का पंजाब से भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आरबी खेरा। पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री बुरांडे। खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामानी, ऐश्वर्या पैकरा। भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद, कौरव मंदुरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से सुरेश यादव, अनिता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया यादव। पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल चंदन। जलंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भरत और कमल साहनी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं केके और श्रेया घोषाल की आवाजों में सैयद कादरी का लिखा हुआ गीत। संगीत अनु मलिक का है और फिल्म का नाम है साया।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना के और श्रेया घोषाल की आवाजों में साया फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म का गीत। शैलेंद्र और कंचन की आवाजें हैं। गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत के लिए हमें ईमेल के माध्यम से फरमाइश भेजने वालों के नाम है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु, सोनाली नारंग। बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। भिलाई 3 चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून, जीशान, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना। जनकपुर से पिंटू दीवाना, रजेंद्र सिंह ओबेरॉय। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया। जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची प्रवीण। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा सिंह पाठक। धुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा। आइए सुनते हैं रफू चक्कर फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के। अगला और अंतिम गीत है फिल्म तेरे मेरे सपने से। आशा भोसले की आवाज है, नीरज ने इस गीत को लिखा है और संगीतकार है एसडी परमन। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं: रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना हर्षित खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना, हसन नाजिया और इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अल्तमश खत्री, अलकमा रमेश गौड़ और शादाब खत्री, लुतरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका, लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, रिंगिनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नवगढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन अपार ढिंगिया, लुतरा खमरिया से नकुल शाम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, तिवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, बुड़गहन से रामदुलाई प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांत प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया और साजिद शाहिद।

इस गीत को सुनना चाहते हैं नागर कोरा राजनगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति और टिकू मुस्कान, दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव, एस के पप्पी, रायपुर से विनोद बंडलकर, वीणा, विविधा बंडलकर और मुंताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला और ओम कुमार।

आशा भोसले की आवाज़ों में अभी हमने सुना तेरे मेरे सपने फिल्म का गीत, और इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं, वक्त है कार्यक्रम ग्राम सभा का।

ग्राम सभा कार्यक्रम के मयारो श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला राम सनी भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आज के समय हमर जीवन में बिजली और बिजली ले चलने वाला उपकरण मन के विशेष महत्ता हवे। बिजली के करंट ले बल्ब पंखा कूलर एसी फटफटी कार रोल गाड़ी सहित चारों जिनिस मन बिजली के करंट के उपयोग में चलत हवे। वही करंट में पानी गर्म होते और वही करंट ले पानी ठंडा हो जाते। तो आज के समय में बिजली की उपयोगिता ला देखते हुए गांव गांव के जमो गली मोहल्ला में घरों घर बिजली पहुंचाए बर बिजली खंभा गड़ियाए गए। संगवारी हो, अभी बरसात के समय में हो सकत है कोनो मेर के तार मन वो रम गए हो ही, तो और में हुए तार ले सावचेती बरत के दूरी बना के रहो। ऐसा समय में खंभा मन में करंट आए के संभावना रहती, तार वाले खंभा ले दूरी बना के रहो। नान्हे नान्हे छोटे छोटे लोग लिका मल्ला खंभा या खंभा के तीर तिकार में छन खिलाए ये बात के चेक करो। संगे संग बैला भैंसा या अपन कोई भी जानवर मल्ला बिजली के खंभा में झन बांधो। हमारे बहुत जिस संगवारी मन काय करते कि बिजली के खंभा में गेर वाला बांध दिए थे और वो गेरवा में अपन पशुधन मतलब बांध देन भैंसा ला भैंसी ला गाय बिला मतलब बांध देन। तो संगवारी हो, जिन खंभा में बिजली के तार लगे हुए है करंट लगे हुए है वो खंभा में अपन पशुधन मतलब मत बांधो, करंट के खतरा ले बच के रहो। कोनो मेर के तार मन टूट के गिर जा रहे थे, तो टूटे हुए तार ला

0: या कोई भी करंट ले संबंधित वस्तु मन ल छुए ले परहेज करो। बिजली संबंधित कोई भी परेशानी या समस्या के होय में बिजली ऑफिस में संपर्क करके सूचना देवाओ ताकि समस्या ले बचाव करे जा सके। जो समस्या है उसका निराकरण कर जा सके। संगवारी हो, घर में कपड़ा ओन्हा मन ल सुखोए बर हम तार या रस्सी बांधे रथन तो चेत करो कि तार या रस्सी में करंट तो नहीं आवे। कभू कभू का होते कि तार या रस्सी में करंट आ जा रहे थे, जिन तार में हम कपड़ा ओन्हा मन सुखोतन वो तार मन में करंट आ जा रहे थे, तो करंट के चपेट में आए के कारण अनहोनी हो के संभावना रहते। थोर कुन के लापरवाही हर जानलेवा साबित हो सकत हवे। तो संगवारी हो, सावचेती ही बचाव के उपाय हवे, तो सावचेती पूर्वक करंट के उपयोग कराओ। आव सुनथन ये संदेशा मन काय संदेश देवते इला आव चेत करके सुनथन।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगवारी हो, ये तो हम सुने संदेशा ला। और संगी हो, हमर देश कृषि प्रधान देश आए, भारत के जम्मो जगह में खेती किसानी के बूता हर होते। हमर आमदनी के प्रमुख साधन खेती किसानी ही आए। हमर देश के लगभग 12 आना संगवारी मन खेती किसानी लग करते, तभी तो कहे गए उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी भीख निदान। मतलब खेती ला सबले उत्तम माने गए, जिला हम आदि काल से खेती करत आवत हन। हम खेती के बूता ला जी जान लगा के चेत करके करथन। संगवारी हो, 3-4 दशक पहली खेत के मेड़ पार मा राहेर तिली के फसल मन राल के राल घन घन ले बुआए रहे, पांव रखे पर जगह नहीं रहे। जमो मेढ़ पार मन मा राहेर तिली मन बुआए रहे। कोनो भी मेढ़ पार हर परिया नहीं रिसे, हमर जमो किसान मन खेत मन मा बढ़िया ढेलवानी दे दे के राहेर तिली ले बोए रहे हो। लेकिन आज के समय मा जमो मेड़ पार मन परिया परे हवाई। किसान भाई मन सो पूछवे तो बताते कि मैं अकेला का कर सकत हूँ, अकेला थोड़े बुआ। तो संगवारी हो, सुमता बना के खेती करबो तो आज भी मेड़ पार मन परिया नहीं रहे। जरूरत है आज हम सब ला जुर मिल के एकता में रहे के। पहली गांव भर के मनखे मन एक जगह में सकला के सुमता बनावन, गांव की बंधेज की सुमता, गाय गरुवा की चरागन की सुमता, दलहनी तिलहनी फसल की सुमता, गांव के रखवार की सुमता, ताकि रुख राई मन हर झन कटे, रुख राई मन कोनो झन काटे। ये प्रकार के हम अनेक प्रकार की सुमता बनावन गांव में। ग्राम सभा की बैठक हुए, ग्राम सभा के बैठक में गांव के हित में आनी बानी के विचार आए, जिनला सुमता से सब हम सब स्वीकार करन। लेकिन आज हमर पशु धन मन ढिल्ला घूमत हवे, तो हम सब सुमता बनाइन कि अपन पशु धन ल बांधे बर। अभी के समय में हम सब छोटे छोटे किसान मन अपन खेत ल कांटा तार या जाली तार में घेराबंदी करना महंगा पड़ते। अगर हम चाहबो कि छोटे छोटे किसान मन की मैं पशु धन ले बचाए बर अपन खेत की घेराबंदी कर ले, तो एक छोटे किसान के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ते या हो सकते महंगा पड़ते। तो तीर तिखार के जो भी हमारे किसान भाई मन हावो, सब एक जगह हो के चकबंदी बना के ज्यादा जमीन के घेराबंदी करवो, तो कम लागत में ज्यादा जमीन के घेराबंदी हो जाए। और जोर मिल के घेराबंदी करवो तो हम सबके फसल के सुरक्षा गलव हो जाए और कोई एक आदमी के ऊपर भार गलव नहीं पड़ी। तो संगवारी हो, हम कोशिश करी कि चकबंदी बना के समूह बना करके अपन खेत के घेराबंदी करी और फसल की सुरक्षा करी। ठीक हुई प्रकार ले समूह बना के तालाब के ठेका ले लेवाओ और मछली पालन करो, सिंघाड़ा की खेती करो, कमल फूल की खेती करो। हम अगर समिति बना करके समूह बना करके ये सब काम करवो तो निश्चित है हमारे

उत्पादन या जुन प्रॉफिट है ओमा लाभ मिली। संगवारी हो, कोशिश करो कि जोर मिलके आधुनिक तकनीकी के उन्नत तकनीकी के कृषि उपकरण खरीदे बर आओ वो कृषि उपकरण के मशीन के उपयोग ला हम सब अपन अपन खेत में करी तो हम किराया भाड़ा ले भी बचाव कर सकत हन और समय में हमारे खेती किसानी खलव हो जाही। संगवारी हो, समय समय में हमारे खेती किसानी होवे करही। एकर अलावा हमार गांव बस्ती में कोई भी कृषि उपकरण के जो मशीन हवा ओकर किराया घलाव दे सकत हवन। जैसे कि आज के समय में हमार खेती किसानी में ड्रोन के विशेष महत्व हवे, जेला एक छोटे किसान ला खरीदना मुश्किल हो सकत है, असंभव हो सकत है या कठिनाई के सामना कर सकत करना पड़ सकत है। लेकिन एला हम अगर जुड़ मिल के वाणिज्य किसान मन जुड़ मिल के बिसाबो तो हमें कोनो प्रकार के कठिनाई के सामना नहीं हुई करना पड़ी। और अगर हम ड्रोन के मशीन ला बिसावत हन, जुड़ मिल के बिसावत हन, तो ड्रोन के उपयोग ला हम करबो तो समय के भी बचत होगी और सही समय में खेती किसानी घर पूरा हो जाएगी। ऐसा ना करबो तो एक किसान के ऊपर भार नहीं पड़े और सही समय में खेती किसानी के होय में उत्पादन में लाभ जरूर मिली। सामूहिक खेती कर ले जो बीजा भथा खातु माटी कीटनाशक दवाई ये सब मन ला हम थोक में बिसा सकत हवन। और जब हम ये जमो सामान वाला थोक में बिसाबो, थोक के भाव में बिसाबो तो हमन ला सामान मन सस्ता में मिली, जेकर ले हमार बहुत अगन रुपया के बचत हो सकत हवे। तो संगवारी हो, जुड़ मिल के खेती करो, सुमता बना के खेती करो, समूह बना के खेती करो और सामूहिक खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करो और चलो आगू बढ़े किसानवाड़ी कार्यक्रम में।

संगवारी हो, हम पहुंच गए अपन मयारू कार्यक्रम किसानवाणी में। किसानवाणी सुनिया जम्मू संगवारी मन के स्वागत है। राम सनी भैया के झोका और राम राम जय जोहार। संगवारी हो, आप मन बर लेके आए हन स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में। ग्राम कुदरी, विकास खंड बलौदा, जिला जांजगीर चांपा, यहाँ के किसान भाई मन के बीच में ध्वन्यांकित कार्यक्रम की प्रस्तुति हो ही। ये कार्यक्रम के संयोजन और प्रस्तुति हवाए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन करे है हमर पंचू भैया। तो आवाज सुनत हन स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में।

संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। किसानवाड़ी गांव के अंतर्गत आए दिन हमन दूर दराज गाँव जाथन, वहाँ किसान भाई मन के अनुभव ला आपन के बीच में परोसथन। उमन बताते कि कैसे अभी बेरा में खेती किसानी करके दोहरा से दोहरा आमदनी कमाते और सुघर ढंग से घर परिवार चलाते। साथ ही साथ संगवारी हो, आप मन ला हमन आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर गति ले गाँव के विकास के तहत जो सकेले जानकारी ला अपन के बीच में परोसथन। बताते वहाँ के सरपंच मन कैसे का योजना हमारे सरकार गति ले, कैसे गाँव के आखिरी मैं बसे मनखे मन करा सरकार की योजना ला पहुंचा के गांव के विकास गंगा बरोबर बोहाते। आज कहीं न कहीं हम देखी तो गांव के विकास में कहीं न कहीं हमारे जो गांव के सरपंच रहते हैं वो सबसे बड़ी उनकर भूमिका माने जाते हैं। और एक बात तो अव की बसंगवारी हो कि अगर कोनो गांव में महिला सरपंच अगर रह गए तो चारों कति गाँव के विकास होबेज करते हैं। काबर की महिला मन ये नहीं चाहे कि हमारे गाँव के विकास मत हो, महिला मन यही चाहते कि जितके ज़्यादा होए हमारे गांव के हम सेवा करी, गांव के हमन विकास करी, ताकि हमारे गांव ला जिला के संगे संग हमारे राज्य में लोगन मन जाने। और देखा संगवारी हो, गोड़ बात करत करत बिलासपुर ले हमन आगन जानकी चांपा।

0: विकास खंड बलौदा। और गांव है संगवारी हो बड़ सुघर कस नंदिया तीर में बसे हवा छोटे से गांव ग्राम पंचायत कुदरी। और यहाँ हमारे संगवारी मन पूरा जुराए हवाए बैठे हवाए, जब किसान भाई मन भी है, सरपंच है और गांव के मनखे मन घलो यहाँ बैठ के अच्छे से सुघर ढंग से ग्राम सभा चौपाल लगा के गांव के विकास के बारे में गोड़बात करत है। तो संगवारी हो सबसे पहली सब जन करा जोहार पलगी करी। ग्राम पंचायत कुदरी के सबो किसान भाई पंचो भाई के राम राम,
1: जय जोहार।
0: सुना संगवारी हो कतेक सुघर ढंग से यहाँ के हमारे जो सरपंच है, गांव के मनखे है, गांव के सियान है और छोटे छोटे लड़का मन घलो आए जिन पढ़ाई लिखाई करते स्कूल में, वह मन बैठे हवा देखा थे हमारे कतिला कि हम उनका गोड़बात करी का की के। तो लड़का हो तू मन कर गोड़बात करबो, पहले गांव की मुखिया हमारे दीदी करा गोड़बात करा था। दीदी राम राम।
2: राम राम, जय जोहार।
0: अब बहुत अच्छा लगता है कि कोनो गांव जाथन और गांव के महिला मन ला देखथन छोटे से घर ले निकल के आज गांव के पूरा जिम्मेदारी ला निभाते।
2: मैं बबली यादव सरपंच, जय जोहार संगवारी हो, गांव के सबो भाई बहनी ला मोर राम राम।
0: जैसे गांव के बात करी हमन,
2: गांव के विकास पर मनरेगा काम करवाए हैं, तालाब के गहरीकरण पर काम करवाए हैं, विधवा पेंशन दिलाए हैं, गोदाम बना थे।
0: संगवारी जी से बात करबो तो आज कहीं कहीं मुख्य धारा में लाए बार पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम करत हवा। आज हमारे बीच में जांजगीर चांपा के पुलिस अधीक्षक हवा उनकर कर गोड़ बात करत हैं। सर राम राम।
3: राम राम जी, राम राम राम।
0: या पाछू बच्छर के बात करी तो अपन रायगढ़ जिला लेके गए रहा गेंदा फूल देखे बार, का सार्थक रूप देखे मिलत है हमारे जांजगीर चांपा में, एला बताता आप।
3: देखिए हमारे जांजगीर चांपा जिला जो है वो प्रकृति के एक बहुत अनमोल उपहार मिले है। हमारे यहाँ बहुत चाचा तीन तीन चाचा नदी हावे, सिंचित क्षेत्र हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है और मिट्टी हमारे यहाँ बहुत उपजाऊ है। अच्छा। लेकिन एक साथ ही हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, जो लड़का मन है, जो नौजवान लड़का मन है वो काम धाम के अभाव में नशा की ओर जाते है ना, क्राइम की ओर जाते तो वो मल्ला काम देहे पर। अच्छा। है ना, मल्ला खाली मत बैठे ये करे पर हमन स्वरोजगार की तरफ जोड़ना चाहते हैं मल्ला कि कुछ ना कुछ स्वरोजगार करे। अच्छा। तो स्वरोजगार में सबसे पहले धरती माता आते है ना, धरती माता तो तैयार है भाई, मोला उपयोग करो, मोला बीज बो, बोला मेहनत करो तो मैं उत्पादन देहूँ। तो ओकर बर जो केवीके हमारे यहाँ है कृषि विज्ञान केंद्र, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अच्छा। केवीके के डॉक्टर महंत ओकर पूरा टीम है, पिछले साल से पुलिस विभाग इनसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और पिछले साल गेंदा के क्षेत्र में हमन काम करें, गेंदा में रायगढ़ में जो गेंदा बाबा है ओला बुलायन ओकर यहाँ भी गेन और गेंदा की खेती बड़े क्षेत्र में यहाँ लड़का लड़का मन करी ने इधारी बरसात चालू हो इसे के समय पैरा पुटू भर एक तीन दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हमारे यहाँ केवी के जांजगीर चांपा में शुरू होते थे। ओकर बर हमन यहाँ के सामाजिक संगठन के जो लड़का मन है, युवा युवा रोजगार युवा नौजवान मन जिमन गांव गांव जाके लोगों मन से संपर्क करते प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु के काम कर रहे थे हमन।
0: अच्छा, अच्छा।
3: है ना, तो सामाजिक संगठन के लोग हमारे यहाँ आवे, हमारे यहाँ सबरिया डेरा के लड़का मन यहाँ आए हैं जिनमें शराब बनाते रहे नहीं, अब शराब बनाना छोड़ दे हैं, मुख्य धारा में आ गए हैं, सब्जी बाड़ी सब्जी खेती करते हैं, फिनाइल डिटर्जेंट बनाते हैं, मानिकपुर समाज के रमशीला मैडम घलाव आए हैं है ना, जे घरेलू उत्पाद बना के बेचते हैं पुलिस कंटेन घलाव में ये उत्पाद जाते। तो पैरा पुटू के शुरुआत एक बरसात सीजन में हो थे, ओकर बर हमने तीन दिन के प्रोग्राम चालू करे हैं डॉक्टर महंत के वीके है।
0: अच्छा,
3: ओके, उद्घाटन सत्र में मैं आए हूँ और मैं आई उम्मीद करत हूँ पूरा यहाँ के जांजगीर चांपा जिले के नौजवान मन से जेमन काम करना चाहते, काम की कोई कमी नहीं है, ये मेरा लोन चाहिए, अगर लोन नहीं सके तो कोई भी जो सहायता चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, कलेक्टर साहब से बात करके या CSR माँ DMF माँ है ना, और बहुत सामाजिक संगठन के आदमी है जिमन तैयार है कि युवा मल्ला जो बेरोजगार है उमन कोई काम करे और कुल मिला के नशा से और क्राइम से दूर हो ताकि जिले में शांति व्यवस्था और अच्छे से बहाल हो सके।
0: जांजगीर जिला के बात करो तो सबसे बड़ी अभी चुनौती की बात यह है कि फसल कटे के बाद हमारे किसान भाई मन का करते बाहरी प्रदेश कमाए खाल चले जाते हैं, इसमें सबसे बड़े नुकसान होते लोग लेकर मन के पढ़ाई छूट जाते हैं, वो मल्ला कौन प्रकार से आप संदेश देना चाहता कि अपन जो बाहरी प्रदेश कमाए खा जाता वो हमन छोड़ के गाँव में ही अपन काम बुता करी, लोग लेकर पढ़ाई लिखाई करी, संगे संग सरकार के लिए जो योजना हुआ थे ओकर से भी वंचित हुआ थे।
3: हाँ, ये बात तो सही है कि माइग्रेशन या पलायन जो है हमारे जिला की एक प्रमुख समस्या है। कावर की खेती बाड़ी के सीजन में तो रहते हैं मन, लेकिन ओकर तुरंत बाद अक्टूबर नवंबर में दिसंबर के आता आते मन फसल बेच के अपन कमाए खाए बाहर चल देते हैं। तो जबकि हमारे यहाँ तीन तीन फसल है।
0: अच्छा,
3: तो वो फसल के भी जो जमीन परती पड़े रहते ओकर उपयोग करना चाहिए। का होते कि थोड़ा चमक धमक के लालच में यहाँ के लोग चल देते हैं, ज़्यादा मतलब लाभ नहीं हो। मैं देखता हूँ ईटा भट्टा में काम करे लोग चल देते हैं यहाँ से और दूसरा गुजरात चल रहे थे, यूपी चल

0: देते तो मतलब ज्यादा लाभ नहीं, मतलब लगते कि मतलब ज्यादा लाभ होते है ना, 600-700 रुपए दिहाड़ी मतलब मिलते, लेकिन वो मन यहाँ रह के यदि काम करी तो यहाँ भी काम की कमी नहीं है। थोड़ा जागरूकता जगाए के बुरा बुरा लगते कि जागरूकता करना चाहिए हमला। अभी खेती किसान खेती सीजन में हमन कोशिश करबो कि हमन के जो गांव के जो सुरक्षा समिति होते, हमन हर गांव में सुरक्षा समिति बनाए हैं है ना, महिला कमांडो बनाए हैं है ना, सड़क सुरक्षा मितान बनाए हैं, इमन के द्वारा जो अभी घर वापस आ गए हैं खेती बाड़ी करेगा उमन ला 3-4 महीना में हमन समझाए का प्रयास करबो कि एक बाद उमन का कर सकते हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से भी अनुरोध करूँ कि जब जमीन खाली हो जाए तब उमन और का फसल ले सके थे, गेंदा जैसे अभी से गेंदा की जैसे तैयारी करी उमन तो ठंड में बढ़िया गेंदा होते,
1: दीपावली दशहरा पाबो की
0: दिवाली, हाँ दिवाली दशहरा में नवरात्रि ये सब त्योहार ला पाबो गेंदा मतलब बिखी तो हम ला। और हमारे कलेक्टर साहब भी कोशिश करते कि फसल चक्र अपनाई, फसल चक्र हम नहीं अपना ना, फसल चक्र अपनाबो तो धरती की उर्वरता शक्ति बने रही, हम धाने धान लेबो तो उर्वरक शक्ति कम हो जाए घटा जाए, तो फसल चक्र भी हमारे जो जिला प्रशासन बढ़ावा देते कि धान के बाद कोई और फसल लगाओ। अभी जैसे पाम की खेती मतलब ध्यान आते पिछले साल पाम की खेती के शिविर यहाँ हो रही से, तब पाम की खेती है गेंदा की फसल है ये सब तरफ हम जा सकते हैं। और आप अच्छा याद दिलाए हमला कि हल्दी वगैरह जैसे डॉक्टर महन बताते, अभी हम कोशिश करबो कि अब अल्टरनेट फसल का उगा सकते हैं ओकर बारे में कार्यशाला, एक डॉक्टर महन से अनुरोध करूँ एक कार्यशाला हम जल्दी करबो कि धान के बाद धान के अलावा हम का फसल ले सकते हैं है ना। ठीक,
1: अभी आप आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर सुनत हवे, वो श्रोता संगवारी किसान भाई मल्ला का संदेश देना चाहता आप पुलिस प्रशासन के लिए?
0: देखिए पुलिस प्रशासन बिना जनता के आगे नहीं बढ़ सके, जनता हमारा आंख नाक कान होते और जनता जितका हमारे से जुड़ी उतका हमारे पुलिसिंग आसान बनते हैं। तब मैं उमन से अनुरोध करूं कि अपन खाली कोई मत बैठे, जो लड़का मल्ला है मतलब पढ़ाए लिखाए जितका पढ़ा सकते पढ़ाए है ना, और यदि मान लो पढ़े में और इच्छा नहीं होते तो स्किल डेवलपमेंट कराए है ना, को बहुत सारे कार्य कुशलता की योजना है सरकार के, कंप्यूटर सीखे ड्राइविंग सीखे है ना, कुछ ना कुछ सीखे हुआ है ना, और सीख के जो है नशा से दूर रहे। सोशल मीडिया आजकल हमारे एक बहुत बड़े वो हो गए है ना, लड़का मन मोबाइल चलाते रहते दिन भर है ना, और माँ उल्टा सीधा सामग्री आते दिमाग ला खराब करते अपन, वो सब ना करे व्यस्त रहे। जितका हमारे लड़का नौजवान व्यस्त रही उतका हमारे जो घरेलू उत्पाद है वो भी बढ़ी, उत्पादन शक्ति भी बढ़ी हमारे है कि नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे नौकरी के पीछे का बहुत भाग था है ना, जबकि हम देखो जैसे अमेरिका यूरोप जैसे जो विकसित राष्ट्र है ना, यहाँ स्वउद्यमी स्वरोजगार के माध्यम, जैसे मैं अंशु यादव जो हमारे साथ खड़े हैं, आप जरूर एक भी इंटरव्यू लिया, ये मैं नौजवान से मैं बहुत प्रभावित हूँ, ये अपन बेकरी के बिजनेस चलाते हैं, इला बहुत दिक्कत भी आते तब बोले बेकरी के बिजनेस में कर पूरा ये पूरा परिवार एक वो है और अपन एक शहर में भी ये खोले है, तो ऐसे नौजवानों की हमें जरूरत है जो अपन खुद के रोजगार चालू करके 3-4 जन और रोजगार दे, कम से कम अपना तो करे ही 3-4 जन और रोजगार दे ऐसा की स्थिति में हो, ऐसे कम से कम होना चाहिए ये मोर उम्मीद सबसे आवे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, राम राम जय जोहार।
0: ठीक है
1: संगवारी हो, आज किसानवाड़ी गांव के अंतर्गत छापा में आए हन, अब यहाँ देखा था तो दूर दराज ले हमारे किसान भाई मन घलो आए हवे, खरीफ फसल के हमारे किसान भाई मन तैयारी लग चुके हवे और कतुक किसान भाई मन अभी भी तैयारी में लगे हवे, और यहाँ विशेषज्ञ मन घलो आए कृषि विभाग के बीज निगम के कृषि विज्ञान केंद्र के घलो अधिकारी मन हवे। खेती किसानी में बात करबो संगवारी हो तो कहीं ना कहीं हमारे जो बीज निगम हवे सबसे बड़का भूमिका निभाते, आज हमारे बीच में बीज निगम के अधिकारी बैठे हवे, अब उनकर करा गोड़ बात करत हन। दीदी राम राम।
2: राम राम भैया, जय जोहार संगवारी मन, मैं बीज निगम ले नम्रता तिवारी बोलत हूँ। हमन के बीज निगम बीज प्रक्रिया केंद्र खोखसा द्वारा जिला जांजगीर और जिला शक्ति के किसान भाई बन बर पूरा समिति में बीज भंडारण करे जाते, मोला आप मन ला बताए में खुशी होते कि बीज निगम बीज प्रक्रिया केंद्र खोखसा द्वारा जिला जांजगीर चापा में लगभग 22,000 क्विंटल और जिला शक्ति में लगभग 24,000 क्विंटल धान के समिति में भंडारण करे जा चुके है, जेमा स्वर्णा स्वर्णा सबवन MTO 13-18 और अब बारिश देरी से होते तो जल्दी पके वाला 11-56 और विक्रम TCR आदि के बीच समिति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जे किसान भाई मन ला आवश्यकता हो ही ओमन अपन संबंधित समिति से बीज ला प्राप्त कर सकते है। एकर अलावा अगर कोनो किसान भाईला अर्ली ड्यूरेशन अथवा जल्दी पकने वाली वैरायटी जैसे विक्रम टीसीआर

0: इत्यादि के जरूरत हुई तो हमर बीज प्रक्रिया केंद्र खोकसा जिला जांजगीर चापा से बीज ला प्राप्त करके अपन खेती बाड़ी ला कर सकत है। बढ़िया से फसल अगावा और बीज के संबंध में कुछ भी रही तो हमसे चर्चा कर सकत है।
1: गांव के विकास के बात करें तो अभी कतेकन गांव में आपके पंजीकृत मजदूर हवा एला बताता।
2: हमारे ग्राम पंचायत कुधरी में 427 पंजीकृत मजदूर है, जेमा से 280 मजदूर काम में चलने जात रही से। हमर गांव कुधरी पंचायत में मजदूर मन बर तालाब गहरीकरण के कार्य करवा हैं और नहर के भी काम हुए हैं। साथ ही साथ हमर गांव के आवास में सब मजदूर मन काम करे है। हम ये चाहतन कि हमर अंतिम गांव के अंतिम छोर तक गांव के विकास और गांव के खुद की आर्थिक स्थिति बढ़िया सुधर जाए, यही हमन के बहुत प्रयास है।
1: वर्षा जल संरक्षण के अंतर्गत तो एक बारे में थोड़ा बताता कि कौन प्रकार से आप बरसाती पानी ला रोके के प्रयास करा था।
2: कुदरी घुटिया दोनों एक पंचायत है, हर एक ठा घर में सोखता गड्ढा के हमन घरों घर बनवा हन और साथ ही साथ हमारे जितका भवन में है सब रिचार्ज फीड सब बोरिंग नल में सब करवा जात हन कि आगे चल के हमारे गांव में पानी की तकलीफ और समस्या मत हो, एक ही चीज हम ज्यादा प्रयास रहते हैं।
1: सरसों ये बात करते कि हमारे जो फसल रहते किसान भाई मन के अभी खरीफ के सीजन चला था, अभी एक बेरम तो पानी कांजी गिरते तो हमारे फसल अच्छे से हो जाते हैं। आखिरी बेरम जब हमारे 2-3 पानी की आवश्यकता होते तो पानी की कमी होते हैं, तो ओकर बार आपन कौन प्रकार से काम उतर करा था एला बताता।
2: खेती किसानी में हमारे साधन है तो एक लिए हमारे गाँव में नहर के साफ सफाई कराए हैं और साथ ही एक तालाब ऐसे 3 तालाब अपन यहाँ काम चली सभी, एक तालाब में ओकर गहरीकरण करवाए हैं जेकर से ना पानी लास्ट समय में पानी की आवश्यकता पड़ते ना तो ओकर लिए अच्छा अच्छा सुविधा है कि लास्ट अंतिम समय में जो पानी की जरूरत पड़ते ना तो तालाब फोड़ के ही ना निकाल पानी पलो जाते हैं खेत में।
1: अभी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दे जाता है, अभी नवा सूची जारी करे हवे तो आपके गांव की मतलब कतेक नवा सूची के अंतर्गत मतलब प्राथमिकता मिली हवे ये बताता।
2: नया अभी 2.0 में हमारे गांव के प्राय प्राय तो बहुत जन के हवे सबे के हो गए, इसे ऐसे छूटे नहीं है, 1-2 जन के छूटे जो बाहर चल रही से 1-2 आदमी सर्वे नहीं करा पा रही से 296 मतलब 2.0 में हमन के सर्वे हुए हैं जेमा 12 अपात्र मिले हैं और 284 पात्र है हमारे यहाँ। हमारे ग्राम पंचायत कुधरी में 296 2.0 में आवास लिस्ट में सर्वे है जेमा 12 अपात्र हो है जेमा के एक आदमी मृत्यु हो गए है, 6 आदमी डबल 2 आदमी डबल है और 6 आदमी पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं।
1: बहुत अच्छा लगी से कि आपन सरकार के लिए आए योजना के माध्यम से गांव के विकास ला करा था और सबसे बड़े प्राथमिकता है कि आप गांव में गांव के लोगन मतलब गांव में ही रोजगार देवा था, एक से जो बाहरी कमा खाए जात रही से ओला रुका था। अब यह बेर हम फिर आप नवा विषय में चर्चा करबो, इतका बढ़िया जानकारी बताए एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: राम राम।
3: राम राम।
1: का नाम है आपके?
3: मोर राम खिलावन यादव, कुदरी के रहिया हूँ।
1: अभी खरीफ सीजन के हमारे किसान भाई मन के खेती के सनी बूता काम चलत हवा, का बूता काम चलत हवा एला बताता आप।
3: अभी तो धाने बोवाई चलत है, अब झक्कर पानी बने हो गिर दे थे तो अभी फसल बोई में थोड़ा सा परेशानी होते थे। हमार कुदरी गुठिया जो गांव है वो रेतीला गांव है।
1: अच्छा।
3: हाँ तो खुर्रा बोथन वही में बनते लहरा लगात नहीं बने।
1: हाँ जिसे बात करी अभी भारत सरकार द्वारा अच्छा कार्यक्रम चलाए जाते हैं, अच्छा कार्यक्रम चला जाते कि प्राकृतिक खेती जैविक खेती ले हमारे अपने ही के काबर की अगर प्राकृतिक खेती अपनावा था तो हमारे माटी की उपजाऊ क्षमता बढ़ते। तो आपके गांव में देखिए तो लगभग पूरा किसान परिवार ही रहते हैं, तो प्राकृतिक खेती जैविक खेती कौन प्रकार के माध्यम से आपके गाँव में जुड़त जाते एला बताता आप।
3: एकर लिए प्रचार प्रसार की और जरूरत है काबर की जोड़े की कोशिश करा था, पर पहली मैं आप लोग बताएं कि हमारे यहाँ की जो जमीन है और रेतीला जमीन है एवं जो जैविक खेती है एकर थोड़ा से असर होते, कन्हार माटी चाहिए तो हमारे गांव में कन्हार वाला माटी रेतीला जमीन है, फिर भी रेतीला जमीन है फिर भी जैविक जैसे कि मूंगफली है और हल्दी है ये सब हो सकत है, लेकिन एकर लिए किसान मल्ला थोड़ा आगे आए पढ़ी प्रोत्साहित कर पढ़ी कहा कि हमार जो कुदरी गुठिया है गाँव है वहाँ अक्सर एक ही फसल धान बस लबो थे, हाँ बाकी समय जमीन खाली रहते तो एक लिए थोड़ा से प्रोत्साहित जैसे कि एक झीन ल देख के एक झीन और बढ़ते वो हो नहीं पा।

0: किसान भी छोटे छोटे हैं, किसान छोटे तो गांव है, एक ही जगह किसान की जमीन नहीं है, जैसे कि एक ही जगह 4-5 एकड़ रहती तो घेरवा के हल्दी लगवा देतीस, मूँगफली लगवा देतीस, तो टुकड़ा टुकड़ा में जमीन है, तो एक से थोड़ा से एकर जैविक खेती में समस्या आते, लेकिन भविष्य में ला हमन सुधारे की कोशिश करबो, जैविक खेती अपना चालू करबो।
1: अभी के समय में देखिए तो बरसाती के दिन चला था, बरसात के दिन में अधिकतर हमारे किसान भाई मन का करते कि जितका भी हमारे का टिकरा है भाटा भुइया जमीन हवा वो में वृक्षारोपण हमन करत हवन। आपके गांव भी अच्छा मुहिम चले रही हवा पिछले बार इला सुने रहें तो बताता कते कन भुइया में अपन के गाँव में गाँव के सरपंच के माध्यम से वृक्षारोपण के काम बुदा करे रही हवा।
0: 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस के दिन में पौधा लगाए रहन, लगभग 400 पौधा लगवाए रहन। एक किसान होए के नाते मैं बोलना चाहता हूँ कि हमन छत्तीसगढ़ के आदमी हैं, विश्व पर्यावरण दिवस ल न मना के सावन में कोई ऐसे दिन मनाए जेमा पौधा लगाया जाए। अब की देखा जून है ऐसा समय है जेमा नवतप्पा रहते, भीषण गर्मी रहते, उस समय पौधा लगाते हैं तो बहुत नुकसान होते, बहुत मेहनत करे पड़ते। तो जैसे अभी अषाढ़ में सावन में पौधा लगाबो तो एम कम मेहनत करे पड़ते, 3 महीना 4 महीना भी पानी पाही तो पौधा ऐसे भी सिंचित हो जाते, बड़े हो जाते। बस अभी हमला कांटा टल घेर के जानवर है, गाय है हमर, एकर से बचाए पड़ते। तो अभी हमन गुठिया के स्कूल, कुदरी के स्कूल 100 पेड़ लगाए के हमन के चलत हवा, ओला पूरा घेरे के भी व्यवस्था करत हन, बांस कांटे हन तार में घेर के ओला लगवाबो अभी।
2: राम राम।
1: का नाम है आपके?
2: खेमराज बंजारे।
1: अभी आप छोटे उम्र के लगत हवा, मतलब कही तो युवा किसान, आज कहीं कहीं हमारे किसान भाई मन खास करके हमारे जो युवा संगवारी हवा पढ़ाई लिखाई करे के बाद का करते कि सरकारी नौकरी के पीछू भागते। हम ये नहीं कहते कि आप सरकारी नौकरी के पीछू मत भागिए, लेकिन आपन का नवा संदेश दे हमारे युवा संगवारी मन जीवन सरकारी नौकरी के पीछे अपन जीवन ला त्याग देते।
2: मोर फादर है ना, पहले धान के खेती करत रहीस है, धान के खेती के बाद वो विचार जमीस कि महू सब्जी के खेती करते हैं, फिर वो अपन 4-5 साल सब्जी के खेती में टाइम लदीस, वही ला सीख के और ओकरे मुनाफा ला देख के मैं आज सब्जी खेती करना स्टार्ट करे हूँ। और कहीं ना कहीं कि जल के स्तर है ना नीचे जाते, जेकर कारण ना हमला ड्रिप पद्धति के माध्यम से उद्यान विभाग से जानकारी मिली, तब ड्रिप लगाए के बाद हमन बागवानी फसल लगात हवन। अब और ये बागवानी फसल लगाए के ये उद्देश्य ये भी है कि अपन ला पानी ला बचाना भी है और कहीं ना कहीं कम लागत में ज़्यादा मुनाफा लाना भी है। उद्यान विभाग भी बहुत जानकारी ये भी देते कि किसान मन कुशल रहे, समृद्ध रहे, जेकर कारण ना हमने ये फसल अपना।
1: बहुत अच्छा जानकारी बताए कर बहुत धन्यवाद। राम राम। जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: संगवारी हो, सीजन चला था खरीफ फसल के हमारे खेती किसानी के, अभी के बेरा हम देखी तो पानी सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्व हवा है, काबर की अपन जानते हवा कि ऐसे बेरा में हमारा पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होते जब फसल ह पगे के कगार में रहते तब। तो आज कहीं ना कहीं हमन देखी वर्षा जल ला कौन प्रकार से बचाई और अभी के बेरा में का किस्म के धान ला अपनाई जब हमारा कम पानी में हमन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकत। तो आवासंगवारी हो गोड़ बात करी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर KD महंत करा। सर जी राम राम। जय जोहार।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर खेमादास महंत, मैं कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में काम करता हूँ। अभी जो किसान भाई माला जो समस्या है कि भविष्य ला कैसे हमन पानी से के समस्या से कैसे बचाबो, ओकर बर हमला थोड़ा सा सावधानी से खेती ला करे बर लगी, छोटे छोटे हमला ऐसे पद्धति ला अपनाए बर लगी, खेती के तरीका, किस्म के चयन, कौन से पद्धति, कौन से बुआई के पद्धति, खाद प्रबंधन, ओकर बारे में हमला विशेष रूप से समय समय पे ध्यान देना चाहिए। जैसे जे क्षेत्र में ज्यादा पानी गिरत है वो क्षेत्र में हमला लंबा समय तक हमर खेत ला कैसे ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल ला हमन बचा के लंबा समय तक खेती में उपयोग करबो, ओकर अनुसार हमला पद्धति अपनाए बर पड़ी। जैसे अभी जिन तरफ अच्छा पानी गिरत है किसान भाई मल्ला बिल्कुल हरी खाद के जो जे मना अगर बुआई करे हुई आपन मतलब बिल्कुल मचाई करके अच्छा से मेड़बंदी करके पानी ला संरक्षित करके रखना है। कुछ ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी हर व्यर्थ जाते ओला गड्ढा नुमा आकार बना के मेड़बंदी करके डबरी बना के पानी ला हमन ला वर्षा जल ला बचाए बर पड़ी, ताकि हमन जब जरूरत पड़ी जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में हमन उपयोग कर सकथन। लेही या रोपाई के बिल्कुल सही समय है और किसान भाई माला चाहिए कि पानी के उपलब्धता ला देखते हुए अभी बिल्कुल आप समय ला ना गवावा, आप रोपाई या जो भी लेही विधि से अपन धान के बुआई करा था बिल्कुल कर लेवा। जैन क्षेत्र में धान

0: खेती करत है और पानी की कमी है वो क्षेत्र में अभी भी किसान भाई वाला मैं सलाह दहा कि DSR पद्धति जो सीड ड्रिल के माध्यम से बहुत अच्छा कतार बोनी में बुआई होते ओकर आप बिल्कुल प्रयोग करो में नमी के भी बचत होते। खरपतवार प्रबंधन थोड़ा सा कर दिया तो उपज में भी कोई अंतर नहीं है, आपके नमी के जो उपस्थित नमी है ओकर अच्छा उपयोग हो जाते और आपके खर्च भी बच जाते हैं। और खासकर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कम पानी गिरा थे वो क्षेत्र में आप मल्ला कम अवधि के ऐसे फसल के चयन करे वाला ही जहाँ कम पानी चाहिए रथे वाला और कम पानी की आवश्यकता रथे और आप मन कम प्रबंधन में भी और अच्छा उपज और आप फायदा दे देते हैं। छोटे छोटे दिन के फसल आप मल्ला चयन करे वाला ही एक बार फसल पद्धति फसल चयन फसल के अवधि ये सब लापला समझते हुए हमला फसल पद्धति में ज्यादा से ज्यादा अपनाए बल लगी। हमला देखना पर ये भी है कि जो भी जिस क्षेत्र में ज्यादा पानी है वहाँ रीज बेच के माध्यम से जैसे आप दलहनी फसल में भी अरहर लगा था जहाँ पे पानी की ज्यादा है उपलब्धता है वहाँ पे रीज बेड बना के आप मन कोई भी फसल के अगर बुआई करिया रोपाई करिया तो पानी आपन की फसल प्रभावित नहीं करे और रीज बेड बनाया तो एक तरह से अच्छा वो अवसर भी मिल जाते हैं जड़ला भी अच्छा ग्रोथ करे के अवसर भी मिल जाते हैं। और अभी सही अवसर भी है कि जैन क्षेत्र में पानी की कमी है और क्षेत्र में कम अवधि के कोई भी फसल के आप चयन करा सब्जी के चयन करा उकर आधार पे ही हमला फसल पद्धति में समय समय पे जो भी हमार फसल अवशेष है चाहे हल्दी है चाहे अदरक है जिमीकंद है या कोई भी ऐसे कंद वर्गीय फसल है वो में हमन मेड़ में फसल अवशेष ले एक अवशेष के रूप में हमन उपयोग कर सकत हन जो हमारा अधिक समय तक हमार नमी ले संरक्षित करे के हमला बाद में कुछ दिन बाद जैविक कार्बन के रूप में एक फसल अवघटन के रूप में हमला वहाँ प्रदान करिए। ये छोटे छोटे हमला बात है जो समय पे किसान भाई मतलब ध्यान रखे की जरूरत है और अभी विशेष जरूरी ये है कि हमला जो अभी नया नया सिंचाई के जो तकनीक है तकनीक हमला सीखे के अपनाए के बेरा आगे है जैसे तो ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सब्जी उत्पादन है कोई भी फल उद्यान में आप ड्रिप के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग टपक सिंचाई जो होते बोलते हैं ओकर हिसाब से हम सिंचाई के प्रयोग करबो तो हमला आने वाला समय में जल के सही महत्व पता चली और हमला कोई भी उत्पादन में कोई प्रकार के नुकसान भी नहीं हो। ये किसान भाई मल्ला जल वर्षा जल संरक्षित करे बर भविष्य ला हमला और अधिक सिंचाई ले उपयोग करे बर हमारे पानी के महत्व ला बढ़ाए बर समय समय पे जागरूकता कार्यक्रम किसान भाई मल्ला हमन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से समाचार पत्र के माध्यम से जो भी विशेषज्ञ मन अपन से सलाह मशवरा करते हैं वो विशेष सलाह मशवरा ला अपन अपनाते हुए अपन खेती ला आगे बढ़ाना है और आने वाले फसल में कैसे तैयारी करना है ओकर बर भी संरक्षित जल के आपला ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे बर ये छोटा छोटा तकनीक ला अपनाए बर पड़ी। जय हिंद जय जोहार।
1: संगवारी हो ए तो रही से आज के किसान वड़ी गांव में आज हम आ रहे हैं ग्राम पंचायत कुदरी विकासखंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। फिर संगवारी हो वैया बेरा में फिर नवा गांव जाबो नवा गांव में वहाँ के अनुभव वहाँ के प्रगतिशील किसान भाई मन के अनुभव लो आपन के बीच में परोसबो तो यही कार्यक्रम के संग पंचू भैलो देव विदा। जय जोहार।
2: संगवारी हो अभी हम सुनें स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में गांव रिसे कुदरी विकास खंड बलौदा जिला जांजगीर चांपा यहां कृषक मन के बीच में ध्वनियांकन कार्यक्रम कार्यक्रम के संयोजन प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और कार्यक्रम के संपादन रिकॉर्डिंग अमर पंचु भैया। अब आओ सुनतनी है संदेशाला।
3: अरे सुन तो
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है।
4: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो एकर संगे संग मा आज के कार्यक्रम में विदा लेहेक बेरा हुआ थे अपन भाई राम सनेहिल देवो विदा। राम राम, जय जोहार।

प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संसद समीक्षा।

बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय ये अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को

0: भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने

के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है।

ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रूपये का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 23 जुलाई को स्टूडियो में पशु चिकित्सा सेवाएं मुंगेली के संयुक्त संचालक डॉक्टर आर एम त्रिपाठी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा वर्षा ऋतु में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं उनके बचाव, और सुबह 11:00 से 11:30 तक का विषय होगा वर्षा ऋतु में कुत्तों में होने वाली आक्रामकता या कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज की बीमारियों से

बचाव के उपाय। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665923100026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 23 जुलाई और 24 जुलाई को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

श्रोताओं, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने तकरीबन 4 दशकों तक अपनी लेखनी से भारतीय सिनेमा को सींचा है। एक ऐसे गीतकार जिसने कभी फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहदों की हिफाजत की, तो कभी अपने लफ्जों से करोड़ों दिलों की धड़कनों को बयां किया। आज हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की।

21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्मे आनंद बख्शी साहब को बचपन से ही फिल्मों और गानों का शौक था, लेकिन तकदीर उन्हें पहले रॉयल इंडियन नेवी और फिर भारतीय सेना में ले गई। पर कहते हैं ना कि जिसके दिल में पैगाम में मोहब्बत हो, वो बंदूकों के साए में ज्यादा दिन नहीं रह सकता।

बख्शी साहब जेब में कुछ ख्वाब और आंखों में ढेर सारी उम्मीदें लेकर माया नगरी मुंबई आ गए। शुरुआत बेहद संघर्षपूर्ण थी। कई दिनों तक लोकल ट्रेनों में सफर किया, कभी भूखे सोए तो कभी सिर्फ चाय बिस्कुट पर दिन गुजारा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। साल 1958 में आई फिल्म भला आदमी से उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसके बाद जब 1965 में फिल्म जब जब फूल खिले आई, तो इसके गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी।

Manga tavo paya, don't look.

की जिंदगी में महसूस करता है, चाहे प्यार का इजहार हो, जुदाई का गम हो या फिर जिंदगी का फलसफा। उनकी कलम हर जज्बात को मोतियों की तरह पिरो देती थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की फिल्मों की सफलता में बख्शी साहब के गीतों का बहुत बड़ा हाथ था। आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी फिल्मों के गीत आज भी अमर हैं।

श्रोताओं, आनंद बख्शी साहब के गीतों की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो थी सादगी। उन्होंने कभी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने वही लिखा जो आम इंसान अपनी रोजमर्रा

उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी से लेकर 90 के दशक में ए आर रहमान और जतिन ललित जैसे युवा संगीतकारों के साथ भी ब्लॉकबस्टर काम किया। 1970 के दशक की शोले का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हो, या 1990 के दशक की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का तुझे देखा तो ये जाना सनम, हर पीढ़ी ने उनके गीतों को अपने दिल में बसाया। उन्होंने 4,000 से ज्यादा गाने लिखे जो अपने आप में एक मिसाल है। चलिए इसी बात पर 90 के दशक की उस मोहब्बत को याद करते हैं जिसे बख्शी साहब ने अपने लफ्जों से अमर कर दिया।

श्रोताओं, वक्त का पहिया घूमता रहा। 30 मार्च 2002 को आनंद बख्शी साहब इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन एक शायर, एक गीतकार कभी मरता नहीं है। वो अपने गीतों के जरिए हमारे होठों पर गुनगुनाते हुए हमेशा जिंदा रहता है। जब भी कोई आशिक अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, जब भी कोई दोस्त दोस्त की कसम खाएगा, बख्शी साहब हमारे बीच मौजूद रहेंगे।

0: श्रोताओं, आशा है कि आपको आज का रजनीगंधा पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ दीजिए अपने साथी अंशुल गुलकरी को कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
3: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण

0: सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
3: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
4: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
5: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को

0: मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज।

अभी आपने किशोर कुमार और साथियों को मोहब्बत फिल्म में सुना। आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और अमित कुमार की, फिल्म का नाम लवर्स।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए और यह है कार्यक्रम के अंतिम पेशकश गुलाम फिल्म से। तर्ज बनाई है जतिन ललित ने, रचनाकार हैं समीर, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की।

कुमार शानू और अलका याग्निक को सुना। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल प्रेम।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज्म लिखी, उस नज्म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ अपने बख्शी फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है
1: जी। आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले, इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रही थी। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

0: आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहाँ पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोट साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी, लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जी ओम प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष घाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी घाई साहब को कहा कि एक यार, मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, क्योंकि शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बे सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी, मतलब रुक रुक रुक लिखना है मुझे, और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, सराहा पर इस मोड़ पर कहीं

0: ये तो मैंने
1: किसी
0: आपको
1: राह
0: पर
1: पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
0: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हमसफर, तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी कि गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हमसफर।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शा ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपना, उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 5x5 सीरियल पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइनें, मुखरे बंतरे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। और 3-4-6 महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी ले गया अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली 2 हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी ने बोला, याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
1: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
0: हजारों घटनाएं हैं, दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्शी साहब, 68-64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब जब फूल गले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड, तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में अपना अवार्ड फंक्शन में जाना, काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्शी डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे, 1-2 बजे आते थे, 3, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं छोटा बहुत छोटा था, उनकी उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो लाइक जैसे लाइक माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए, वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके, तो वो हमेशा रात को आके ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था, जब मैं जाग जाता था वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिर नहीं करते थे वो छोटा कोई लोरी सुना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे, मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी
1: क्या
0: उनकी
1: बात है।
0: लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने, तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है इस अंडे का भाव क्या है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे 25 पैसे जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो इसर की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहने छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले, तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर ऑफ करियर इन द बिगनिंग।
1: बिल्कुल।
0: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में, तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
1: क्या बात है,
0: भले वो एक अंडा ही हो।
1: क्या बात है,
0: इसी बात
1: बात
0: मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मैं मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया,
1: जी।
0: और वो मेरे डैडी की पसंद की नहीं थी, तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्ब्स नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रताप में गाना लिखा, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरी वक्त मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे हो कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है।
1: जी
0: तो मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है, काम में और शौक में फर्क होता है, वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता, अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
1: क्या बात है। अच्छा, अब
0: एंड
1: मुझे बताइए कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर।
0: गाने तो बहुत है, हजार है, जैसे कि क्या होता है, हर गाना आपको एक, जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको एक कोई गाना अच्छा लगता है।
1: मैं समझ
0: जैसे
1: सकता
0: मुझे
1: हूँ।
0: याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल चला गया था, यू नो, विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था, तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को,

0: तो 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा उड़ा नहीं हो क्या लड़की के साथ कुछ? दूसरा मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत चाहेंगे हम अगर तू संग है। क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना हम हार मान जाते हैं, तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवेड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: क्या बात,
0: ऐसा ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी में काम आ सकता है। और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा, दुनिया अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे।
1: क्या बात,
0: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो ये लाइन, आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
1: जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन, और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
1: सुनो कहा सुना

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना,

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
3: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़।

पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के संपादित अंश दिल्ली से अनुप्रसारित नहीं किए जा सकते। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

बोलती आंखें, वो आंखें झील हैं, वो आंखें पहाड़ों के बीच जंगलों पर खिले फूल हैं, जिसकी खूबसूरती विरले ही जान पाते हैं। उन आंखों में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे जज्बात हैं, कह गई आंखें बहुत कुछ।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। कहीं टूट न जाए इंतजार की माला, कहीं रह न जाए इंतजार अधूरा। ओ चांद, कहना उनसे कोई है जो बाट जोहता है। न जाने कितने प्यार करने वालों का साझीदार रहा है ये चंद्रमा। चंद्रमा से दुनिया के न जाने कितने लोगों ने साझा किए अपने मन के भाव। ये चंद्रमा सबका संदेशा ले जाता है। चंद्रमा से कहो, जाकर कहते उनसे वो सब कुछ जो कह नहीं सके होठ।

सद्या स्नाता लड़की के खुले बालों की सी खूबसूरती बिखरी थी फिजाओं में, जब उसकी पदचाप मिली। वादी की सूखी पत्तियां हरिया गईं, दूर कहीं से आती झरने की आवाज, नदियों के किनारे एक दूसरे से मिलने को आतुर हो उठे। नदी पर छन छन करके गिरती चांद की रोशनी ने दो चाहने वालों के दिलों को भिगो दिया।

जिंदगी में किसी का आना बड़ा मानी खेज होता है। जिंदगी में किसी के आने से जाग उठते हैं अरमान दिल के, किसी के आने से जाग उठते हैं सोए हुए जज्बात, किसी के आने से मौसम रंगीन हो जाता है, बरसों बरस की खुशियां एक पल में हासिल हो जाती हैं किसी के आने से, किसी के आने से ख्यालों में रंग ही रंग भर जाते हैं।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:53 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।